हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.5 एक मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर, साथ ही दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर भी। आज रविवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की 25वीं तिथि, तदनुसार 16 अगस्त 2026। सवेरे के 5:56 और 36 सेकेंड हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्र ने कल अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। अपने संबोधन में श्री मोदी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आज भारत एक बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि कोटि नागरिकों ने एक संकल्प और समर्पण के साथ देश को ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि पिछले 12 साल में देश ने नई रफ्तार पकड़ी है और नई गति से आगे बढ़ाए। इलेक्ट्रॉनिक से लेकर मोबाइल विनिर्माण तक हर क्षेत्र में कई गुणा उत्पादन बढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
2: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
1: खेलों में भारत के बढ़ते प्रतिनिधित्व पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जो खेले वो खिले मंत्र के तहत भारत खेलों की दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहा है।
2: हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, चाहते हैं कि वो भारत में हो, और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव गांव शहर शहर स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प तब पूरा होगा जब विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमने एक दशक के भीतर ही 100 करोड़ देशवासियों को सामाजिक सुरक्षा का कवर दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों की वजह से भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता और पारिवारिक रिश्ते इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार जताया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भी शामिल हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री ने धन्यवाद दिया। इनके अतिरिक्त नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग की शुभकामनाओं के लिए आभार जताते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले का कल समापन हो गया। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमेरिका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे चेन्नई, चेंगलपेट्टू, तिरुवरूर और तंजावुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन आज चेंगलपेट्टू में एआरएम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट और आईसीएआर की अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के लिए अंतिम उत्तर कुंजी जारी करेगी। पीएचडी कार्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा की उत्तर कुंजी भी आज जारी की जाएगी। दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए पिंक टिकट की सुविधा इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। परिवहन विभाग के अनुसार मुफ्त बस यात्रा की पात्र महिलाएं डीटीसी और दिल्ली क्लस्टर बसों में कागजी पिंक टिकट का इस्तेमाल कर सकेंगी। बलूच नेता मीर यार बलूच ने पाकिस्तानी सेना पर युद्ध अपराध करने और नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सुराब में हुए हवाई हमलों के वीडियो इस बात का प्रमाण है कि बलूचिस्तान में स्थानीय आबादी के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की गई। भारत श्रीलंका के बीच खेले जा रहे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी 2 विकेट पर 288 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। 2 मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में कल खेल समाप्त होने तक देवदत्त 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद थे। बारिश के कारण कल खेल केवल 73 ओवर का हो सका। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार।

0: बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.5 एक मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर और दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर भी। आइए अब सुनते हैं आज का चिंतन। चिंतन का विषय है शिक्षा का अर्थ।

0: कोई भी ज्ञान बाहर से नहीं आता, सब कुछ हमारे अंदर ही है। हम केवल आविष्कार करते हैं, खोज करते हैं। बाहर से कुछ भी हमें मिलता है वो केवल एक प्रेरक का कार्य ही करता है। भारत में गुरु का अर्थ अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला व्यक्ति होता है। गुरु का महत्व भारत में केवल इसीलिए है क्योंकि गुरु ही किसी व्यक्ति को स्वयं से पहचान करवाता है। सभी गुरुओं की अपनी एक विशेषता हुआ करती है और उनका शिक्षा देने का तरीका भी भिन्न होता है। गुरु की सेवा का मुख्य उद्देश्य होता है कि गुरु को प्रसन्न किया जाए और स्वयं को विनम्र बनाया जाए। हमारे यहाँ शिक्षा विनम्रता का पर्याय है। व्यक्ति जब तक अहंकार में रहता है वो गुरु को समझ नहीं पाता और ना ही वो स्वयं को समझ पाता है। उस समय गुरु और शिष्य के बीच माँ बाप या कोई कानून नहीं होता, क्योंकि गुरु प्रत्येक शिष्य से भिन्न भिन्न व्यवहार करता है ताकि प्रत्येक शिष्य के भीतर छुपी हुई प्रतिभा को वो खोज सके। और यही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि वो अपनी पहचान के साथ साथ एक और मन को पहचान पाता है और उसे घड़ पाता है। युद्ध कौशल के साथ अर्जुन, भीम और कर्ण अपनी छवि रखते थे, लेकिन उन्होंने सबसे पहले स्वयं को जाना और शायद इसलिए क्योंकि वो अपने गुरु को पहचान पाए थे। तो शिक्षा का अर्थ क्या है? स्वयं को खोजने का प्रयास करना, एक ऐसी विधि जहां स्वयं से मिलन होता है। ये एक विधि ही है और इस विधि को पाने के लिए आपको स्वयं तक पहुंचना होगा। आप भजन करें, ध्यान करें, प्रयोग करें, ये सभी शिक्षा है। जब आप स्वयं से परिचित होते हैं तो आप एडिसन बनते हैं, न्यूटन बनते हैं, वाल्मीकि, तुलसीदास और व्यास बनते हैं, क्योंकि ज्ञान भीतर भी है और बाहर भी।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडिया वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं हमारे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।

वन गमन के लिए तैयार श्रीराम माता कौशल्या से विदा ले चुके हैं, किंतु साथ जाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ पत्नी सीता से माता की उपस्थिति में कुछ भी कहने में उन्हें संकोच हो रहा है। उधर समय अपनी गति से निकला जा रहा है, अतः सीता के लिए उनकी सिखावन भी अनिवार्य है कि यदि वो अपना और पति का कल्याण चाहती हैं तो उन्हें श्रीराम की आज्ञा मानकर घर पर ही रहकर सास की सेवा करनी चाहिए। आदरपूर्वक सास ससुर के चरणों की सेवा से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। पत्नी से श्रीराम का कहना है, हे सुमुखी, जब जब प्रेम से व्याकुल होकर माता मुझे याद करें तब तब उन्हें पुरानी कथाएं सुनाकर धीरज बंधाना। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु तथा वेदवाणी द्वारा सम्मत आचरण का फल बिना किसी क्लेश के तुम्हें मिल जाएगा। हठ करने के कारण गालव ऋषि तथा राजा नहुष जैसों ने केवल कष्ट ही सहे हैं, किंतु वन प्रवास में होने वाले घोर कष्टों का वर्णन सुनकर भी सीता ने अपना निश्चय नहीं बदला। वन मार्ग में नंगे पैरों में चुभने वाले कुश कांटे और कंकड़, दुर्गम पर्वत और खो, रीछ बाघ भेड़िए सिंह आदि के डरावने गर्जन तर्जन की आशंका उन्हें तनिक भी विचलित नहीं कर सकी। वन के भीषण सर्पों, भयानक पशु पक्षियों तथा स्त्री पुरुषों को उठा ले जाने वाले राक्षसों के झुंड का वर्णन भी सीता को उनके निर्णय से नहीं डिगा पाए।

0: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2124।

0: 800-800-800 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
1: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1-800-1234 या फिर 1-800-2100 पर और पाए समाधान।
2: कल सुबह 9:15 पर सुनिए कार्यक्रम फिट एंड फाइन। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर, टोंक रोड, टोंक फाटक, गांधीनगर, जयपुर।
3: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान की 145वीं कड़ी। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्स और FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्स पर। आइए अब आपको जानकारी देते हैं हमारे आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा और उनके समय की। कार्यक्रम रूपरेखा में सबसे पहले कड़सारी बात प्रसारित होगा सुबह 6:45 पर। इसका विषय होगा वर्मी कंपोस्ट खाद की उपयोगिता। 7 बजे आप सुनेंगे संस्कृत कार्यक्रम सौरभ, जिसमें वार्ता होगी स्वतंत्रता संग्राम में संस्कृत भाषा का योगदान। वार्ताकार होंगी डॉक्टर मीनू। 8:45 पर आप सुनेंगे लोक संगीत, कलाकार होंगे घनश्याम डागी।

ग्यारह बजे आप सुनेंगे पोस्ट बॉक्स, 12:10 पर आप सुनेंगे सिंधी कार्यक्रम, 1:30 पर आप सुनेंगे बालवाणी, 2:30 पर आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत, कलाकार होंगी रंजना चौधरी।

उसके बाद आप सुनेंगे देशागान। 3:30 पर आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत कलाकार होंगे महेश दत्त शर्मा। 5 आप सुनेंगे हमारे युवा साथियों का प्रोग्राम युववाणी। उसके बाद आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी। 7 आप सुनेंगे ग्राम भारती, जिसमें बातचीत होगी पशुओं से परजीवी प्रबंधन और भ्रांतियाँ।

श्रोताओं, 7:30 पर आप सुनेंगे खेती बाड़ी, जिसमें बातचीत होगी फसलों में समन्वित कीट और रोग प्रबंधन। वार्ताकार होंगे मुकेश शर्मा। नौ बज के 30 मिनट पर आप सुनेंगे नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम। 10 बजे आप सुनेंगे अखिल भारतीय रविवार स्तरीय संगीत सभा। तो श्रोताओं, ये थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा और उनका समय। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्स और FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं करसारी बात, जिसमें बातचीत होगी वर्मी कंपोस्ट खाद की उपयोगिता पर।

खरसा भायर बेणा राम राम सा। खरसा भायर बेणा, वर्मी कंपोस्ट आज की खेती बाड़ी की बहुत महती जरूरत है, क्योंकि आज आपा रासायनिक खाद उर्वरक पर आपने जो निर्भरता है बिना छोड़कर सुरक्षित संरक्षित खेती की तरफ जा रहे हैं। और अगर वर्मी कंपोस्ट बनानो है या अपनानो है तो एक पूरी जानकारी आपने चाहिए। आपने गाँव में लगे टगे 75 करोड़ टन खेती बाड़ी को कचरो जी

भूसो, कड़ब, गोबर, पत्तियां और दूजा कचरा आवे है मिल जावे है। केंचवा आ सगला कचरा सू चोखी तरीका की खाद जिन्हें कंपोस्ट कहवे है बना सके है, यानी कचरा ने कंपोस्ट में बदलवा की क्षमता केंचवा में है। ए लगे टगे 2 करोड़ टन पोषक तत्व ई कचरा सू बना सके है, यानी कंपोस्ट बना सके है। इन्हें ही तो वर्मी कंपोस्ट कहवे है। वर्मी कंपोस्ट में 65% कृषि अपशिष्ट और 35% गोबर रो मिश्रण सही रहवे है। अब जब आप वर्मी कंपोस्ट बना रहा हाँ, यानी केंचुआ की खाद बना रहा हाँ, तो केंचुआ का प्रकार जानना जरूरी है। एपिगीज केंचुआ ए कंपोस्ट बनावा के ताई सेहूं ज्यादा चोखा रहवे है। सतह पर यानी कम गहराई में 1 मीटर तक ए समूह में रहवे है। खेती बाड़ी का कचरा सु 90% और माटी 10% ने ए खावा के काम में लेवे है। आइसीनिया फिटिका यूड्रिलिस यूजिनी आकी प्रमुख प्रजातियां हैं। इंडोगीज केंचुआ ए माटी में गहरी सुरंग बनार लगभग 3 मीटर से भी ज्यादा गहरी बनार बीने माटी ने भुरभुरी करे है। यह जो केंचुआ की किस्म है यह जल निकास और जल संरक्षण में चोखी है। इंडोगीज केंचुआ 90% माटी खा जावे। डायोगीग केंचुआ ए केंचुआ 103 मीटर गहराई पर रहवे है और दोनों प्रजातियों के बीच की श्रेणी में आवे है। अगर बात करा कोई का मन में आवे कि वर्मी कंपोस्ट क्यों लेनो चाहिए, मैं तो पहली सुई दूसरी खाद ले ही रहा हाँ, तो आपने बता दियो कि वर्मी कंपोस्ट में जो नत्रजन की मात्रा है बाहर 2.5 से 3% रहवे है, फास्फोरस 1.5 से 2% और पोटास 1.5 से 2% रहवे। गोबरी खाद में जो नत्रजन है वो 0.5, फास्फोरस 0.25 और पोटास 0.50% ही होवे। नेडेप कंपोस्ट अगर काम में ले रहा हो तो इमें नत्रजन की मात्रा आपने मिले ली 0.5 से 1.5%, फास्फोरस नेडेप कंपोस्ट में 0.5 से 0.9% और नेडेप कंपोस्ट में पोटाश की मात्रा 1.2 से 1.4% ही मिले छे। शहरी कंपोस्ट की अगर बात करा तो इमें नत्रजन तो 1.5%, फास्फोरस 1% और पोटाश 1.5% छे। तो कुल मिलार बात यह है कि वर्मी कंपोस्ट में सैसु ज्यादा पोषक तत्व रहवे है। अब जब पोषक तत्व ज्यादा मात्रा में मिल रहा है तो इको फायदो भी ज्यादा ही मिले लो। फायदो का ही है कि वर्मी कंपोस्ट में एक्टिनोमाइसिटीज होवे जो गोबर की खाद की तुलना में 8 गुना ज्यादा होवे। ई खाद सु तैयार फसल में बीमारियां के प्रति प्रतिरोधी क्षमता बढ़ जावे है। केंचुआ माटी का जल शोषण क्षमता में 20% तक की बढ़ोतरी करे है। माटी रा कटाव ने रोके है, पौधा में जल उपलब्धता ने बढ़ावे है। वर्मी कंपोस्ट में पेरिट्रॉपिक झिल्ली होबा के कारण जल वाष्पीकरण में कमी आवे है और सिंचाई की संख्या में भी कमी आ जावे है। भाई अगर माटी में ही नमी बनी हुई है तो ज्यादा पानी देना ही कोनी पड़े लो। केंचुआ की खाद से खेत में ह्यूमस वृद्धि होवे है। इसके कारण बिरखा की बूंदा को जो आघात है वह माटी पर कम होवे है और माटी में इन्हें सहवा की क्षमता आ जावे है, जिसों की 56 गुना ज्यादा जो है माटी अपनी चोखी हो जावे है और माटी को जो क्षरण है कटाव है वो कम हो जावे है। केंचुआरी खाद काम में लेबा सु खेत में खरपतवार कम हो जावे है, खेत में दीमक भी कोनी लागे। अब सवाल उठे है कि वर्मी कंपोस्ट बनावा कहिया, तो भाई वर्मी कंपोस्ट शेड बनावा के ताई छायादार जगह चुननी है जेठे पानी रो भराव कोनी होवे। शेड पानी के स्रोत या धोरा के पास हो ताकि पानी देबा में आसानी रहे। खाद का जो गड्ढा है इमें जल स्रोत से ऊपर वाला क्षेत्र में नहीं हुए, नहीं तो कहीं वालों रासायनिक तत्व रिसाव से जल प्रदूषित हो सके है। आम तौर वायु वेग की दिशा में गड्ढा की चौड़ाई रखा और आवासीय मकान गड्ढा के निचले क्षेत्र में जटे हवा बहवे है नहीं बनाना चाहिए, इस वायु प्रदूषण रो नुकसान कोनी होवे लो। खाद की आवश्यकता अनुसार गड्ढा की संख्या निश्चित करनी है। जितनी आपने खाद चाहे बत्ता गड्ढा आप बना वाला, गड्ढा की लंबाई कचरा की मात्रा के हिसाब से होवेली, था कने कत्थो कचरो है खेती बाड़ी को बचोड़ो। चौड़ाई 1.2 मीटर यानी 4 फीट रखा, नहीं तो अपशिष्ट पलटबा में असुविधा हो सके है। गड्ढा की गहराई 30 से 45 सेंटीमीटर यानी 1 से 1.5 फीट रखनी है। गड्ढो 2 मीटर ऊंचा छप्पर से ढक्योड़ो रहे। गड्ढा में भरवा के ताई अपशिष्ट इकट्ठो करा ताकि एक ही दिन में बिना पा भर सका। सबसे नीचे मोटो कचरो यानी कड़ब, सरसों, तुअर आका बचोड़ा जो भी आपने कने कचरो है वो 5 से 7.5 सेंटीमीटर तक यानी 24 घंटा पहली भिगोयोड़ी जो अपशिष्ट की

0: चादर है इन्हें बिछानी है। ई के पाछे ई के ऊपर 10 सेंटीमीटर बारीक भूसा को जो कचरो है हरियो या सूखो कोई भी हो सके फैलार पानी सुबह ने गीलो करनो है। पानी लगभग 30-40% राखनो है। अब आवे है गोबर की खाद। इमें 5 सेंटीमीटर की गोबर की समान परत बनानी है। प्रति वर्ग मीटर के ताई केचुआ की संख्या 1000 रखा। केचुआ न्यारा न्यारा तरीका से विभाजित करा यानी तह के हिसाब से बांटनो है। ई सतह पर माटी नीम की पत्ती और राख रो मिश्रण डाल ढक देनो है। ईसू सारा पोषक तत्व बठे ही बन्योड़ा रह वेला। फिर आ सारी प्रक्रिया ने आपने दोहराणो है जब तक कि गड्ढो भर ना जावे। ई के पाछे सड़ेड़ो गोबर पत्तिया राखा और बीच में ऊंचो रागबा के ताई किनारा वाला हिस्सा नीचे रागबा के ताई आपने व्यवस्था करनी है ताकि पानी न भरे। जूट या टाट सु मिश्रण ने ढक दिया ला। ईसु नमी संरक्षित रह वेली। गर्मी में प्रतिदिन और सर्दी में 2-3 दिन में एक बार पानी देना चोखो रहवे है। हर महीने मिश्रण ने पलटता रहवा ताकि जो हवा की आवाजाही है बनी रहे। ईसु कही वेलो की केंचुआ ने संवर्धन में मदद मिले ली यानी केंचुआ की संख्या बढ़ती रह वेली। भुरभुरा भूरा रंग को खाद बन जावे जब पानी देनो बंद करा। मिश्रण ने रेती छान वाली छलनी सु आपा छान और बोरा में भर सका चा पच काम में ले लिया। खाद में 10-20% नमी रहनी चाहिए जे। कचरा की किस्म के अनुसार वर्मी कंपोस्ट 75-90 दिन में तैयार हो जावे है और जो कैचवा है और जो खाद बनावा का काम में लाग जावे है। वर्मी कंपोस्ट कौन सी फसल में कत्तो काम में लियो जा सके अगर ई की जानकारी की बात करा तो आम तौरियों फसल गेहूं मक्का सरसों सोयाबीन बाजरा में 5 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट लागे है। सब्जियां में 500-760 टन प्रति हेक्टेयर फलदार पेड़ा में 5 किलो प्रति पौधों और फूला की क्यारिया में 1-2 किलो प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट दियो जावे है।
1: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
2: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल
3: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
4: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का DD फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका DD फ्री डिश।
5: अदबी दुनिया की अजीम शख्सियत और उनके कारनामों से आपको रूशनास कराना, हल्काए इल्म अदब की सरगर्मियों से हर वक्त बाखबर करना, मुशायरों के जरिए शोराए कराम के फिक्र फन की बुलंदियों को छूना, अलावा अजीम मुल्की और बैन अक्वामी मामलात, सियासी नजरियात, माशियात और सकाफत पर मुदल्लल मुबाहसे और इजहार ख्याल, साथ ही अवामी मफादात की तबलीग व तशहीर जिसका मकसद है वो है आपका अपना DD उर्दू चैनल।
6: अभी आप सुन रहे थे करसारी बात। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। 6:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

अभी आप सुन रहे थे संस्कृत कार्यक्रम सौरभ। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत में पहला गाना आपको सुनाने जा रहे हैं वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई फिल्म से। आवाज़ है कार्तिक की, गीत को लिखा है नीलेश मिश्रा ने और संगीत से सजाया है प्रीतम ने।

श्रोताओं, अगला गाना आपके रेडियो सेट्स पे आ रहा है अजब प्रेम की गजब कहानी से। आवाज़ है नीरज श्रीधर और सुजैन डिमलो की। गीत को लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीत से सजाया है प्रीतम ने।

आदत बदलो, अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं, अगला गाना आपको सुनाने जा रहे हैं फिल्म परिणीता से। आवाज़ें हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की। गीत को लिखा है स्वानंद किरकिरे ने और संगीत से सजाया है शांतनु मोइत्रा ने।

श्रोताओं, अगला गाना आपके रेडियो सेट्स पे आ रहा है फिल्म परदेस से। आवाज़ है सोनू निगम की, गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने।

आइए अगला गाना सुनते हैं फिल्म यस बॉस से। आवाज़ है अभिजीत की, गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत से सजाया है जतिन ललित ने।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: दादी, कौन सा प्लांट है?
3: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
4: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
2: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
4: क्यों?
2: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
4: ओह, थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले, तेरी समझदारी का फल।
5: RBI कहता है, स्मार्ट बनो, कूल रहो।
6: आइए अगला गाना सुनते हैं, फिल्म बादशाह से। आवाजें हैं अलका याग्निक और अभिजीत की। गीत को लिखा है समीर ने और संगीत से सजाया है अनु मलिक ने।

श्रोताओं, अब आपको अगला और अंतिम गीत सुनाने जा रहे हैं फिल्म अनजाना अनजानी से। आवाज़ है शेखर की, गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत से सजाया है विशाल शेखर ने।

0: और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, उसके बाद मॉर्निंग न्यूज़ और फिर उर्दू में समाचार। कृपया
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 1000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण लागू करने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की। इससे देश के नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा। अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 50 से अधिक देशों से होकर गुजरी सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले सैन फ्रांसिस्को में संपन्न। सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की जानकारी देने वाली योजना शुरू की। और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब बरकरार रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर कल नई दिल्ली में लाल किला पर ध्वजारोहण के बाद उन्होंने कहा कि भारत आज बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश के करोड़ों नागरिकों ने संकल्प और समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल विनिर्माण के क्षेत्र में कई गुना उत्पादन बढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति AI के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है।
1: हमने पिछले दिनों AI इम्पैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: प्रतियोगी परीक्षाओं में समाज के हर वर्ग की उपस्थिति को सुगम बनाने के लिए श्री मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए सरकार निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: राष्ट्र निर्माण में बेटियों के योगदान को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बेटियां अब हर क्षेत्र में सबसे आगे दिख रही हैं। उन्होंने लोगों से महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनने का आह्वान किया। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने में सहयोग की अपील की।
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूँ, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: खेलों में भारत के बढ़ते प्रतिनिधित्व पर श्री मोदी ने कहा कि जो खेले वो खिले मंत्र के अंतर्गत भारत खेलों की दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहा है।
1: जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर, स्कूल-स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे करके देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने पर ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों के कारण भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले वैश्विक नेताओं का आभार व्यक्त किया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भी शामिल हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिन तोब्गे की शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले कल संपन्न हो गई। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमेरिका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। फिजी में भारतीय उच्चायोग से शुरू हुई

0: इस रिले में एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक तिरंगे का संदेश दुनिया भर में पहुंचाया गया। रिले का समापन सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में हुआ। इस दौरान वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे।
1: छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति डिस्क्लोजर स्कीम एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है, जो फाइनेंस एक्ट 2026 के चैप्टर 4 में शामिल है। यह योजना करदाता को एक तय कर का भुगतान करके कुछ ऐसी विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की जानकारी देने की सुविधा देती है, जिनका पहले खुलासा नहीं किया गया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के और स्कीम को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के अपने लगातार प्रयासों के तहत इस स्कीम को और इसके नियमों पर एक विस्तृत डॉक्यूमेंट जारी किया है। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन तमिलनाडु की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवरूर और तंजावुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन आज चेंगलपट्टू में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के अलवर में सरस डेयरी परिसर के नए संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। वे विभिन्न दुग्ध संघों के डेयरी प्रसंस्करण और पशु आहार संयंत्रों का भी उद्घाटन करेंगे। इस दौरान राजस्थान के 17 जिलों में 6,262 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अभ्यर्थियों का आंदोलन और तेज हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों ने विरोध के नए कार्यक्रमों की घोषणा की है।
2: JPSC JSSC आंदोलन के अगले चरण के तहत आज झारखंड के सभी 24 जिलों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया जाएगा। छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। रांची में पुतला दहन कार्यक्रम अल्बर्ट टिक्का चौक पर आयोजित किया जाएगा। छात्र JPSC की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और JSSC CGL परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग कर रहे हैं। JPSC JSSC रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
3: इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया है। ये पुष्प भारत की समृद्ध पुष्प विरासत को दर्शाने के साथ साथ उद्यान की जैव विविधता को भी समृद्ध करते हैं। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक खुला रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। यह सेवा सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर संचालित होगी।
4: सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना का उद्देश्य राज्य भर के पात्र नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा आसानी से उपलब्ध कराना है।
5: लगभग 15 लाख परिवारों को इससे लाभ मिलने की उम्मीद है, जिसमें प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का नगद उपचार शामिल है। आयुष्मान भारत कार्ड प्रत्येक पात्र परिवार के सदस्य को निःशुल्क जारी किए जाएंगे। राज्य के कुल 1,307 निजी और 627 सरकारी अस्पताल इस योजना के अंतर्गत उपचार प्रदान करेंगे। लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले से लेकर छुट्टी मिलने के 15 दिन बाद तक योजना

0: लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा। आयुष्मान भारत योजना के लिए पात्र न होने वालों के लिए आज मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत लगभग 80 लाख परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: उड़ीसा की बैतरानी नदी में बाढ़ से राज्य के उत्तरी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित है। एक रिपोर्ट।
2: उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है क्योंकि बैतरणी नदी में बाढ़ की चौथी लहर आ गई है। भद्रक जिले के अखुआपदा में नदी खतरे के निशान 18.33 मीटर को पार कर गई है और आज सुबह 7 बजे तक 18.38 मीटर पर बह रही थी। जाजपुर जिले के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं जबकि भद्रक जिले के कई गाँव अलग थलग पड़ गए हैं। राजघाट पर सालंदी नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है जहाँ खतरे का स्तर 17 फीट है और नदी 16.50 फीट पर बह रही थी। गिंगुटी और कोकिला नदियों भी उफान पर है। IMD ने मयूरभंज और बालेश्वर के लिए रेड वार्निंग और 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है। मंगलवार तक भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह ने अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। शतरंज में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने लगातार दूसरी बार ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब बरकरार रखा है। फ्रांस के पेरिस में खेले गए फाइनल में कार्लसन ने बेलारूस के ग्रैंडमास्टर डेनिस लाजाविक को 2-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है शक्ति की सप्तधारा का आह्वान। प्रधानमंत्री ने लाल किला के प्राचीर से कहा 7 शक्तियां भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है 80 पर देश जुबां पर युवा। पंजाब केसरी की सुर्खी है लाल किला से वंदे मातरम की गूंज के बीच मोदी ने राष्ट्रगीत गाया फिर तिरंगा लहराया। आम्बेडकर, नेहरू, पटेल और मुखर्जी का योगदान याद किया। जनसत्ता के अनुसार दिमागी नक्सल अराजकता और हिंसा फैलाने के रास्ते खोज रहे हैं। दैनिक जागरण के अनुसार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला से प्रधानमंत्री मोदी का मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग। 1 करोड़ युवाओं को AI प्रशिक्षण का ऐलान। कहा महिलाओं को 33% आरक्षण के साथ आए राजनीतिक दल। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री का लाल किला से संदेश शीर्षक से संपादकीय में लिखा है प्रधानमंत्री ने नक्सलवाद को खत्म करने को अपने शासन की बड़ी उपलब्धि का उल्लेख करते हुए दिमागी नक्सली शब्द का इस्तेमाल कर कुछ ताकतों पर करारी चोट की है। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है बस्तर के 93 गांवों में पहली बार दिखी तिरंगे की ताकत। नक्सल प्रभावित रहे इन गांवों में आजादी के बाद स्वतंत्रता दिवस का सार्वजनिक आयोजन। दैनिक जागरण के अनुसार संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा युवा कौशल के उचित उपयोग से देश को हो सकता है भारी लाभ।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण लागू करने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की। इससे देश के नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा। अगले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 50 से अधिक भारतीय मिशनों से होकर गुजरी सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले सैन फ्रांसिस्को में संपन्न। सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की जानकारी देने वाली योजना शुरू की। और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब बरकरार रखा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi urges all parties to support implementation of women's reservation in Parliament and state assemblies to strengthen women's contribution in shaping India's policies. Prime Minister announces free online coaching for competitive exams aspirants to ease financial burden on their families. 1 crore youths to be trained in artificial intelligence in next 1 year. Suryapath Tiranga, first of its kind campaign involving Indian missions in over 50 countries, concludes in San Francisco. Government rolls out foreign asset disclosure scheme for small taxpayers. And in chess, world number one Magnus Carlsen retains eSports World Cup title.

0: Gatwick 2-0 in Paris, France. Representing Team Liquid, Magnus remained completely undefeated throughout the entire tournament. Meanwhile, American Grandmaster Hikaru Nakamura secured the third place after defeating Elireza Firuza 4-1. In men's cricket, India will resume their first innings at the overnight score of 288 for 2 against Sri Lanka on the second day of the first test at the Gaul International Stadium today. Devdutt Padikkal remained unbeaten on 131, while Rishabh Pant was on 27 when stumps were drawn yesterday evening. KL Rahul retired hurt on 77. The game was cut short to 73 overs due to two rain breaks yesterday. Earlier, India won the toss and opted to bat first. And now for a look at today's newspapers, it's over to Saira Mujtaba.
1: Thank you, Anuja. All dailies have covered Prime Minister's big shout-out to Gen Z on Independence Day and his warning against intellectual Naxals. Seven pillars, one goal. PM lays out blueprint for Viksit Bharat, writes Hindustan Times. Red Fort rings with Vande Mataram for the first time as smiles, flags and patriotism fill air, writes the Times of India and all the other dailies. The Sunday Times also refers to an army dog shot in the leg by terrorists in Kishtwar getting President Independence Day honour for showing bravery and extraordinary courage. Government brings scheme to disclose foreign assets, opening a one-time window for taxpayers to declare their undisclosed foreign income, cites the Hindu. A Financial Express headline says, India closer to private nuclear power as draft rules issued. Under pressure, amid regulatory heat and rising cost, this festive season to be testy for sweets makers is another headline in the Financial Express. A master plan for Delhi 2047 proposes the Havelis of Chandni Chowk to Latin's Delhi. Heritage buildings could soon get a lease of life by making them hotels and offices, notes the Sunday Express. And finally, the Economic Times carries a story of matchmaking startups using AI to narrow choices by creating user profiles based on dating history and personality, with traditional dating platforms losing steam. Under the headline, AI-led matchmaking apps getting all the investor love. And with that, it's back to you, Anuja.
0: Thank you, Saira. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi urges all parties to support implementation of women's reservation in parliament and state assemblies to strengthen women's contribution in shaping India's policies. Prime Minister announces free online coaching for competitive exams aspirants to ease financial burden on their families. 1 crore youths to be trained in artificial intelligence in next 1 year. Suryapat Tiranga, first of its kind campaign involving Indian missions in over 50 countries, concludes in San Francisco. Government rolls out foreign asset disclosure scheme for small taxpayers. And in chess, world number one Magnus Carlsen retains eSports World Cup title. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला, पहले ही इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम सियासी पार्टियों से पार्लियामेंट और रियासती असेंबलियों में ख्वातीन के लिए रिजर्वेशन के निफाज की हिमायत करने की अपील की है, ताकि भारत की पॉलिसी साजी में ख्वातीन के तआवुन को मजबूत किया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म ने मुसाबकती इम्तिहानात की तैयारी करने वाले तलबा के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग का ऐलान किया है, ताकि उनके कुनबों पर माली बोझ कम हो सके। अगले एक साल में 1 करोड़ नौजवानों को मसनूई जहानत AI की तरबियत फराहम की जाएगी। सूर्यपथ तिरंगा, जो अपनी नवीयत की पहली मुहिम है और जिसमें 50 से ज्यादा भारतीय सिफारती मिशन शामिल थे, सान फ्रांसिस्को में इख्तिताम पजीर हुई। हुकूमत ने छोटे टैक्स दहिंदगान के लिए गैर मुल्की असासों के इंकशाफ की स्कीम शुरू की है। और शतरंज में आलमी नंबर 1 मागनस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का एजाज बरकरार रखा है। अब खबरें तफसील से। मुल्क ने कल अपना 80वां योम आज़ादी मनाया। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल किले की फसील से कौमी परचम लहराया और कई अहम ऐलान किए। कौम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पिछले 12 साल के दौरान मुल्क के करोड़ों शहरियों ने अपने पुख्ता अज़्म और लगन के जरिए मुल्क को नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए भरपूर कोशिश की।

0: की राष्ट्र तब महान बनता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। बड़े सपने हमारी सोच को विस्तार देते हैं, हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है।
1: विकसित भारत के लिए नौजवानों और ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने पर जोर देते हुए वजीर आजम मोदी ने ऐलान किया कि गरीब और मुतवसित तबके के खानदानों से ताल्लुक रखने वाले तलबा को मुख्तलिफ सरकारी मुसाबकती इम्तहानात की तैयारी के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग फराहम की जाएगी। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि हुकूमत ने अगले एक साल में 1 करोड़ नौजवानों को मसनूई ज़हानत AI की महारत की तरबियत फराहम करने का फैसला किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गरीब और मुतवसित तबके के कुनबों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग फराहम करने का ऐलान किया है। मुल्क के नाम अपने खिताब में जनाब मोदी ने कहा कि इस इकदाम का मकसद मुसाबकती इम्तहानात के लिए तैयारी करने वाले उम्मीदवारों पर बड़े पैमाने पर मालियाती बोझ को कम करना है। उन्होंने कहा कि इस कदम से मुतवसित तबके के कुनबे को कोचिंग क्लासों में हजारों करोड़ रुपए की बचत करने में मदद मिलेगी।
0: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स है, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
1: वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत ने फैसला किया है कि अगले एक साल में 1 करोड़ नौजवानों को मसनूई ज़हानत AI से हुनरमंदी की तरबियत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसकी मदद से नौजवान आलमी AI शोबे में कायदाना रोल अदा कर सकेंगे। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क को 3 चीज़ों, लागत, मेयार और हुनर पर तवज्जो मरकूज करने की ज़रूरत है।
0: हमने पिछले दिनों AI इम्पैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
1: वजीर आजम ने कहा कि आज भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि साल 2030 में भारत दौलत मुश्तरका खेलों की मेजबानी करेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम सियासी पार्टियों पर जोर दिया है कि वो इसे सियासी मसला मनाए बगैर पार्लियामेंट और रियासती असम्बलियों में ख़वातीन के लिए रिजर्वेशन के नफाज की हिमायत करें। योम आज़ादी के मौके पर लाल किले की फसील से कौम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने तमाम पार्टियों से कहा कि वो आगे बढ़कर ख़वातीन का एहतराम करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि मुल्क की ख़वातीन को कानून साज असम्बलियों और लोकसभा में जल्द से जल्द 33% नुमाइंदगी हासिल हो। उन्होंने कहा कि ख्वातीन को भारत की पॉलिसी साजी में अपना किरदार अदा करने का मौका दिया जाना चाहिए।
0: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूँ, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
1: अपनी नौईयत की पहली सूर्य पथ तिरंगा ग्लोबल रिले कल इख्तिताम पजीर हुई। इस रिले ने मशरिक में वाकई मुल्क फिजी से मगरिब में अमेरिका तक का सफर मुकम्मल किया और इस दौरान 54 ममालिक और मुख्तलिफ टाइम जोन्स का अहाता किया। वजारत खारजा ने बताया कि सूर्य पथ तिरंगा मुहिम को हर घर तिरंगा मुहिम के तहत मनाया गया। फिजी में भारतीय हाई कमीशन ने शुरू होने वाले इस रिले में तिरंगे के जज्बे को एक तुलिय आफ्ताब से दूसरे तुलिय आफ्ताब तक पहुंचाया गया। इसके जरिए दुनिया भर में मौजूद भारतीय बिरादरी और भारत के दोस्तों को एक साथ जोड़ा गया। इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह आज राजस्थान के अलवर में वाक़ अलवर सार्स डेयरी कॉम्प्लेक्स में एक नए डेयरी प्लांट का संग बुनियाद रखेंगे। इमदाद बाहमी की वजारत के मुताबिक इस मौके पर राजस्थान के 17 जिलों में 6,262 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का वर्चुअल वसीले से संग बुनियाद रखा जाएगा और इसका इफ्तिताह किया जाएगा। इसके अलावा रोजगार उत्सव के तहत 10,500 से ज्यादा नई तकरीरी पाने वाले अफराद को तकरीरनामे भी सौंपे जाएंगे। बराह रास्त टैक्सों के मरकजी बोर्ड CBDT ने छोटे टैक्स दहिंदगान के गैर मुल्की असासों के इंकशाफ से मुतालिक स्कीम के जवाबी 2026 को नोटिफाई किया है। ये स्कीम आज से नाफिजुल अमल होगी। इस स्कीम के तहत ऐलान नामा जमा कराने की आखिरी तारीख इस साल 31 दिसंबर है। इस तारीख के बाद कोई भी ऐलान नामा दाखिल नहीं किया जा सकेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: छोटे टैक्स दहिंदगान के गैर मुल्की असासों के इंकशाफ से मुतालिक स्कीम 2026

0: इसके मालियाती एक्ट के चौथे बाब में शामिल एक बार रजाकाराना इंकशाफ की स्कीम के तहत टैक्स दहिंदगान मखसूस टैक्स या फीस अदा करके ऐसे असासों, गैर मुल्की आमदनी या गैर मुल्की असासों के बारे में बता सकते हैं जिनकी मालूमात का पहले इंकशाफ नहीं किया गया है। इनकम टैक्स महकमे ने टैक्स दहिंदगान की बेदारी में इजाफा करने और इस स्कीम को बेहतर तरीके से समझने में आसानी पैदा करने के लिए अपनी मुसलसल कोशिशों के हिस्से के तौर पर एक जामे FAQ दस्तावेज जारी की है। दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
1: मुल्क आज साबिक वजीर आजम आजहानी अटल बिहारी वाजपेयी की बरसी पर उन्हें खराज अकीदत पेश कर रहा है। बीजेपी के सीनियर रहनुमा वाजपेयी ने 2018 में आज ही के दिन आखिरी सांस ली थी। वाजपेयी 3 मरतबा भारत के वजीर आजम रहे। उनकी पहली मुद्दते कार 1996 में सिर्फ 13 दिन की थी। दूसरी मरतबा उन्होंने 1998 से 1999 तक 11 माह के लिए वजीर आजम की हैसियत से खिदमात अंजाम दी, जबकि 1999 से सन 2004 तक उन्होंने मुकम्मल मुद्दते कार पूरी की। उन्हें 2015 में भारत के आला तरीन सिविल एजाज भारत रत्न से नवाजा गया। कौमी राजधानी में वाकई उनकी यादगार सदैव अटल पर अहम शख्सियात साबिक वजीर आजम को गुलहाय अकीदत नजर करके खराज अकीदत पेश करेंगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर CP राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज साबिक वजीर आजम आजहानी अटल बिहारी वाजपेयी को कौमी राजधानी में वाकई उनके मेमोरियल सदैव अटल पर गुलहाय अकीदत नजर किए। इस मौके पर साबिक सदर रामनाथ कोविंद, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मरकजी वजीर राजनाथ सिंह, दिल्ली की वजीर रेखा गुप्ता और बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन भी मौजूद थे। झारखंड में JPSC JSSC उम्मीदवारों का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। तलबा ने मुबीना बेजाब्तियों के खिलाफ एहतजाज के ताज़ा प्रोग्रामों का ऐलान किया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: एहतजाज के अगले मरहले के तौर पर तलबा लीडरों ने ऐलान किया है कि आज रियासत के तमाम 24 जिलों में वजीर आला हेमंत सोरेन और कांग्रेस लीडर्स राहुल गांधी के पुतले जलाए जाएंगे। उनका कहना है कि उनका एहतजाज 22वें दिन में दाखिल हो गया है, लेकिन उनके अहम मुतालबात अब भी पूरे नहीं किए गए हैं। रांची में पुतला नजर आतिश करने का प्रोग्राम अल्बर्ट ईका चौक पर मुनाकिद किया जाएगा। तलबा JPSC के 11वें से 13वें इम्तहानात और JSSC CGL इम्तहान मनसूख करने के साथ साथ मुबैना बेजाबतगियों की CBI तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। JPSC JSSC रिफॉर्म मंच ने रियासती सरकार को 18 अगस्त तक मुस्बत कार्रवाई करने का अल्टीमेटम दिया है। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी आज रियासत में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का आगाज करेंगे। इस इकदाम का मकसद रियासत में अहल शहरियों के लिए मियारी हिफ्जान सेहत की बिला रुकावट फराहमी को यकीनी बनाना है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
0: मगरबी बंगाल इस स्कीम को नाफिज करने वाली 36वीं रियासत बन जाएगी। इस स्कीम से 1.5 करोड़ कुनबों को फायदा पहुंचने की उम्मीद है और फी साल फी कुनबा 5 लाख तक का मुफ्त इलाज फराहम होगा। हर अहल कुनबे के रुकन को आयुष्मान भारत कार्ड मुफ्त जारी किए जाएंगे। इस स्कीम के तहत रियासत के 1307 प्राइवेट और 627 सरकारी अस्पतालों में इलाज की सहूलत फराहम की जाएगी। मुस्तफिदीन अस्पताल में दाखिले से 3 दिन पहले से लेकर अस्पताल से डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक इस स्कीम से फायदा हासिल कर सकेंगे। कोलकाता से संदीपन दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
1: इम्तिहानात मुनक्किद करने वाली कौमी एजेंसी NTA आज UGC नेट जून 2026, CSIR नेट और PhD प्रोग्रामों में दाखिले के लिए ICAR कुल हिंद दाखिला इम्तिहान और कुल हिंद मुसाबकती इम्तिहानात के लिए आरजी आंसर की जारी करेगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर NTA ने बताया कि आरजी आंसर की उसकी सरकारी वेबसाइट पर शाई की जाएगी। उम्मीदवारों को मशवरा दिया गया है कि वो सिर्फ NTA की सरकारी इत्तला पर ही एतमाद करें। अमृत उद्यान आज से अगले महीने की 15 तारीख तक आम लोगों के लिए खुला रहेगा। ये बाग सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि इसमें आखिरी दाखिला शाम 5 बजे तक होगा। देखभाल के लिए हर पीर को बाग बंद रहेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: बाग की सैर के दौरान कई अहम मकामात देखने को मिलेंगे, जिनमें बालवाटिका, पुरुमेरिया गार्डन, बैनियन ग्रोव, बोनसाई गार्डन, बैबलिंग ब्रुक्स, सेंट्रल लॉन, लॉन्ग गार्डन और सर्कुलर गार्डन शामिल हैं। मौसम गर्मा के सालाना एडिशन की एक बड़ी कशिश मकामी और देसी फूलदार पौधे हैं, जो अपनी दिलकश रंगारंगी और माहौलियाती अहमियत के लिए मशहूर हैं। देसी पौधों के मजमू में बालसम, गुल मेहंदी,

0: और नागफना शामिल हैं। ये पौधे भारत के भरपूर नबाताती विरासत की अक्कासी करने के साथ साथ बागात में हयाती तनावों को भी फरोग देते हैं। नई दिल्ली से नितिका की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
1: भारतीय मौसमियात के महकमे IMD ने आज अरुणाचल प्रदेश, मगरबी बंगाल में गंगा के इलाके, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बाज़ हिस्सों में इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है, जबकि शुमाल मशरकी भारत के बाज़ इलाकों छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, झारखंड, कोकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में दिन में शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। शतरंज में आलमी नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कारलसन ने फ्रांस के शहर पेरिस में बेलारूस के ग्रैंड मास्टर डेनिस लाजविक को 2-0 से शिकस्त देकर लगातार दूसरी मर्तबा ई स्पोर्ट्स आलमी कप का खिताब जीत लिया है। टीम लिक्विड की नुमाइंदगी करने वाले मैक्स कारलसन इस पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रहे। हॉकी में भारत ने कल नीदरलैंड्स के एमस्टिलविन में FIH हॉकी वर्ल्ड कप के ग्रुप डी के मैच में वेल्स को 1-3 से हराया। भारत की जानिब से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 जबकि संजय राणा ने 1 किया। वेल्स की जानिब से वाहिद गोल सैम वेल्श ने किया। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
2: शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में यौम आज़ादी की तकरीबात बड़े जोश व खरोश से मनाए जाने की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। राजधानी दिल्ली में तारीखी लाल किले की फसील से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 80वें यौम आज़ादी के मौके पर तिरंगा फहराया और कौम से खिताब करते हुए कहा कि आज भारत जोश व जज्बे के साथ आगे बढ़ रहा है। युवा शक्ति और नई टेक्नोलॉजी की मदद से 2047 तक विकसित भारत बनाने के हदफ पर जोर दिया। आलमी रहनुमाओं ने भारत के यौम आज़ादी पर मुबारकबाद दी और जमहूरी सफर में भारत के बढ़ते हुए रोल की सताइश की। इस खबर को आज के सभी अखबारात ने अहमियत के साथ शाये किया है। अरुणाचल प्रदेश में सैलाब और मिट्टी के तोदे खिसकने की खबर को भी अखबारात ने नुमाया किया है।
1: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम सियासी पार्टियों से पार्लियामेंट और रियासती असम्बलियों में ख़वातीन के लिए रिजर्वेशन के नफाज की हिमायत करने की अपील की है, ताकि भारत की पॉलिसी साजी में ख़वातीन के तआवुन को मजबूत किया जा सके। वज़ीर आज़म ने मुसाबकती इम्तहानात की तैयारी करने वाले तलबा के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग का ऐलान किया है, ताकि उनके कुनबों पर माली बोझ कम हो सके। अगले 1 में 1 नौजवानों को मसनूई ज़हानत AI की तरबियत फराहम की जाएगी। सूर्य पर तिरंगा जो अपनी नवीयत की पहली मुहिम है और जिसमें 50 से ज्यादा भारतीय सिफारती मिशन्स शामिल थे, सान फ्रांसिस्को में इख्तिताम पजीर हुई। हुकूमत ने छोटे टैक्स दहिंदगान के लिए गैर मुल्की असासों के इंकशाफ की स्कीम शुरू की है। और शतरंज में आलमी नंबर 1 मैग्नस कारलसन ने ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का खिताब बरकरार रखा है। इसी के साथ आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।
3: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 यानी 603 kHz और FM बैंड 101.2 MHz पर। आइए अब सुनते हैं लोक संगीत। कलाकार होंगे घनश्याम डांगी।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। कृपया अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें। आकाशवाणी का ये जयपुर अजमेर केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज प्रदेश के दौरे पर, चित्तौड़गढ़ और अलवर में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। राज्य सरकार ने आशा सहयोगिनी के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की। कृतज्ञ राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन कर रहा है। और प्रदेश में बारिश का दौर धीमा, जयपुर और भरतपुर संभाग में आज हल्की से मध्यम बरसात की संभावना। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह प्रदेश के दौरे पर हैं। श्री शाह के कल उदयपुर पहुंचने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनका स्वागत और अभिनंदन किया। केंद्रीय गृह मंत्री आज चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अष्ट धातु से निर्मित 21 फीट ऊंची प्रतिमा और मिनी अटल स्मारक का अनावरण करेंगे। इस दौरान गृह मंत्री कई विकास कार्यों का भी शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा श्री शाह का कॉलेज मैदान में जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। इसके बाद वे अलवर पहुंचेंगे, जहां वे सरस डेयरी परिसर में

0: नए डेयरी संयंत्र की आधारशिला रखेंगे और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यहाँ विजयनगर मैदान में बड़ी जनसभा कर में अलवर में सरस डेयरी प्लांट में 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नवीन सरस डेयरी प्लांट का शिलान्यास करेंगे। अलवर के नए मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण होगा। वीआईपी मूवमेंट के साथ शहर की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए 13 जगहों पर पार्किंग व्यवस्था बनाई गई है। अविनाश मल्होत्रा, आकाशवाणी समाचार, अलवर।
0: केंद्रीय गृह मंत्री रोजगार उत्सव के तहत 10,500 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान करेंगे। श्री शाह नए केंद्रीय सहकारी बैंकों के गठन की घोषणा करेंगे और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को डीबीटी के जरिए राशि भी हस्तांतरित करेंगे। इनमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी शामिल हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल जयपुर में सक्षम नारी स्वस्थ बचपन समृद्ध राजस्थान समारोह में आशा सहयोगिनियों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की घोषणा की। साथ ही मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन के उपहार के रूप में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और साथिन बहनों को 1,100-1,100 रुपये की राशि डीबीटी की। इस दौरान कुल 14,65,00,000 रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं में 74 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भी सीधे खातों में हस्तांतरित की। श्री शर्मा ने नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत लाभार्थियों को ऋण के चेक भी सौंपे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की हर बेटी को पोषण, शिक्षा और विकास के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत की चौपाल से लेकर स्टार्टअप की बोर्ड मीटिंग तक भारत की नारी शक्ति का नेतृत्व दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए राजनीति प्रतिनिधित्व के अवसरों में बढ़ोतरी के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम की महत्वपूर्ण पहल की गई है।
2: जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर के हम आए थे कि हमारी महिला सशक्त है, हमारी महिला मजबूत है, उसको आगे बढ़ना चाहिए, देश का नेतृत्व भी करना चाहिए, प्रदेश का नेतृत्व भी करना चाहिए, इसके लिए लगातार महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बहनें सशक्त होंगी तो निश्चित रूप से हमारा देश आगे बढ़ेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के विद्यार्थियों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा की है। राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों पर आर्थिक बोझ कम करना है। उन्होंने कहा कि देश के शीर्ष शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कदम से मध्यम वर्गीय परिवारों के हजारों करोड़ रुपए कोचिंग पर खर्च होने से बचेंगे। उन्होंने कहा कि 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों में प्रतिभा की पहचान के लिए गांवों, शहरों और स्कूलों में प्रतिभा खोज अभियान भी शुरू किया जाएगा।
3: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी का 2018 में आज ही के दिन निधन हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। वर्ष 2015 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने सोशल मीडिया संदेश में श्री मोदी ने वाजपेयी को असाधारण दूरदर्शी और उत्कृष्ट राजनेता बताया, जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री के शब्दों ने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया और उनके नेतृत्व ने राष्ट्र को

0: सशक्त बनाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। इस योजना के तहत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे। ये योजना आज से लागू हो गई है। इसके तहत घोषणा दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2026 है। इसके बाद कोई घोषणा दाखिल नहीं की जा सकेगी। ये एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है जो वित्त अधिनियम 2026 के अध्याय 4 में शामिल है। आयकर विभाग ने योजना को समझने में करदाताओं की मदद के लिए अक्सर पूछे जाने वाले सवाल भी जारी किए हैं। और अब मौसम। प्रदेश में बारिश का दौर मंद पड़ने लगा है। पिछले 24 घंटों में राजधानी जयपुर में 13 शहरों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। करौली जिले में देर रात रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। बारिश के चलते जिले के नदी नालों में पानी की आवक लगातार बनी हुई है। बारिश से मौसम सुहावना हो गया है और लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है। हालांकि राज्य के पश्चिम भाग में बारिश का दौर अब फीका पड़ने की संभावना है। वहीं पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्से में हल्की बारिश का दौर आगामी कुछ और दिन चलता रहेगा। मौसम विभाग ने राज्य में 18 अगस्त तक प्रदेश के पूर्वी भाग में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताते हुए जयपुर और भरतपुर संभाग के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और बीकानेर संभाग के हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। राजधानी जयपुर में आज बूढ़ी तीज की सवारी निकाली जाएगी। बैंड बाजों और शाही लवाजमे के साथ जनानी ड्योढ़ी से ये सवारी निकलेगी। इसके लिए प्रशासन ने यातायात के विशेष प्रबंध किए हैं। गौरतलब है कि कल हरियाली तीज के अवसर पर पर्यटन विभाग की ओर से शाही लवाजमे के साथ तीज की सवारी निकाली गई थी। पुरुष क्रिकेट में भारत आज गॉल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे दिन अपनी पहली पारी 288 रन पर 2 विकेट से आगे बढ़ाएगा। कल खेल समाप्त होने तक देवदत्त पड्डिकल 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज प्रदेश के दौरे पर चित्तौड़गढ़ और अलवर में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। राज्य सरकार ने आशा सहयोगिनियों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की। कृतज्ञ राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन कर रहा है। और प्रदेश में बारिश का दौर धीमा, जयपुर और भरतपुर संभाग में आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यह अमीर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर और दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर भी।
2: कल सुबह 9:15 पर सुनिए कार्यक्रम फिट एंड फाइन। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर, टोंक रोड, टोंक फाटक, गांधीनगर, जयपुर।
3: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
4: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
5: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
6: अदबी दुनिया की अजीम शख्सियात और उनके कारनामों से आपको रूशनास कराना, हल्काए इल्म अदब की सरगर्मियों से हर वक्त बाखबर करना, मुशायरों के जरिए शोराए कराम के फिक्र फन की बुलंदियों को छूना, अलावा अजीम मुल्की और बैनुल अक़वामी मामलात, सियासी नजरियात, माशियात और सकाफत पर मुदल्लल मुबाहिसे और इजहार ख्याल, साथ ही अवामी मफादात

0: अरे अम्मा जी, जरा मुन्ने को संभाल लेना, मैं बाबूजी के लिए चाय बना रही हूँ।
1: देखती हूँ। अरे रे रे, इसने तो पोटी कर दी। अरे बेटा, तूने तो सारे हाथ पांव सब सान लिए। अरे मुन्ने के दादाजी।
2: अरे क्या है?
1: जरा एक लोटा पानी का तो लेकर आओ।
2: वो बहू कहाँ गई?
1: वो तुम्हारे लिए चाय बना रही है।
2: ठीक है, आता हूँ।
3: ये लो, लो दो।
1: हाँ, जरा ठीक से डालो।
3: हाँ, लो, लो, लो।
1: इधर इधर इधर।
3: हाँ, ये ले,
1: लो। तुम मुन्ने को संभाल लो, मैं बहू को जाकर भेजती हूँ।
3: अरे लेकिन सुनो तो सही, पहले अच्छी तरह से साबुन से हाथ तो धो लो।
1: क्यों, क्या हुआ? मुन्ने की ही तो पॉटी है और मुन्ना तो सिर्फ दूध पीता है, ये कौन सा नाच खाता है?
3: अरे बावली, वैसे बीमारी के कीटाणु तो मल चाहे बच्चे का हो या बड़े का, दोनों में ही होते हैं। इसलिए पोटी साफ करने के बाद भी अच्छी तरह साबुन से हाथ धोने चाहिए।
1: ये मेरे राम जी, मैं तो समझती थी कि दूध पीते बच्चे के मल में तो गंदगी के कीटाणु हो ही नहीं सकते। अच्छा हुआ जी जो आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अभी साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोकर आती हूँ और बहू को भी समझाऊंगी कि हमेशा बच्चे की पोटी धोने के बाद साबुन से हाथ धोकर ही काम करे।

0: यह आकाशवाणी जयपुर अजमेर का अमीर चैनल है। आइए सुनते हैं नाटक बेटे का रिश्ता।
1: नाटक में आज हम आपको सुनवा रहे हैं नाटक बेटे का रिश्ता। नाटक की लेखिका हैं सरोज देवी शर्मा और प्रस्तुति सीमा विजय की है। कलाकार जिन्होंने इसमें भाग लिया है उनके नाम हैं सोनाली सैनी, आशीष कुमार जैन, सुरभि भारद्वाज, संजय पारीक और अदनान हसनी। तो आइए सुनते हैं ये नाटक बेटे का रिश्ता।

0: जी तुम्हारी चाय।
1: पकड़ो, सवेरे से ये तीसरी चाय है। अजी 9 बजने को आ गए लेकिन तुम्हारा अखबार पढ़ना अभी तक पूरा नहीं हुआ है। न जाने इस अखबार में ऐसा क्या है जो तुम इससे हमेशा चिपके ही रहते हो।
2: अरे भाग्यवान, अखबार तो मैंने कभी का पढ़ लिया, अब तो इसमें अपनी बिटिया की शादी का विज्ञापन देख रहा हूँ।

0: विज्ञापन देख रहा हूँ। पिछले 6 महीने से विज्ञापन देख रहे हो, लेकिन कुछ भी नतीजा नहीं निकला अब तक।
1: अरे नतीजा कैसे निकले, सब बातें ठीक ठाक चलती हैं, लेकिन दहेज पर जाकर बात अटक जाती है।
0: हाँ सो तो है, आग लगे इस मुए दहेज को, और ये लड़के वाले 4 लोगों के सामने तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, दहेज के विरोध में भाषण देंगे, फिर अखबार में फोटो छपवाएंगे, लेकिन जब बेटों की शादी की बात आएगी तो घुमा फिरा कर दहेज के लिए ही दबाव बनाएंगे।
1: बिल्कुल सही कह रही हो। अरे अपने समाज के प्रधान भिखारी मल जी ने पिछले महीने अपनी समाज की बैठक में जो दहेज के खिलाफ इतना ओजस्वी भाषण दिया था, अरे तुम भी तो मौजूद थी उसमें। पूरे समाज को शपथ दिलाई थी कि आज के बाद से समाज का कोई बंधु न दहेज लेगा न दहेज देगा। अगर कोई भी समाज का बंधु ऐसा करेगा तो उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा।
0: हाँ जी, शपथ तो ली थी हम सब ने, लेकिन मैंने तो सुना है कि उन्होंने अपने बेटे की शादी में अच्छा खासा दहेज लिया है, कार, यहाँ की पॉश कॉलोनी में बंगला, बेटे के MBA करने के लिए विदेश भेजने का खर्चा तक ले लिया। अरे बहुत कुछ लिया है, तुम्हें पता भी है।
1: हाँ लिया तो है।
0: फिर वो इतने लंबे चौड़े भाषण क्यों झाड़ रहे थे? समाज के लोग कुछ नहीं बोले क्या?
1: बोले क्यों नहीं,
0: क्या क्या बोले लोग? अरे बोलो, और वो क्या बोले?
1: अरे वो तो एकदम बिफर गए, कहने लगे कौन कहता है कि मैंने दहेज लिया, ये सब तो उन्होंने अपनी बेटी को दिया। और तो और वो बोले कि वो खुद मेरे बेटे को MBA करने का दबाव डालकर इंग्लैंड भेज रहे थे, वरना मैं तो उन्हें अपनी दुकान संभला देता।
0: हे भगवान, लोग बाग कितनी जल्दी अपनी बात से पलट जाते हैं, और तुम रहे निरे गाय, लोग तुम्हें अपनी बातों में फंसाते हैं और तुम उनकी बात मान भी लेते हो। मैं कहती हूँ ये समाज में ही फंसे रहे तो हमारी बेटी की शादी में इतना दहेज कहाँ से लाएंगे? ये गाड़ी बंगला जेवर जायदाद कहाँ से लाएंगे ये सब? अरे इतना पैसा कहाँ से आएगा? अब क्या सड़क पर कटोरा लेकर बैठने के दिन आ गए हैं हमारे? सुनो जी, जरा शांति से सोचो है। मैं कहती हूँ क्यों ना हमारी बेटी की शादी हम ये जाति के बाहर कर दें, क्या रखा है आखिर जाति वाती में? बोलो।
1: अरे अरे अरे ये क्या बेवकूफी की बातें कर रही हो? अरे हमें इसी समाज में रहना है, अपने समाज वाले क्या कहेंगे?
0: अरे भाड़ में गया तुम्हारा समाज वमाज, ऐसे दोगले लोगों के समाज में रहकर हमारा कुछ भी भला नहीं होने वाला। हाँ जरा शांति से सोचो है, हमें तो अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा लड़का चाहिए जो उसे खुशी से प्यार से अपने घर में रखे, क्यों फिर वो चाहे किसी भी जाति का हो, है ना? तो एक काम करते हैं, तुम जल्दी से अखबार उठाओ और शुरू हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए एक बड़ी ऐसी चाय बनाकर लाती हूँ, है? तुम ढूंढो, कोई अच्छा सा लड़का जरूर मिलेगा आज। जाती हूँ, चाय लेकर आती हूँ।
1: क्या बात है, क्या बात है। अभी लो मैडम, आपके प्यार और हाथों से बनाई चाय के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और फिर ये तो अपनी बिटिया के रिश्ते की बात है। ये अखबार में ये देखो, ये एक आया है, सुनो, 30 वर्षीय होटल कर्मी युवक हेतु, कद 5 फुट 8 इंच, आय 4 लाख प्रतिवर्ष, सुंदर सुशील पढ़ी लिखी कन्या चाहिए, जातीय बंधन नहीं। अरे लेकिन ये लड़का तो बिटिया से 6 साल बड़ा है और आय भी कम है। अच्छा ये दूसरा, हाँ ये देखो सुनो, कद 6 फुट 5 इंच, उम्र 31 वर्ष, MBA, एक कंपनी में उच्च पदस्थ युवक हेतु सुयोग्य कन्या चाहिए। हे भगवान, ये तो 7 साल बड़ा है और कद भी ज़्यादा है। ये सही लग रहा है, 26 वर्षीय, 5 फुट 6 इंच, कद गोल्ड वर्ण, BCOM, MBA, खुद का व्यवसाय हेतु उच्च शिक्षित, सुंदर सुशील कन्या चाहिए, जातीय बंधन नहीं और दहेज विरोधी। हाँ ये रिश्ता ठीक रहेगा। अजी सुनती हो?
2: अजी आ रही हूँ, ला रही हूँ तुम्हारी चाय।
0: मिला कोई रिश्ता? लो पहले चाय पियो है, कहीं बात बनती हुई दिख रही है, मिला कोई लड़का? अजी बोलो ना।
1: अरे तुम इतने प्यार से चाय पिलाओ और बात ना बने, ऐसा हो सकता है क्या?
0: अरे वाह वाह वाह वाह, क्या करता है लड़का बताओ?
1: अरे उसका खुद का बिजनेस है और MBA किया हुआ है उसने।
0: अच्छा उम्र क्या है?
1: उम्र सब बिल्कुल सही बैठ रही है, 26 साल और कद 5 फुट 6 इंच।
0: अच्छा अच्छा ये तो बढ़िया रहेगा, कद और उम्र दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। अच्छा कितना कमा लेता है?
1: ये तो इसमें लिखा नहीं है, लड़का अपने पैरों पे खड़ा है, यही क्या कम है? चलो।

0: बात करके देखता हूँ, उनका नंबर भी दिया हुआ है इसमें।
1: अच्छा अच्छा मिला फोन।
0: हाँ, 8569437888।
1: घंटी गई।
0: हाँ, घंटी जा रही है, जा रही है।
2: हेलो कौन साहब।
0: हेलो।
2: हाँ कौन।
0: जी जी मैं एमएलए।
2: अरे कहाँ के एमएलए हो। अरे मतलब हमारा मतलब है किस क्षेत्र के एमएलए हो।
0: अरे जी मैं वो वाला एमएलए नहीं हूँ।
2: तो फिर कौन से वाले एमएलए हो।
0: अरे जी दरअसल मेरा नाम मनोहर लाल अनेजा उर्फ एमएलए। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ भाई साहब।
2: अब जान सकते हो। अगर जनाब आप एमएलए हो तो मैं एमपी हूँ।
0: जी
2: जी जैसे आप मनोहर लाल अनेजा है ना यानी एमएलए, ऐसे मैं महावीर प्रसाद उर्फ एमपी।
0: अरे वाह ये भी खूब रही। आप एमपी और मैं एमएलए, खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो।
2: वैसे मेरे को लगता है कि आप ना बड़े मजेदार इंसान हैं। वैसे मैं जान सकता हूँ कि आपने मुझे फोन क्यों किया है।
0: जी आज आपने अखबार में अपने बेटे की शादी का विज्ञापन दिया है ना हुजूर।
2: दिया है तो।
0: जी मैं उसी संदर्भ में आपसे बात करना चाहता था।
2: ओहो आप उसी संदर्भ में मुझसे बात करना चाहते थे। अरे वाह वाह क्या बात है, बहुत सही जगह फोन किया है आपने। वैसे जनाब आप बोल कहाँ से रहे हैं।
0: जी मैं बोल तो अपने मुंह से रहा हूँ।
2: अच्छा है, बिल्कुल मेरे जैसे हो, बिल्कुल मेरे जैसे हो, खूब जमेगी हम दोनों की। वैसे हम भी मुंह से ही बोलते हैं। नहीं मेरा पूछने का मतलब सिर्फ इतना सा था कि आप रहते कहाँ पर हैं।
0: जी मैं आदर्श नगर में रहता हूँ। और आप कहाँ रहते हैं।
2: अरे जनाब आपके बगल में ही रहता हूँ, मैं वैशाली में रहता हूँ। तो ठीक है, एक काम करते हैं एमएलए साहब, ये बातें फोन पर ज्यादा करना ठीक नहीं है। आप कल हमारे घर पर आ जाइए, वहीं पर बैठकर रिश्ते के बारे में बात कर लेंगे और साथ में दो दो कप चाय भी पी लेंगे। मैं आपको अपना जो एड्रेस है वो मोबाइल पे करते हैं ना क्या। एक मिनट जरा मैं एक मिनट पूछ कर बता। अरे सरला अरे वो मोबाइल पे क्या करते हैं भाई। हाँ वो व्हाट्सएप कर देता हूँ।
0: जी जी बिल्कुल सही है, मैं कल जरूर हाजिर होता हूँ। वैसे मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि आपके सुपुत्र करते क्या हैं साहब।
2: अरे कैसी बातें करते हैं जनाब, अभी सुवर में घर पर फालतू तो बैठेंगे नहीं, करते तो बहुत बड़ा काम है। मेरा कहने का मतलब है कि उनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है।
0: अरे वाह तो ठीक है भाई साहब, मैं कल 12 से 12:30 बजे के आसपास आपके घर में जरूर हाजिर होता हूँ।
2: हाँ ठीक भाई साहब, मैं आपका इंतजार करूँगा, आइएगा जरूर भाई साहब। हाँ नहीं नहीं मैं शार्ट टाइम पर, बिल्कुल समय का पाबंद हूँ मैं।
0: जी जी।
1: हे बजरंगबली ये रिश्ता तो करवा ही देना, अगर ये रिश्ता हो गया ना तो बहुत बड़ी सवामणि करूंगी भगवान, पूरे मोहल्ले को न्योता दूंगी। और वो बगल वाली रमा भाभी वैसे तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उसे भी बुला ही लूंगी भगवान, ये रिश्ता पक्का करा दो। अजी अब तुम यहीं बैठे रहोगे या कुछ काम धाम भी करोगे। नहाने का वक्त हो गया है, अजी उठो देखो घड़ी में 10:45 बज चुके हैं।
0: क्या 10:45 बज गए। हे भगवान
1: जाओ,
0: आज फिर दफ्तर में लेट हो जाऊंगा। अच्छा मैं नहाकर आ रहा हूँ जल्दी।
1: हाँ हाँ
0: मेरे रास्ते जल्दी से लगाओ जल्दी।
1: हाँ हाँ सब तैयार है।
2: अरे कोई आने वाला है, आज कोई आने वाला है, आज कोई आने। अम्मा अरे ओ अम्मा।
1: हाँ बेटा।
2: अरे अम्मा कहाँ बुढ़ापे में अपने आप को परेशान कर रही हो, मैं चंदू की अम्मा को बुला रहा हूँ। आओ आओ मेरे साथ आओ, इधर बैठो। हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, बस बस बस बस ठीक है। अरे चंदू की अम्मा अपने चंदू के रिश्ते के लिए आज कोई एमएलए आने वाले हैं।
3: क्या एमएलए, कहाँ के एमएलए।
2: अरे भाग्यवान जहाँ के हम हैं एमपी।
3: क्या मतलब।
2: अरे तुम भी ना सारे मतलब एक साथ जानना चाहती हो। अरे जैसे मैं महावीर प्रसाद उर्फ एमपी हूँ, वैसे ही वो मनोहर लाल उर्फ नहीं मेरा मतलब मनोहर लाल अनेजा उर्फ एमएलए हैं।
3: ओफो मैं तो समझी कि सचमुच के ही कोई एमएलए आ रहे हैं, तो ठीक है आने दो।
2: हाँ अरे ठीक है आने दो, अरे मेरे को भी पता है आने

0: रास्ते के लिए आ रहे हैं।
1: अरे यार, कर दी ना वही बात, कर दी ना वही बेवकूफों वाली बात।
0: तो फिर ये तड़क भड़क क्या मतलब है इन सब का?
1: अरे इसका मतलब ये है कि ताकि वो ज्यादा से ज्यादा दहेज की सोचें।
0: लेकिन तुमने तो कहा था कि दहेज मांगोगे ही नहीं।
1: अरे तो कहा था, मानने के लिए कब कहा था, सिर्फ मुंह से ही तो कहा था। अरे कमाल करती हो तुम भी। अरे दहेज नहीं आएगा तो फिर काम कैसे बनेगा, इसीलिए तो
0: वो तुम्हारी बातें ना समझ में ही नहीं आती है मुझे तो। क्या कहना चाहते हो?
1: अरे तुम्हें समझने की कोई जरूरत नहीं है, जितना समझा रहा हूँ बस उतनी सी बात समझो। अच्छा एक बात बताओ, जब भी हम किसी ब्रांडेड कंपनी के तड़क भड़क वाले शोरूम में जाते हैं तो बिना कोई मोल भाव किए तुम चीजें खरीद लेती हो ना? नहीं खरीदती हो कि नहीं? और जब अपने आसपास ये नीचे किराने वाले और ये आसपास छोटे मोटे दुकानदारों के पास जाती हो तब मोल भाव करती हो कि नहीं?
0: वो तो करना ही पड़ता है।
1: तो बस वही बात है, जितना दिखावा उतना दहेज, और कम से कम पैसे देने की कोशिश करना, समझी?
0: हे भगवान, पर इन सब बातों का चंदू के रिश्ते से क्या लेना देना है?
1: अरे यार वही सब कुछ तो बता रहा हूँ, जब वो एमएलए अपने घर की शान और शौकत देखेगा तो खुद बखुद ज्यादा से ज्यादा दहेज देने की कोशिश करेगा। समझो समझो सरला समझो।
0: ओ तो इस तरह हमें बिना मांगे ही अच्छा खासा दहेज मिल जाएगा।
1: आ गई समझ में?
0: ठीक है, अब बिल्कुल बात समझ गई। अभी तैयार होकर आती हूँ।
1: हाँ जी आराम से, जितना तैयार होना है तैयार हो लो, बस मैंने जो समझाया है उस समझ का ध्यान रखना, बेसमझ मत होना। हाँ ठीक है ना?
0: बिल्कुल।
1: ये मुझे लगता है कि घंटी बज रही है, यानी वो आ गए। हाँ जी बस आ ही रहा हूँ। एक मिनट। अरे यार अम्मा तुम साइड में हो ना? अम्मा साइड में? अरे साइड में हो अम्मा, साइड में। आया आ गया। लो जी आइए जनाब आइए।
2: जी महावीर प्रसाद जी आप ही हैं ना?
1: जी साहब बिल्कुल मैं ही हूँ, आप तो गलत पहचान ही नहीं सकते। मैं ही महावीर प्रसाद उर्फ MP हूँ। अरे बाहर क्यों खड़े, आइए भीतर आइए, तशरीफ रखिए।
2: जी धन्यवाद। आपका घर तो काफी बड़ा और सुंदर है।
1: जी साहब
2: क्या कमाल का फर्नीचर है,
1: सब ऊपर वाले
2: का। और ये सजावटी सामान वाह वाह कमाल के।
1: अरे जनाब बस 600 स्क्वायर यार्ड में बना हुआ है साहब। हाँ बस हमारे लिए तो यही सब कुछ बहुत है। अरे लो ये मेरी धर्मपत्नी है सरला। सरला मेहमान आ गए हैं भाई
2: जी। नमस्कार।
1: हाँ नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी।
1: बस इनके लिए तुम चाय नाश्ते का इंतजाम करो ना।
0: मैं अभी आप सबके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। वैसे तो घर में नौकर चाकर सब है, पर आज ऐसा है ना कि हमारे जो नौकर है उसके साले की शादी है, इसीलिए सारा इंतजाम आपके लिए अभी मैं किए देती हूँ।
2: अरे इंतजाम मत कुछ करिए आप, बिल्कुल फिक्र मत करिए, आप तो बैठिए अपना काम करिए पहले।
0: बस मैं अभी आई।
1: हाँ तुम चाय की भी व्यवस्था करो। हाँ ठीक है सरला ओके।
2: लगता है आपकी श्रीमती जी को डायमंड ज्वेलरी का काफी शौक है।
1: हजी साहब अब क्या बताऊं, डायमंड ज्वेलरी का शौक तो है ही है, और वो भी प्लैटिनम में। गोल्ड में तो इनको पसंद ही नहीं आता साहब।
2: अच्छा, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से तो आप शायद परिवहन विभाग में इंस्पेक्टर हैं।
1: जी हाँ बिल्कुल, मतलब इंस्पेक्टर था जनाब, अब तो मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ। लेकिन आपको शायद गलत फहमी हो रही है, ये सब कुछ मैंने नहीं किया है
2: तो?
1: सब कुछ मेरे बेटे की कमाई से हो रहा है।
2: अच्छा
1: जी।
2: अच्छा ये बताइए कि आपके सुपुत्र क्या करते हैं?
1: क्या जनाब आप घूम फिर के उसी बात पर आ जाते हैं। अरे बताया तो था मैंने कि उसका वो क्या कहते हैं, हाँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है।
2: इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का?
1: जी
2: तब तो आपको उनकी आय के बारे में पता ही होगा।
1: कैसी बातें करते हैं जनाब, अरे बेटे को बाप के बारे में नहीं पता होगा तो किसके बारे में पता होगा।
2: हाँ?
1: जनाब देखिए अगर आप पूछना ही चाहते हैं तो मैं भी खुलकर बता देता हूँ। मेरे हिसाब से तकरीबन 30 से

0: 30 लाख रुपए सालाना कमा लेता है।
1: 30 से 35 लाख रुपए सालाना?
0: जी।
1: फिर तो आपका बेटा बड़ा भारी इनकम टैक्स भरता होगा।
0: अजी लानत भेजिए इन टैक्स वालों को। जनाब हमारे चंद्रमोहन ने तो शुरू से ही अपना काम इस तरीके से सेटिक कर रखा है कि इन टैक्स डिपार्टमेंट वालों को भनक तक नहीं लगने देता कि उसकी रियल इनकम क्या है।
1: ये चंद्रमोहन कौन है?
0: चंद्रमोहन? अरे वही मेरा बेटा सीएम।
1: अच्छा, इसका मतलब आपके सुपुत्र अकाउंट की हेराफेरी में बड़े माहिर लगते हैं।
0: आप भी जनाब एक बात है। अरे कुरेद कुरेद के आखिर निकालना क्या चाहते हैं? कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जब रिश्ता जुड़ने जा ही रहा है तो अब आपसे क्या छुपाना जनाब।
1: बताइए बताइए, छुपाने की क्या बात है?
0: इस देश में सब लोग ऐसा ही कर रहे हैं।
1: अच्छा,
0: और मैं पूछता हूँ कि अगर मेरा बेटा कुछ कर रहा है तो क्या गलत कर रहा है?
1: हाँ, बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन मैं कैसे मानूं कि आपके सुपुत्र 35-40 लाख रुपए सालाना कमाते हैं?
0: अजी लो साहब, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या।
1: घर तो आपका करोड़ों का लगता है।
0: अजी साहब, घर देखकर क्या वैल्यू पता लगेगी, मैं आपको सारी चीजें ही खुल्लम खुल्ला दिखा देता हूँ।
1: बिल्कुल दिखाई दे।
0: एक मिनट आप यहीं पर रुकिए, मैं अभी जितना कुछ है वो सब कुछ लेकर आता हूँ।
1: लाइए लाइए,
0: अभी रुकिए रुकिए। अरे भैया, अरे सरलाज, अरे ये पकड़ा दो जितना कुछ है। हाँ लाओ, मुझे दो लाओ। अरे वो लाल वाला बैंक खाता भी दे दो। अरे यार, अरे इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे दो। हाँ अभी लाया साहब, ये लीजिए जनाब, ये लीजिए, ये पीएनएल अकाउंट लीजिए, ये ट्रायल बैलेंस लीजिए, ये कैपिटल अकाउंट लीजिए। और कोई अकाउंट चाहिए आपको?
1: वो आपकी जो लाल वाली डायरी है।
0: हाँ, मुझे मालूम था आप इसके बारे में जरूर पूछेंगे, क्योंकि असली रोकड़ बुक तो यही है।
1: मुझे लगता है
0: ये बड़ी धूल मिट्टी हो रही है यार।
1: कोई दिक्कत
0: नहीं, ये लीजिए साहब।
1: हाँ। और वो जो आपका रजिस्टर दिख रहा ना, एक
0: हाँ,
1: गुलाबी गुलाबी,
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये भी ले,
1: वो भी दे दीजिए जरा।
0: लीजिए जनाब।
1: अच्छा, ये सारे पेपर मेरे पास यहाँ सामने रख दीजिए।
0: हाँ, अरे थोड़ी सी मदद करो ना यार, तुम खड़े हो।
1: हाँ लीजिए लीजिए, मैं पकड़ता हूँ।
0: लीजिए।
1: अच्छा, तो ये वाला रजिस्टर मुझे लगता है कि आपका असली हिसाब किताब का रजिस्टर है, इसे बड़ा मुश्किल से दे रहे थे आप।
0: अब जनाब कुछ चीजें तो छुपा कर रखनी ही पड़ती है। हाँ, आप तो सारी बात समझते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: लेकिन देख लीजिए भाई, हम रिश्तेदार होने वाले हैं, अब आपसे क्या छुपाना।
1: बिल्कुल,
0: देखिए।
1: हेलो सर, नमस्कार, मैं चतुर्वेदी बोल रहा हूँ। हाँ सर, जी हाँ सर, आप टीम को भेज दीजिए। जी सर, मैंने सारी खोजबीन कर ली है, सारे पेपर अपने कब्जे में ले लिए हैं। जी सर बिल्कुल एकदम राइट है सब। जी हाँ, हम जो सोच रहे थे बिल्कुल वैसा है, हिसाब किताब में बहुत सारी गड़बड़ है सर।
0: अरे सरला, बड़े लोग हैं, ऊंचे लोग, ऊंची पसंद, हा? वो आता था ना टीवी पर, बस वही बात है। वैसे जनाब एक बात पूछूं, आप किससे बात कर रहे थे?
1: अभी थोड़ी देर में आपको सब पता चल जाएगा।
0: अजी बात की जरूरत क्या है, आप स्वयं बता दें कि आप किससे बात कर रहे थे।
1: कमिश्नर से।
0: कमिश्नर सर ला, ये कमिश्नर
1: जी, इनकम टैक्स कमिश्नर साहब से।
0: तो आप जनाब, मतलब सर ला, मतलब ये आप तो मनोहर लाल, मतलब आप मनोहर लाल अनेजर।
1: जी नहीं जी नहीं जी नहीं, मैं कोई मनोहर लाल अनेजा नहीं हूँ।
0: तो आप कौन है फिर?
1: मैं हूँ राजीव खन्ना। जी हाँ,
0: आप कौन हो?
1: इनकम टैक्स ऑफिसर, भारत सरकार।
0: नहीं नहीं, इनकम टैक्स ऑफिसर
1: ये छोड़िए। हाँ, ये मत, आप कागजों पे हाथ मत लगाइए।
0: ये लेकिन सुनिए।
1: जी हाँ, मेरे पास रहने दीजिए।
0: अरे मेरी बात सुनिए, लेकिन आप इस घर में क्या कर रहे हैं? अरे सरला सरला, ये सब क्या हो रहा है? सरला, कम से कम तुम्हें तो बताना चाहिए था। अरे मुझे क्या पता, घंटी बजी, मैंने दरवाजा खोला, कोई आया तो मैंने समझा कि ये वो एमएलए साहब है। अब मुझे क्या पता था कि ये इनकम टैक्स। नहीं नहीं, देखिए जनाब मेरी बात सुनिए, ये जो कुछ भी दस्तावेज आप देख रहे हैं ये सब जाली है, सब जाली है।
1: कोई जाली नहीं है, मैंने सब चेक कर लिया है।
0: नहीं,
1: और ध्यान रखिए, अब आप इतना परेशान हो रहे हैं, जब आपने ये सारे काम किए तब आपको कोई परेशानी

0: यूं ही।
1: हे भगवान, अरे अरे मेरे सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे सरला सरला, मेरे बड़ा दर्द हो रहा है सरला। यहाँ पर अरे ये घंटी को भी अभी बजना था। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है?
2: हेलो,
1: कौन कौन बोल रहा है?
2: हेलो एमपी साहब, मैं एमएलए बोल रहा हूँ।
1: एमएलए, हाँ कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप?
2: अरे जी, दरअसल मेरे स्कूटर का टायर पंचर हो गया था, इसलिए मैं पहुंचने में 2 घंटे लेट हो गया। आप कहें तो मैं अभी आ जाऊं?
1: अरे आप आने की अब कोई ज़रूरत नहीं है।
2: अरे आप तो नाराज़ हो गए, लेकिन साहब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, स्कूटर का टायर पंचर हो गया।
1: देखिए एमएलए साहब, आपके स्कूटर का टायर नहीं, मेरी जिंदगी का टायर पंचर हो गया है। आप कृपया करके फोन काट दीजिए। अरे यार, ये भगवान, ये क्या हो गया? हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे सरला, तुम्हें तो कम से कम सूद भी चाहिए थी ना एक बार बात कि पूछना चाहिए था कौन आया है कौन नहीं। देखिए जनाब, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि कोई ना कोई गलत फहमी हुई है, आपको किसी ने गलत बोला है। जनाब मैं कह रहा हूँ कि हम लोग बिल्कुल सीधे साधे लोग हैं, ईमानदारी से काम करते हैं।
0: जी आपके सारे कागज चेक होंगे, उसके बाद आप बताइए कि आपने किया है कि नहीं किया, इसमें सब लिखा हुआ है।
1: नहीं देखिए जनाब,
0: क्या आपने क्या किया है और क्या नहीं किया है?
1: आपकी बात ठीक है जनाब, लेकिन अब जो गलती हो गई वो हो गई, बात को रफा दफा कीजिए। देखिए मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे जो कुछ हुआ मुझे माफ कर दीजिए जनाब, मुझे माफ।
0: ये जुर्म और कर रहे हैं आप, रफा दफा करने की बात कहकर।
1: नहीं मेरा मतलब वो नहीं।
0: अभी टीम आती है, आपको सब उसके सामने जवाब दीजिए।
1: भगवान भगवान, क्या हो गया भगवान? भगवान मुझे बचा लो, भगवान भगवान मुझे बचा लो।

0: बेटे का रिश्ता, ये नाटक अभी आप सुन रहे थे। नाटक की लेखिका थी सरोज देवी शर्मा और प्रस्तुतकर्ता थी सीमा विजय। कलाकार जिन्होंने इसमें भाग लिया उनके नाम हैं सोनाली सैनी, आशीष कुमार जैन, सुरभि भारद्वाज, संजय पारिक और अदनान हसनी। ये नाटक आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर केंद्र पर तैयार किया गया।
1: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
2: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
3: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर। और
4: बदलो बदलो आदत बदलो।
5: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
4: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं, आइए अब सुनते हैं झलकी।

0: अजी सुनती हो, फिल्म का टाइम हो रहा है और कितना टाइम लगाओगी मेकअप में?
1: आई जी, बस 2 मिनट में आई।
0: ओहो, 2 मिनट करते करते आधा घंटा हो गया, लेकिन तुम्हारे 2 मिनट पूरे नहीं हुए। कितनी ही महंगाई बढ़ जाए पर तुम्हारे मेकअप करने में कोई कमी नहीं आनी चाहिए।
1: हाँ हाँ, कह लो, तुम्हें तो मेरी हर चीज बुरी लगती है।
0: ओहो, जब देखो लड़ने को तैयार रहती हो।
1: हाँ हाँ, मैं ही लड़ती हूँ तुमसे, तुम तो चुपचाप मुंह बंद करके सुनते ही रहते हो, तुम तो जैसे।
0: ओहो डार्लिंग, यूं ही लड़ते रहे तो फिल्म का टाइम निकल जाएगा। अच्छा बाबा, मैं हारा और तुम जीती, पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था जो तुमसे शादी की थी।
1: ओहो, अब अपना जन्मदिन भी भूल गए?
0: क्या मतलब?
1: जिस दिन तुमने मुझसे शादी की थी उस दिन

0: तुम्हारा जन्मदिन था।
1: ओ जन्मदिन
0: तो समझ गए क्यों
1: था।
0: कहते हो मनोज दिन था।
1: देखो डार्लिंग, इन सब बातों की याद तुम ही दिलाया करती हो
0: हाँ जी, तुम्हें थोड़ी याद रहती है शादी शादी कब हुई, बस ये लड़ाई झगड़ा ही तुम्हें याद
1: आए।
0: रहता
1: डार्लिंग,
0: है।
1: तुमसे लड़ाई झगड़ा ना करेंगे तो मजा कैसे आएगा।
0: अच्छा।
1: चलो ठीक है ठीक है, अब चलते हैं। अब ये इस वक्त कौन आ गया? देखता हूँ दरवाजे पर कौन है।
0: छोड़ो जी छोड़ो, हे भगवान, हो गई फिल्म। छठे चौमासे पति देव फिल्म दिखाने ले जा रहे थे, उसमें भी तुमने यमदूत भेज दिया। देखो जी देखो, रुको रुको रुको, कौन है इधर से देख लो खिड़की से, और सुनो।
1: हाँ।
0: अरे सुनो सुनो तो सही।
1: तो कहो ना।
0: अरे उसे बाहर से ही चलता कर देना, समझे,
1: तो
0: वरना
1: लेकिन
0: मैं।
1: वो तो पहले देख तो लूं कि कौन आया है।
0: अरे कोई ना कोई आता ही रहता है।
2: सुनती हो, मेरा दोस्त शर्मा आया है, बिहारी लाल शर्मा।
0: आने तो उसे,
2: बाकी मैं सामान और लेकर आता
0: हूँ। ओफो, देखो जी, तुम्हारे दोस्त को भी आज ही का दिन मिला था आने के लिए। अरे देखो देखो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, देखो दो अटैचियां यहाँ रखी हैं, और टांगे में से एक अटैची और उतारा, और ये थैला। हे भगवान, मैं तो मर जाऊंगी। मुझे लगता है, सुनो सुनो, मुझे लगता है पूरे महीने भर के लिए आया लगता है।
1: ओहो, तुम औरतों का दिमाग बहुत ही शक्की होता है। अरे मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दिन रुकेगा।
0: सुनो जी, मेरे पास आओ। तुम्हारे दोस्त का महीने भर रुकने का इरादा हो तो दो दिन में चलता कर देना, वरना मैं मायके चली जाऊंगी।
1: मैं मायके चली जाऊंगी? अरे तुम औरतों के पास और कोई धमकी नहीं है जो हमेशा मायके जाने की धमकी देती रहती है?
0: देखो जी, बेकार की बात है, मुझे मत किया करो। हाँ, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। तुम कुछ ना कुछ कर लेना, वरना वरना मेरा मायके जाना पक्का है।
2: नमस्कार भाभी जी।
0: नमस्कार जी, नमस्कार। आइए भाई साहब, बहुत दिनों में आए। आइए आइए।
2: यार विजय, जरा 20 रुपए देना, ऑटो वाले को देने हैं। मैं दे देता, पर मेरे पास क्या कि 500 रुपए का नोट है।
1: वो यार मेरे पास भी 50 का है यार।
0: ओफो, ये कैसा कड़का दोस्त आ गया यार, जाने दो से।
2: 50 का ही चलेगा।
1: हाँ तो 50 का, तो फिर ये ले 50 का नोट।
2: थैंक यू विजय। लेना भाई ऑटो वाले।
1: हाँ।
2: अरे रहने दो यार, रहने दो, कीप द चेंज।
1: हाँ। शर्मा जी, ये बताइए, आज अचानक कैसे आना हुआ आपका?
2: अचानक? अरे यार, क्या है, किसी पार्टी का पेमेंट करना था, सोचा पेमेंट करके कुछ दिन तेरे साथ घूमूंगा फिरूंगा ऐश करूंगा, और क्या।
1: फिर तो इसका मतलब 3-4 दिन रुकोगे हैं?
2: 3-4 दिन? यार मैं पूरे 15 दिन का प्रोग्राम बना के आया हूँ।
1: मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। अच्छा ये बताओ, चाय चलेगी या?
2: चाय मैं नहीं पीता, एसिडिटी होती है ना। ऐसा कर, एक गिलास दूध ही बनवा दे।
1: ओह हाँ हाँ हाँ, कविता कविता डार्लिंग, एक गिलास दूध तो ले आओ।
0: लाई जी, अभी लाई दूध।
1: और सुनाओ भाई शर्मा, घर पर सब ठीक ठाक है?
2: सब ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास। तुम सुना, तेरे हाल कैसे है?
1: भाई अपना भी हाल एकदम फर्स्ट क्लास है।
0: लीजिए भाई साहब ये दूध।
2: लाइए भाभी जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत जरूरत थी इसकी।
1: कविता डार्लिंग, मैं जरा मार्केट जा रहा हूँ, कुछ लाना हो तो बता देना, लेता आऊंगा।
0: अरे अरे, लेते आना ना, 1 किलो शक्कर ले आना और कुछ सब्जी।
2: यार विजय, बाजार जा रहे हो तो जरा मेरा काम भी करते आना, पैसे।
1: नहीं यार, पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं, बोलो क्या बात है, क्या लाना है?
0: अरे भाई साहब, पैसे दे रहे हैं तो लेते क्यों नहीं हो?
2: अरे नहीं भाभी, मैं तो ये कह रहा था कि पैसे मैं बाद में दे दूंगा।
1: हाँ हाँ, तो दे देना यार, तुमसे पैसे मांगे हैं क्या कभी? अच्छा ये बताओ तो कि लाना क्या है?
2: ज्यादा कुछ नहीं, 1 दर्जन केले, 1 बड़ी ब्रेड, 1 मक्खन की टिकिया। क्या है कि सूखी ब्रेड गले में उतरती नहीं ना।
1: कोई बात नहीं, तर करके खाओ। ठीक है, ले आऊंगा, मक्खन भी ले आऊंगा। अच्छा कविता डार्लिंग,

0: जा रहा हूँ।
1: जाओ जी, गले से कैसे उतरेगी? मुफ्त का खाना खाने आदि जो हो, यहाँ तो तुम्हें हर वक्त मुफ्त का खाना चाहिए। अरे फूटो यहाँ से, जाओ मरो ना।
0: हाँ भाई शर्मा जी, अब ये बताओ कि नाश्ते में क्या खाओगे जो जाकर मैं मार्केट से ले आऊं।
2: यार तू तो जानता है कि मार्केट की चीजें मैं खाता नहीं। ऐसा कर, देसी घी की सूजी का हलवा ही बनवा ले।
0: देसी घी में सूजी का हलवा, वाह वाह वाह, क्या बात है। कविता, कविता डार्लिंग।
1: आई जी।
0: कविता डार्लिंग सुनो, सूजी का हलवा बना लो नाश्ते में।
1: जी भाई साहब, मैंने तो पहले ही बना लिया है।
2: वाह भाभी जी वाह। भाभी हो तो ऐसी कि देवर के बिना बोले ही उसके मन की बात जान ले। यार विजय,
0: हाँ?
2: मेरे कुछ लेटर है जिन्हें रजिस्ट्री करवा देना।
0: लाओ लाओ लाओ, करवा दूंगा।
1: लीजिए भाई साहब हलवा।
2: क्या महक है, थोड़ा चखकर भी देख लिया जाए। बहुत स्वादिष्ट बना है भाभी जी।
0: अच्छा कविता, मैं चलता हूँ।
1: अरे तो जाओ ना, बार बार कहती हो अच्छा कविता, मैं चलता हूँ मैं चलता हूँ, जाओ ना।
2: विजय, रजिस्ट्री करवाना मत भूलना, पैसे मैं बाद में दे दूंगा।
0: अच्छा ठीक है डार्लिंग, जब से जाओ ना कह रही हो, थोड़ा हलवा हमें भी चखा दो ना।
1: ओ, लेकिन तुम ही तो कह रहे थे मुझे बाजार जाना है, तो कैसे लाती? रुको तो फिर मैं ले आऊं हलवा।
0: तो दो ना थोड़ा सा।
1: ये लो मुंह खोलो।
0: कितना स्वाद है हलवा। भाई तुम मास्टर हो मेहमान नवाजी करने में।
2: भाभी भाभी, बाथरूम में गर्म पानी और साबुन रख दिया ना?
1: हाँ भाई साहब, रख दिया है।
2: अच्छा भाभी, आपके धोबी तो आता ही है, मेरे दो तीन सूट हैं उन्हें धुलवा देना, और कुछ कपड़े हैं उन्हें जरा प्रेस करवा देना। भाभी मैं नहाने जा रहा हूँ, और भाभी जब तक मैं नहा कर आऊँ, एक गिलास गरम गरम दूध बना देना।
1: हाँ हाँ भाई साहब, जरूर जरूर, आप जाइए। ओफो, मैं तो परेशान हो गई इस मेहमान नवाजी से, ये कर देना वो कर देना, जैसे मैं इसकी नौकर हूं।
3: कविता।
1: ओ आ गए तुम, आओ आओ। सुनो जी, आज पूरे 5 दिन हो गए, पर तुम्हारा दोस्त जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। बैठे बैठे हुक्म चलाता रहता है, मेरा सूट धुलवा देना, प्रयास करवा देना, ये बना देना वो बना देना, और ये जैसे खुद का घर हो और हम उसके नौकर हों। आखिर ये कब तक चलेगा बोलो ना, मैं तो अब तक गले तक आ चुकी हूँ, परेशान हो गई।
0: कविता मैं भी परेशान हो गया हूँ, पर क्या करूँ कुछ समझ में ही नहीं आता। सीधे से जाने के लिए भी नहीं कह सकता, और ये शर्मा का बच्चा है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा। अब डार्लिंग तुम ही कोई रास्ता निकालो ना।
1: अजी अब मैं क्या रास्ता निकालूं, तुम ही कोई रास्ता निकाल लेना, वरना बता देती हूँ, सच्ची कह रहे हो, मैं अभी इसी वक्त मायके चली जाऊंगी।
0: डार्लिंग फिर वही मायके चली जाऊंगी, मायके चली जाऊंगी।
1: भाभी पे भाभी आवाज ये चला जा रहा है। आई भैया आई।
2: भाभी जी आज तो आलू के पराठे बना लो।
1: भाई साहब आपके लिए आज स्पेशल पराठे बनाए हैं मैंने।
2: अच्छा वाह भाभी, फिर तो मजा आ जाएगा।
1: आइए ना, आइए आइए, डाइनिंग टेबल पर बैठिए।
2: बहुत जोरों से लगी है मुझे तो।
1: अजी अभी लाती हूँ पराठे।
0: ये कैसे स्पेशल पराठे बना रही हो?
1: उसके पराठे में बहुत ज्यादा मिर्ची डाली है मैंने।
0: क्या ज्यादा मिर्ची डाल के पराठे?
1: देखो जी आज तो बोलो, चुप रहना, ये सब इसे पकाने के लिए किया है मैंने, समझे?
0: ठीक है
1: चलो चला। ये लीजिए भाई साहब पराठे, खाइए।
2: वाह भूख भी बहुत जोरों से लगी है।
1: खाइए भैया।
2: मिर्ची भाभी, मिर्ची
0: मिर्ची। अरे नहीं भाई, मिर्ची कहाँ है
2: ना भाभी? पानी।
0: अरे देखना देखना कविता कौन है।
1: अभी देखती हूँ, अभी आई। नमस्कार सेठ जी, नमस्कार।
4: नमस्कार।

0: वो रहे विजय बाबू।
1: क्या हो गया?
2: आइए सेठ जी, आइए पधारिए, कहिए कैसे आना हुआ और आपके साथ ये दोनों कौन है?
0: अभी बताता हूँ मुंशी जी, कराइए विजय बाबू से दस्तखत और शुरू करिए अपनी कार्रवाई।
3: मिस्टर विजय, आप पर 8,600 रुपए की कुर्की है। आपने सेठ जी का 7 माह का किराया नहीं दिया है। अब या तो 7,600 रुपए सेठ जी को अदा करो, वरना सारा सामान कुर्क किया जाएगा, साथ ही मकान भी खाली करना पड़ेगा।
2: सेठ जी, मकान खाली करना पड़ेगा? सेठ जी, कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। देखिए, मैं वादा करता हूँ, कसम खाता हूँ, अपनी बीवी के सिर पर हाथ रखकर कहता हूँ कि तनख्वाह मिलते ही रुपया चुकता कर दूंगा।
0: अजी, अपनी दलीलें अपने पास रखो विजय बाबू, तुम्हारी यही बातें सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं।
1: क्यों जी, मैं तो सेठ जी को किराया देने के लिए तुम्हें हर महीने पैसे देती थी। तुमने उन पैसों का क्या किया जो सेठ जी कुर्की लेकर आ गए?
2: अब देखो, तुमने कभी मेरी जेब के बारे में सोचा है? जो हमेशा ठन ठन गोपाल रहती है, फिर क्या करता, किराए के रुपयों से ही तो काम चलाता ना।
1: सेठ जी, आपको मैं अगले महीने पूरे पैसे दे दूंगी।
0: बहुत हो गया जी, अब तो सारा सामान कुर्क होगा।
1: भाई साहब
4: जी,
1: आपके पास इस वक्त कुछ रुपए हो तो दे दीजिए, मैं आपको बाद में दे दूंगी।
4: वो क्या है भाभी जी, मैंने कल ही पार्टी का पेमेंट कर दिया, वरना।
0: शुरू करो जी मुंशी जी, शुरू करो अपनी कार्रवाई।
3: सेठ जी, हाँ तो ये दो अटैचियां?
0: हाँ हाँ, खोलो इनको।
4: अरे रे रे, ये सामान मेरा है भाई, मेरा है, इसे छोड़ने की मेहरबानी करें सेठ जी।
0: हाँ? आप बीच में टांग अड़ाने वाले कौन है साहब?
2: सेठ जी, ये मेरा दोस्त है बिहारी लाल, पिछले दिनों ही आया है।
4: जी हाँ।
0: देखो जी, सामान तुम्हारा हो या तुम्हारे परदादा का, मेरे पास सामान जब्त करने के ऑर्डर हैं।
4: पर सेठ जी, मेरा सामान
0: अदालत से छुड़वा लेना।
4: अदालत से?
0: हाँ।
4: विजय बाबू, मेरी मदद करो ना।
2: सेठ जी, ये बहुत ही नेक और शरीफ आदमी है।
4: जी हाँ। सेठ जी, विजय बाबू ठीक फरमा रहे हैं।
2: देखिए सेठ जी, चपरासी जी भी ठीक कह रहे हैं, यही बात कह रहे हैं।
0: ठीक है ठीक है, साहब का सामान बाहर रख दो।
4: जी सेठ जी। अरे भैया चपरासी भैया, टैक्सी भी बुलवा देना।
2: अरे अरे क्यों शर्मा जी, टैक्सी क्यों भाई, कहाँ जा रहे हो?
4: अपने घर को यार।
2: अरे पर गाड़ी तो शाम को जाती है भाई।
4: वेटिंग रूम में इंतजार कर लूंगा भैया, पर यहाँ नहीं रुकूंगा।
2: अरे
4: यहाँ से जा रहा हूँ।
2: अरे भाई अपना घर है शर्मा, कहाँ जा रहे हो?
1: भाई साहब रुकिए ना, भाई साहब
4: फिर मिलेंगे।
1: अरे रुकिए ना।
2: अरे रुको शर्मा, रुको भाई,
4: अभी तो चलता हूँ।
2: अरे रुक भाई,
1: ये अचानक कैसे चले गए? हंस क्यों रहे हो?
2: देखा कविता, तुमने मेरा कमाल, तुम्हारी मुसीबत कैसे 9-2-11 हो गई।
4: विजय बाबू, शर्मा के बच्चे को टैक्सी में रवाना कर दिया।
2: शुक्रिया सेठ जी, इस नाटक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: क्या, ये क्या कह रहे हो, नाटक?
5: हाँ भाभी, ये कुर्की का नाटक तो शर्मा को भगाने के लिए था। विजय बाबू तो हर महीने किराया पहुंचा देते थे, और अच्छे पड़ोसी होने के नाते शर्मा को भगाने के लिए हम सब ने विजय बाबू का साथ दिया।
2: क्यों, कैसा रहा डार्लिंग नाटक?
1: अजीब नाटक तो बहुत बढ़िया था, पर ये नाटक खेला क्यों?
2: अगर नहीं खेलता तो तुम मायके जो चली जाती डार्लिंग।
6: तो डार्लिंग, अब तो नहीं जाओगी ना मायके?
1: अजी जाऊंगी तो तुम्हें भी संग लेके जाऊंगी।
7: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
8: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
9: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
10: अदबी दुनिया की अजीम शख्सियात और उनके कारनामों से आपको रूशनास कराना, हल्काए इल्म अदब की सरगर्मियों से हर वक्त बाखबर करना, मुशायरों के जरिए शोराए कराम के फिक्र फन की बुलंदियों को छूना, अलावा अजीम मुल्की और बैन अक्वामी मामलात, सियासी नजरियात, माशियात और सकाफत पर मुदल्लल मुबाहसे और इजहार ख्याल, साथ ही अवामी मफादात की तबलीग व तशहीर, जिसका मकसद है वो है आपका अपना।

0: Urdu Channel.
1: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।

0: अरे अम्मा जी, जरा मुन्ने को संभाल लेना, मैं बाबूजी के लिए चाय बना रही हूँ।
1: देखती हूँ। अरे रे रे, इसने तो पोटी कर दी। अरे बेटा, तूने तो सारे हाथ पांव सब सान लिए। अरे मुन्ने के दादाजी।
2: अरे क्या है?
1: जरा एक लोटा पानी का तो लेकर आओ।
2: वो बहू कहाँ गई?
1: वो तुम्हारे लिए चाय बना रही है।
2: ठीक है, आता हूँ।
3: ये लो, लो दो।
1: हाँ, जरा ठीक से डालो।
3: लो, लो, लो।
1: इधर इधर इधर।
3: ये ले, ये।
1: लो, तुम मुन्ने को संभाल लो, मैं बहू को जाकर भेजती हूँ।
3: अरे लेकिन सुनो तो सही, पहले अच्छी तरह से साबुन से हाथ तो धो लो।
1: क्यों, क्या हुआ? मुन्ने की ही तो पॉटी है और मुन्ना तो सिर्फ दूध पीता है, ये कौन सा नाच खाता है?
3: अरे बावली, वैसे बीमारी के कीटाणु तो मल चाहे बच्चे का हो या बड़े का, दोनों में ही होते हैं। इसलिए पोटी साफ करने के बाद भी अच्छी तरह साबुन से हाथ धोने चाहिए।
1: ये मेरे राम जी, मैं तो समझती थी कि दूध पीते बच्चे के मल में तो गंदगी के कीटाणु हो ही नहीं सकते। अच्छा हुआ जी, जो आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अभी साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोकर आती हूँ और बहू को भी समझाऊंगी कि हमेशा बच्चे की पोटी धोने के बाद साबुन से हाथ धोकर ही काम करे।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त गगन श्रीवास्तवा और आपका स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम हेलो जयपुर में। दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ हादसे सिर्फ हमारे शरीर को नहीं, हमारी पूरी ज़िंदगी को बदल देते हैं। कभी कभी एक पल और उसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। कल्पना कीजिए एक ऐसी लड़की की जो खेलों में अपना भविष्य देखती थी, जिसके सपने थे, जिसके अंदर कुछ बड़ा करने का जुनून।

लेकिन एक रात एक हादसे ने उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने अपना पैर खो दिया। लोगों ने कहा, अब ज़िंदगी कैसे चलेगी? कुछ लोगों ने कहा, अब ये क्या करेगी? लेकिन उन्होंने एक सवाल पूछा, मैं क्या नहीं कर सकती? और फिर उन्होंने वो करने का फ़ैसला किया जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। उन्होंने तय किया कि वो माउंट एवरेस्ट चढ़ेंगी, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, एक ऐसा पहाड़ जहां पहुंचने के लिए पूरी तरह स्वस्थ शरीर वाले लोग भी अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा देते। लेकिन अरुणिमा के पास एक कृत्रिम पैर था और एक ऐसा सपना जो किसी भी पहाड़ से ऊंचा था। उनका नाम है अरुणिमा सिन्हा और आज गेम चेंजर में कहानी उस लड़की की जिसने अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े हादसे को अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत में बदल दिया। दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे पास ये सुविधा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। और कई बार हमारे पास सच में बहुत मुश्किल परिस्थितियाँ होती हैं। लेकिन अरुणिमा सिन्हा की कहानी में एक बात सिखाती है, परिस्थितियाँ आपकी कहानी की शुरुआत तय कर सकती हैं लेकिन उसका अंत नहीं। मिलते हैं अरुणिमा सिन्हा की कहानी के साथ एक छोटे से संगीत विराम के बाद।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
3: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
4: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाएं समाधान।

0: आप सुन रहे हैं हेलो जयपुर 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। हेलो जयपुर का ये सेगमेंट जारी रहेगा विश्व दर्पण के बाद।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की जानकारी देने वाली योजना का शुभारंभ किया। 50 से अधिक देशों में भारतीय मिशनों से होकर गुजरी सूर्यपथ तिरंगा यात्रा सैन फ्रांसिस्को में संपन्न। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना के प्रभाव में हुए विवादित चुनावों पर प्रदर्शनकारियों की चिंता को लेकर तनाव बरकरार। अमरीका के मिशिगन में हुई गोलीबारी में 6 लोगों की मौत और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब बरकरार रखा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम अधिसूचित कर दिए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों और विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे।
2: छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति डिस्क्लोजर स्कीम एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है जो फाइनेंस एक्ट 2026 के चैप्टर 4 में शामिल है। यह योजना करदाता को एक तय कर का भुगतान करके कुछ ऐसी विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की जानकारी देने की सुविधा देती है जिनका पहले खुलासा नहीं किया गया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के और स्कीम को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के अपने लगातार प्रयासों के तहत इस स्कीम को और इसके नियमों पर एक विस्तृत डॉक्यूमेंट जारी किया है। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले यात्रा कल सैन फ्रांसिस्को में संपन्न हो गई। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमेरिका तक 54 देशों के मिशनों से होकर गुजरी है। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। एक रिपोर्ट।
3: तिरंगे ने दुनिया भर में पूरब

0: ने पश्चिम की ओर प्रतीकात्मक यात्रा की और फिजी से लेकर सैन फ्रांसिस्को तक दुनिया भर में मौजूद भारतीय मिशनों में इसे बारी बारी से फहराया गया। फिजी स्थित भारतीय उच्चायोग से शुरू हुई इस रिले में एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक तिरंगे का संदेश दुनिया भर में पहुंचाया गया। फिजी में सुबह 8 बजे शुरू हुई तिरंगे की ये यात्रा भारतीय मिशनों के माध्यम से पश्चिम की ओर बढ़ी और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, इंडोनेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, उज्बेकिस्तान और ओमान सहित 54 देशों में भारतीय स्वतंत्रता का जश्न मनाया गया। रिले का समापन सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में तिरंगा फहराने के साथ हुआ। इस दौरान वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी जश्न मनाया गया। रिले में प्रवासी भारतीयों और भारत के मित्रों ने उत्साह के साथ भाग लिया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दुनिया के कई देशों में भी तिरंगा फहराया गया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्लोवाकिया, साइप्रस, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल और सिंगापुर सहित कई देशों में भारत की आजादी का उत्सव मनाया गया। भारत ने सभी देशों का आभार व्यक्त किया है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार जताया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भी शामिल रहे। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे की शुभकामनाओं के लिए आभार जताते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों की वजह से भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने रूपियो की शुभकामनाओं के लिए उनका आभार जताया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, स्लोवाकिया, साइप्रस, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल और सिंगापुर के विदेश मंत्रियों को भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसराइल में यरूशलम के प्रसिद्ध कार्ड्स ब्रिज को भारतीय तिरंगे के रंगों में रोशन किया गया। केसरिया, सफेद और हरे रंग की रोशनी भारत और इसराइल के बीच मजबूत संबंध तथा साझा मूल्यों का प्रतीक बनी। इसराइल में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि ये रोशनी दोनों देशों के मजबूत और स्थायी संबंधों को दर्शाती है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सिंगापुर, चीन और हांगकांग में भी बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के लोग उपस्थित रहे। सिंगापुर में उच्चायुक्त शिल्पक एम्बुले ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संदेश पढ़कर सुनाया। चीन में भारतीय राजदूत विक्रम दुराईस्वामी ने भारी वर्षा के बावजूद तिरंगा फहराया और स्वतंत्रता दिवस प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। प्रदर्शनकारियों ने कथित विवादित चुनाव, हत्याओं, जबरन गुमशुदगी और आवश्यक सामान की आपूर्ति में बाधा को लेकर चिंता व्यक्त की है। बलूच नेता मीर यार बलूच ने पाकिस्तानी सेना पर नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सुराब में हाल ही में हुए हवाई हमलों के वीडियो इस बात का प्रमाण है कि बलूचिस्तान में स्थानीय आबादी पर सैन्य कार्रवाई की गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मीर यार बलूच ने कहा कि वो सुराब के गिदार गोंधन इलाके में पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन में महिलाएं और बच्चों समेत 30 लोगों की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के वरिष्ठ नेता सरदार शब्बीर ने दावा किया कि अशांति के दौरान पाकिस्तानी बलों की कार्रवाई में करीब 100 लोग मारे गए हैं। अमेरिका के मिशन में गोलीबारी की कई घटनाओं में संदिग्ध हमलावर समेत 6 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मिसौकी काउंटी में अलग अलग स्थानों पर 5 युवकों की मौत हुई। इस घटना में 13 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई। संदिग्ध हमलावर की पहचान चैड हिकमैन के तौर पर की गई है। बड़े पैमाने पर तलाशी के बाद उसे एक पीड़ित के साथ जंगल में मृत पाया गया। पुलिस ने बताया कि सभी 6 लोगों की मौत गोली लगने से हुई। गोलीबारी की वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है। आगे की जांच जारी है। जिम्बाब्वे के करीबा झील में एक नौका के पलट जाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 72 हो गई है। इनमें 18 बच्चे भी शामिल हैं। उत्तर पश्चिमी जिम्बाब्वे में करीबा शहर से दूर दराज के ग्रामीण और मछली पकड़ने वाले समुदायों के लोगों से भरी नाव

0: मंगलवार को तेज लहरों के कारण पलट गई थी। अधिकारियों ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है कि नाव पर कितने लोग सवार थे या कितने लोग लापता हैं। अनुमान है कि नाव की क्षमता 90 यात्रियों की थी और लगभग 153 लोग इस नौका पर सवार थे। इंडोनेशिया में कल फ्लोरेस के तट के पास आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या 50 से अधिक हो गई है। भूकंप के बाद कई और झटके महसूस किए गए। राहत और बचाव दल सबसे अधिक प्रभावित इलाकों तक पहुंचने के प्रयास में जुटे हैं। इंडोनेशिया सरकार ने मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका व्यक्त की है। दक्षिणी लेबनान में कल इसराइल के हवाई हमले में 11 लोगों के मारे जाने की खबर है। लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने बताया कि अंसार गांव में एक मकान पर हुए इस हवाई हमले में 7 लोग घायल हुए हैं। एक अन्य देर अल जहरानी गांव में हवाई हमले में 4 लोग मारे गए और 17 अन्य घायल हो गए। बेल्जियम में पूर्वी इलाके में हाई फेंस में कल लगी आग से 2000 हेक्टेयर वनस्पति जलकर राख हो गई। आग बुझाने का काम लगभग 30 घंटे तक जारी रहा। स्थानीय मीडिया के अनुसार आसपास के इलाकों में लगभग 600 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वाइम्स नगर पालिका के सौर ब्राइट के 500 और बुटजेनबेक के लगभग 100 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने लगातार दूसरी बार स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब अपने नाम कर लिया है। फ्रांस के पेरिस में खेले गए फाइनल में कार्लसन ने बेलारूस के ग्रैंडमास्टर डेनिस लाजाविक को 2-0 से हराया। अमेरिका के ग्रैंडमास्टर हिकारू नाकामुरा ने अली रेजा फिरोजा को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। चैंपियनशिप में 3 सेटों का प्रारूप अपनाया गया था। श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत पहली पारी में 2 विकेट पर 288 रन से आगे खेल रहा है। कल का खेल समाप्त होने तक देवदत्त 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की जानकारी देने वाली योजना का शुभारंभ किया। 50 से अधिक देशों में भारतीय मिशनों से होकर गुजरी सूर्यपथ तिरंगा यात्रा सैन फ्रांसिस्को में संपन्न। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना के प्रभाव में हुए विवादित चुनावों पर प्रदर्शनकारियों की चिंता को लेकर तनाव बरकरार। अमेरिका के मिशिगन में हुई गोलीबारी में 6 लोगों की मौत। और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब बरकरार रखा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: एक बार फिर स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं हेलो जयपुर और मैं हूं आपका होस्ट चंदोज गगन श्रीवास्तव। दोस्तों, अरुणिमा सिन्हा का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही उन्हें खेलों में काफ़ी रुचि थी। उन्होंने वॉलीबॉल खेला और स्पोर्ट्स में अपना भविष्य बनाने का सपना देखा। उनके लिए खेल सिर्फ खेल नहीं था, वो उनके लिए जीवन का हिस्सा था। लेकिन साल 2011 में उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा हादसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ट्रेन यात्रा के दौरान अपराधियों ने उनके साथ लूटपाट की कोशिश की। विरोध करने पर उन्हें चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया और एक दूसरी ट्रेन की चपेट में आने से उनका एक पैर गंभीर रूप से घायल हो गया। उस रात अरुणिमा के पास सिर्फ दर्द नहीं था, उनके पास एक ऐसा भविष्य था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। अस्पताल, इलाज, ऑपरेशन और फिर ये सच कि उनका एक पैर अब उनके साथ नहीं था। एक खिलाड़ी के लिए ये कितना बड़ा झटका हो सकता है, आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। असल कहानी तो यहीं से शुरू हुई थी, क्योंकि जब ज़िंदगी ने उनसे पूछा अब क्या करोगी, तो अरुणिमा ने जवाब देने के बजाय एक सपना चुन लिया और वो सपना था माउंट एवरेस्ट। लेकिन एवरेस्ट सिर्फ एक पहाड़ नहीं था, वो उनके लिए एक चुनौती थी। अपने डर को जवाब देने की चुनौती, अपने दर्द को पीछे छोड़ने की चुनौती और दुनिया को ये बताने की चुनौती कि इंसान की ताकत सिर्फ उसके शरीर में नहीं होती। मिलते हैं इस कहानी के अगले पड़ाव पर इस संगीत विराम के बाद।

0: दादी कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
2: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
2: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये देख तेरी समझदारी का फल।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो कूल रहो।
4: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
5: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
6: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाएं समाधान।
7: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं हेलो जयपुर और मैं हूं आपका साथी गगन। दोस्तों अरुणिमा सिन्हा ने जब एवरेस्ट पर चढ़ने का फैसला किया तो ये कोई आसान सपना नहीं था, क्योंकि उनके सामने सिर्फ पहाड़ नहीं था, उनके सामने था एक कृत्रिम पैर, ट्रेनिंग की ज़रूरत, शारीरिक दर्द और सबसे बड़ी चीज़ लोगों की सोच। बहुत से लोगों के लिए ये विश्वास करना ही मुश्किल था कि एक ऐसी महिला जिसने अपना पैर खो दिया है वो एवरेस्ट जैसी चोटी पर चढ़ सकती है, लेकिन अरुणिमा ने लोगों की राय को अपनी सीमा

उन्होंने ट्रेनिंग शुरू की और इसके लिए उन्होंने दुनिया के महान माउंटेनर्स में से एक बेछेंद्री पाल से भी मार्गदर्शन लिया। बेछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट समिट किया था और अब वही पहाड़ एक दूसरी महिला के सपने का हिस्सा बनने वाला था। ट्रेनिंग आसान नहीं थी, एक कृत्रिम पैर के साथ चलना, चढ़ना, गिरना, फिर उठना और फिर दोबारा कोशिश करना। कई बार शरीर जवाब देता था लेकिन सपना जवाब नहीं देता था, और शायद यही फ़र्क होता है एक सामान्य कोशिश और जुनून से की गई कोशिश में। सामान्य इंसान थक कर रुक जाता है, लेकिन जिसके पास जुनून हो वो थकने के बाद भी पूछता है, एक बार और कोशिश करूं। और फिर आया साल 2013। अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट की ओर बढ़ रही थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे उनकी ज़िंदगी का सबसे कठिन सफ़र इंतज़ार कर रहा है। दोस्तों, जारी रहेगी अरुणिमा सिंह की ये कहानी इस छोटे से संगीत विराम के बाद।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं हेलो जयपुर और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त गगन श्रीवास्तव। दोस्तों, अब कल्पना कीजिए, चारों तरफ बर्फ़, तेज़ हवाएं, कम ऑक्सीजन, कठिन चढ़ाई और हर कदम के साथ शरीर पर बढ़ता दबाव। लेकिन अरुणिमा आगे बढ़ रही थी, एक कदम, फिर दूसरा कदम, फिर तीसरा कदम, और हर कदम के साथ उनका सपना एवरेस्ट के करीब जा रहा था। लेकिन एवरेस्ट किसी के लिए आसान नहीं होता। ऊंचाई बढ़ती गई, सांस लेना मुश्किल हो गया, थकान बढ़ती गई, लेकिन वो रुकना नहीं चाहती थी, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ एवरेस्ट की चढ़ाई नहीं थी, ये उन सभी लोगों को जवाब था जिन्होंने कहा था कि अब वो कुछ नहीं कर सकती। ये अपने डर को जवाब था, और शायद ये उस रात को भी जवाब था जिस रात उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। और फिर वह ऐतिहासिक पल आया, 21 मई 2013। अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट के समिट तक पहुंच गई एक कृत्रिम पैर के साथ। उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी फतह कर ली। वहां उन्होंने तिरंगा लहराया और उस पल सिर्फ एक पहाड़ नहीं जीत गया था, एक सोच जीत गई थी, एक डर जीत गया था, और शायद सबसे बड़ी बात, एक इंसान ने खुद को साबित किया था। दोस्तों, कभी कभी हम सोचते हैं हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी समस्या क्या है, पैसे, समय, सुविधाएं। लेकिन अरुणिमा की कहानी पूछती है, क्या हम अपनी सीमाओं को सच मान चुके हैं या उन्हें बदलने की कोशिश भी कर रहे हैं? मिलते हैं इस कहानी के अगले हिस्से में इस संगीत विराम के बाद।

एक बार फिर से स्वागत है आपका। दोस्तों, एवरेस्ट जीतने के बाद अरुणिमा सिन्हा की कहानी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही। उन्होंने साबित कर दिया कि डिसेबिलिटी किसी इंसान की पूरी पहचान नहीं होती। एक हादसा आपकी ज़िंदगी का एक चैप्टर हो सकता है, लेकिन वो पूरी किताब नहीं होता। और शायद यही उनकी कहानी की सबसे खूबसूरत बात है। उन्होंने सिर्फ अपनी ज़िंदगी को नहीं बदला, उन्होंने हज़ारों लोगों की सोच बदली। उन लोगों की जो किसी फिजिकल चैलेंज के कारण अपने सपनों से समझौता कर लेते। उन्होंने बताया कि ज़िंदगी में कभी कभी हमें अपने शरीर से ज़्यादा अपने मन को मजबूत करना पड़ता है, क्योंकि शरीर कह सकता है मैं थक गया हूँ, लेकिन अगर आपका मन कहे मैं अभी नहीं रुकूँगा तो कहानी बदल सकती। अरुणिमा सिन्हा की कहानी हमें एक और बात सिखाती है, जीत हमेशा सबसे तेज़ दौड़ने वाले की नहीं होती। कभी कभी जीत उसकी होती है जो गिरने के बाद सबसे ज़्यादा बार उठता है। मिलते हैं इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर।

दोस्तों कहते हैं कुछ पहाड़ धरती पर होते हैं और कुछ पहाड़ हमारे अंदर। माउंट एवरेस्ट धरती पर था, लेकिन अरुणिमा सिन्हा का सबसे बड़ा एवरेस्ट शायद उनके अंदर था। वो डर जो हादसे के बाद आया, वो दर्द जो हर दिन महसूस हुआ, वो सवाल जो लोगों ने उनसे पूछा, और वो आवाज़ जो शायद कई बार उन्हें खुद के अंदर से सुनाई देती होगी, क्या मैं सच में कर पाऊंगी। लेकिन उन्होंने उस सवाल का जवाब शब्दों से नहीं दिया, उन्होंने अपने कदमों से दिया, एक कदम फिर दूसरा कदम और फिर एवरेस्ट की चोटी तक। दोस्तों हमारी ज़िंदगी में भी एवरेस्ट होते हैं। किसी के लिए एग्ज़ाम, किसी के लिए जॉब, किसी के लिए अपना बिजनेस शुरू करना, किसी के लिए अपने परिवार को संभालना और किसी के लिए सिर्फ खुद पर विश्वास करना। हर किसी का एवरेस्ट अलग है, लेकिन एक चीज़ कॉमन है, चढ़ाई करनी पड़ती है और कोई आपको आपकी चोटी तक लेकर नहीं जाएगा। आपको पहला कदम खुद उठाना पड़ेगा। दोस्तों अगर कभी आपको लगे कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो गया है जिसके बाद अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तो अरुणिमा सिन्हा की कहानी याद कीजिए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी ने हमें बताया हादसा आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, लेकिन आपकी हिम्मत आपकी दिशा बदल सकती है। आप गिर सकते हैं, आप थक सकते हैं, आप डर सकते हैं, आप रो भी सकते हैं, लेकिन रुकना ज़रूरी नहीं है। और शायद ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि जब तक हम कोशिश कर रहे हैं तब तक कहानी ख़त्म नहीं हुई है। इसी खूबसूरत सोच के साथ आज के गेम चेंजर से मैं आपका होस्ट एंड दोस्त गगन श्रीवास्तव आपसे इजाज़त चाहूँगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए प्रेरणा स्रोत के साथ और एक नए गेम चेंजर के साथ। तब तक अपने सपनों को छोटा मत होने दीजिए, क्योंकि कभी कभी जिस सपने को दुनिया नामुमकिन कहती है वही सपना आपकी पहचान बन सकता है। रास्ते मुश्किल थे मगर कदम रुकने वाले नहीं थे। लोग कहते रहे ये मुमकिन नहीं, मगर सपने झुकने वाले नहीं थे। जिस दर्द को अपनी ताकत बना लिया, जिसने हार को अपनी आदत नहीं बनने दिया, वही तो असली गेम चेंजर कहलाया। नमस्कार दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, अपने सपनों का ख्याल रखिए और अपनी ज़िंदगी आपको रोकने की कोशिश करे तो एक कदम और आगे बढ़ाइए। मैं हूँ गगन श्रीवास्तव और आप सुन रहे थे गेम चेंजर। हेलो जयपुर।

0: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाएं समाधान।
3: हेलो

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111
2: नमस्कार पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं धर्मेंद्र मणि राजेश आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों जैसा कि हम जानते हैं कि ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम का फॉलो अप प्रोग्राम है और उनके द्वारा लिए गए विषयों का विस्तार है। इस बार मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने भारतीय खेलों के बारे में बहुत सी बात की थी। पहले सुनते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने क्या कुछ कहा था।
3: मेरे प्यारे देशवासियों हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की है। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच था। 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है। साथियों कुछ छोटे प्रयास ऐसे भी होते हैं जो बहुत मायने रखते हैं। मुझे केरलम में एर्नाकुलम के साउथ चित्तूर में स्पोर्ट्स के ऐसे ही एक प्रयास के बारे में पता चला है। वहां के एक स्कूल में संस्कृत क्लब है। यहाँ के टीचर अभिलाष जी बड़े अनूठे तरीके से संस्कृत को लोकप्रिय बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को अक्षर कंदुक नाम दिया गया है। इसमें संस्कृत के अक्षरों को फुटबॉल में इस्तेमाल होने वाले शब्दों से जोड़कर आसान तरीके से समझाया जाता है। इसे सीखने में आनंद मिलता है, साथ ही खेलों से लोगों का जुड़ाव भी बढ़ता है।
2: तो श्रोताओं अभी आपने सुना

0: प्रधानमंत्री जी के मन की बात का वो अंश जिसमें उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने हाल ही में संपन्न राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय टीम को देशवासियों की तरफ से शुभकामनाएं भी दी थीं। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और आशीर्वचनों के बाद तो ग्लासगो में कमाल ही हो गया। हमारे खिलाड़ियों ने न सिर्फ शामिल किए गए खेलों में पिछली बार से ज्यादा पदक जीते बल्कि मैदान से पोडियम तक की इस यात्रा में कई इतिहास भी रच दिए। इस दौरान खेल के मैदान पर भारत की बेटियों की ताकत को भी पूरी दुनिया ने देखा। तो इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विषय विशेषज्ञ भारतीय खेल प्राधिकरण साई के उपमहानिदेशक और आईपीएस मयंक श्रीवास्तव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: हमारे साथ हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन, आपका भी बहुत स्वागत।
2: धन्यवाद।
0: तो अब मैं अपने मन में उठ रही जिज्ञासा और सवालों के साथ साथ आप श्रोताओं के प्रश्नों को लेकर भी तैयार हूं अपने स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से उसका जवाब जानने के लिए। सवालों की शुरुआत करते हैं मयंक श्रीवास्तव जी के साथ। मयंक जी, प्रधानमंत्री जी ने अपने साथ साथ देशवासियों की तरफ से ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक के लिए मैदान पर पसीना झोंक रहे खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी और पदक जीतने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री जी के मन की बात के इन शब्दों ने जैसे जादू की झप्पी का काम किया और उनके शब्दों के बाद ऐसा असर हुआ कि पदकों की झड़ी सी लग गई और हमारे खिलाड़ियों ने कमाल ही कर दिया। पिछली बार के पदकों का आंकड़ा पीछे छूट गया, क्या आपको लगता है कि कमाल प्रधानमंत्री जी के ऊर्जावान शब्दों का असर था?
1: निश्चित रूप से, हम लोग जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी खेलों के सबसे बड़े लवर हैं और वो बहुत चाहते हैं कि भारत के खेलों की उन्नति हो और उसका जीता जागता उदाहरण है जिस प्रकार की स्कीम भारत सरकार ने उनके मार्गदर्शन में लेके आए हैं जो कि नया खेलो इंडिया है और जो टॉप स्कीम है। आप अगर देखेंगे इन खिलाड़ियों का जो भी इनका रिकॉर्ड है और जहां से भी इनको सहायता मिली है, यदि आप उनका अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि खेलो इंडिया और टॉप स्कीम का बहुत बड़ा योगदान था। तो न सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों की प्रेरणा इन खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी पूंजी थी बल्कि वो जो योजनाएं लेके आए हैं खेल के क्षेत्र में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है इस अभूतपूर्व प्रदर्शन के लिए।
0: और राजा रमन जी, अब तो ये जाहिर सी बात है कि जब खुद प्रधानमंत्री जी खेल में इतनी रुचि लेते हो तो खिलाड़ियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित होना तो स्वाभाविक सी बात है। तो आप मानते हैं कि जब प्रधानमंत्री जी खुद इतना इंटरेस्ट लेंगे तो उसका परिणाम भी अच्छा तो आएगा ही आएगा?
2: 2014 से ये देखने को मिला है कि प्रधानमंत्री जी हमेशा ही खिलाड़ियों से गेम्स के पहले मिलते हैं, गेम्स के बाद मिलते हैं। खिलाड़ी को पता है कि देश के सबसे बड़ी व्यक्ति का प्यार उनको मिला है। उनके मार्गदर्शन में अच्छे नतीजे आए हैं, चाहे वो टोक्यो ओलंपिक गेम्स की बात क्यों ना हो, पेरिस की बात क्यों ना हो, पिछले बार एशियाई खेलों की बात क्यों ना हो या कोई भी राष्ट्रमंडल खेल की बात क्यों ना कर ले। खिलाड़ियों के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है कि हमारा देश हमारे साथ है। जब भारत सरकार का इतना सपोर्ट मिलता है, एक टाइम था जब आपको 3-3 महीने वेट करना पड़ता था, आप अपना प्रपोजल दे रहे और प्रपोजल के 3 महीने बाद आपको पता चला कि क्लियरेंस आधा हुआ है या नहीं हुआ है। आज की तारीख में क्लियरेंस 3 या 4 दिन में मिल जाता है। खिलाड़ी जब मांगता है तो सारे दरवाजे खुल जाते हैं और जो सॉफ्ट पावर है खेल, इसको प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे तरीके से समझे हैं, उसका पूरा फायदा भारत देश को मिल रहा है। आप देखेंगे पिछले सालों में भारत का जो स्तर है वो उठता जा रहा है और इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है।
0: और मैम जी, हमने अन्य क्षेत्रों की तरह नए भारत में खेल के क्षेत्र में भी बदलाव को देखा है और महसूस किया है। प्रधानमंत्री जी के मैदान से पोडियम तक की सोच और खेलों को भी अन्य क्षेत्रों की तरह महत्व देने की रणनीति का भारत के खेलों पर कितना सकारात्मक असर हुआ है?
1: निश्चित रूप से, पहले भी बात कर चुका हूँ उनके विजन की, उनकी दूरदृष्टि की और किस प्रकार से भारत सरकार ने नई योजनाएं ले आई हैं। खेलो इंडिया और टॉप्स, ये दोनों स्कीम इसी मोटो को चरितार्थ करती हैं जिसको आपने भी कहा, मैदान से पोडियम तक को। क्योंकि खेलो इंडिया आपको ग्रास रूट क्षेत्र में सपोर्ट प्रारंभ करती है और ये पहले जो खेलो इंडिया का स्वरूप था मैं उसको 360 डिग्री सपोर्ट बोलता था। एक खिलाड़ी को, इकोसिस्टम को वो 360 डिग्री सपोर्ट करती थी। अभी जो नई खेलो इंडिया कैबिनेट ने माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश और उनके मार्गदर्शन में पास की है वो 720 डिग्री सपोर्ट है और टॉप्स को तो मैं तथास्तु स्कीम बोलता हूँ। शायद ही ऐसी योजना कभी भी आई हो कि जिसमें खिलाड़ी जो कि टॉप्स एथलीट है, एलीट एथलीट है, टॉप्स का कोर एथलीट है, वो कुछ भी मांगता है जनरली उसको दिया जाता है। ये इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम इन दोनों योजनाओं ने खड़ा किया है कि आज खिलाड़ियों के लिए किसी भी जगह पे, किसी भी स्थान पे और किसी भी करियर के उनके किसी भी पड़ाव पे जो समस्याएं हैं उसका कोई असर नहीं होता है
0: जी। और राजा, एक कहावत बड़ी मशहूर हुआ करती थी या है भी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे

0: होंगे खराब। क्या आज भी ये कहावत सच दिखती है? अगर नहीं तो आम लोगों के बीच खेलों को लेकर सोच में कितना और कैसा परिवर्तन आपने महसूस किया है?
1: रविंद्र, पूर्ण रूप से बदल चुका है। आज की तारीख में आप खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब वाली बात है। ये मेरी बात नहीं, प्रधानमंत्री जी की बात है। और ये सच है कि खिलाड़ी को आज पता है, खिलाड़ी के घर वालों को पता है कि आप खेल के माध्यम से अपना पूरा जीवन संभाल सकते हैं। आपको पढ़ाई की जितनी जरूरत थी वही जरूरत आज खेल की महसूस हो रही है लोगों को। अगर आप एक्सेलेंस की ओर बढ़े जा रहे हो तो आप पढ़ाई शायद कम कर लें, लेकिन आप खेल के माध्यम से पूरे देश और दुनिया के दिल को जीत सकते हैं, राज कर सकते हैं। ये कई खिलाड़ियों को समझ आ गया है। और अगर हम खेलो इंडिया मिशन, जो नई मिशन पिछले दिनों लॉन्च हुई है, उसकी अगर बात करें तो पिछले खेलो इंडिया स्कीम से अगर कंपेयर करते हैं तो 8 गुना पैसा बढ़ा है 5 सालों में। करीब 36,000 करोड़ की बात हो रही है। ये कम पैसे नहीं होते धर्मेंद्र। एक देश की सरकार अगर जुड़ जाता है खेलों के साथ इस तरीके से, जाहिर सी बात है कि आगे ही बढ़ेगा देश। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे एथलीट का डेवलपमेंट हो, चाहे कोचेस का डेवलपमेंट हो, चाहे सपोर्ट स्टाफ का या स्पोर्ट्स साइंस की बात करें, हर तरीके से आगे बढ़ने की बात हो रही है। अगर हम सही तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं और पूरा फायदा उठाते हैं इस स्कीम का, तो भारत 2036 के जो ओलंपिक गेम होपफुली भारत में ही आयोजन होंगे, वहां पे अच्छा प्रदर्शन, अच्छे नतीजे, 20 मेडल उनके आसपास या टॉप 5 वाली पोजीशन का पूरा उम्मीद लेके बैठ सकते हैं।
0: जी तो मयंक जी, पहले हमारे खिलाड़ी मैदान तक तो पहुंचते थे लेकिन पोडियम तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता था। इसकी वजह खेल संसाधनों की कमी थी, मैदान की कमी थी, और साथ ही साथ खेलों के जरिए नौकरी न मिल पाने की एक जो सोच थी वो बड़ी समस्या थी। बहुत से बच्चे इन दुश्वारियों के चलते चाहकर भी खेलों की तरफ नहीं जा पाते थे, करियर नहीं बना पाते थे। अब नए भारत में इन बुनियादी मुद्दों पर कितना काम हुआ है?
2: मैं तो ये बोलूंगा कि आपने जो पहली लाइन बोली कि खिलाड़ी मैदान तक तो पहुंच जाते थे, वहां से ही शुरू करता हूँ। एक्चुअली मैदान तक भी नहीं पहुंच पाते थे। वजह ये थी कि अगर आप एनालाइज करें, विश्लेषण करें, तो आप ये पाएंगे कि भारत के संपूर्ण क्षेत्र में, हमारे करीब 750 से थोड़े से ऊपर डिस्ट्रिक्ट है, सभी जगह खेलों का एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम नहीं था। खेलो इंडिया जो माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन से उद्भूत ये योजना है, इसमें सबसे पहले ये कमी महसूस की गई कि सारे जगहों पे, सारे स्थानों पे कोई इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं है। तो यह तय किया गया कि हर जिले में हम कम से कम एक खेलो इंडिया सेंटर खोलेंगे। खेलो इंडिया सेंटर वो एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट होगा, वो जगह होगी जहां पे खिलाड़ी आएगा और खेलेगा। कम से कम 25 खिलाड़ी वहां पे खेलेंगे एक पर्टिकुलर खेल का, हर जगह पे एक एक खेल का हम सहायता देंगे। तब ये दूसरा भी प्रश्न आया कि भाई इतने कोच है, कोच ही नहीं थे। तो जो पुराने खिलाड़ी हैं उनको पास्ट चैंपियन एथलीट बना करके उनको एम्प्लॉय किया गया, उनको बतौर कोच इन खेलो इंडिया सेंटर्स में रखा गया, तो पुराने खिलाड़ियों को भी रोजगार मिला। तो एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम खड़ा हुआ हर जगह पे, ग्रास रूट पे। दूसरी बात यह है कि सिर्फ ग्रास रूट पे करने से तो काम चलेगा नहीं, थोड़ा एलीट लेवल पे भी होना चाहिए। तो खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हर राज्य की राजधानी, हर यूटी की राजधानी में ये खड़ा किया गया। भारत सरकार ने इसका पैसा दिया और इसमें स्पोर्ट्स साइंस, जो अब तक भारत के खेलों में सम्मिलित नहीं होता था, उसमें बहुत बड़ा एक निवेश था। इसमें स्पोर्ट्स साइंस के जो जितने पद होते थे, भारत सरकार सभी का पे देगी और इत्यादि इत्यादि मशीनें देगी, उसका सामान देगी। तो एक एलीट सिस्टम भी खड़ा हो गया। भारत सरकार को यह भी गुमान था कि सारा कुछ वही नहीं कर पाएगी, तो कुछ लोग प्राइवेट लोग भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उनको खेलो इंडिया अक्रेडिटेड एकेडमी बनाया गया। तो इस प्रकार से एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम खड़ा हुआ। अब ये खिलाड़ी खेलेंगे तो इनको खेलने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक अनुभव वाला एक हमें खेल का प्रतियोगिता देनी चाहिए। तो खेलो इंडिया गेम्स का एक सिस्टम शुरू हुआ, यूथ गेम, यूनिवर्सिटी गेम, विंटर गेम, पैरा गेम, विंटर गेम। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से पहले, जब से ये शुरू हुआ है खेलो इंडिया में, भारत में कोई जानता नहीं था विंटर गेम। नेशनल गेम्स तो होते हैं, ओलंपिक और एशियन गेम्स के साथ पैरा गेम्स भी होते हैं, परंतु ये प्रथा नहीं थी। और ये पैरा गेम्स शुरू हुआ खेलो इंडिया में, वो भारत में एक तरह से नेशनल गेम है पैरा स्पोर्ट्स में। तो अब यहाँ से खिलाड़ी जो खेले, जिनको हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव दिया, अपनी कम्पिटेटिव स्किल को निखार सके, उनको एक टैलेंट आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट कमेटी, खेलो इंडिया टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में एंड डेवलपमेंट वाले वर्टिकल में से उन्होंने उसमें से प्रतिभाशाली खिलाड़ी चुने, उन खिलाड़ियों को खेलो इंडिया एथलीट बनाया, जिनको 10,000 रुपए आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस और जहां पे ट्रेनिंग करते हैं उनको वित्तीय सहायता करीब 6 लाख की, वो भारत सरकार ने दिया। 360 डिग्री सपोर्ट था, ये वो सिस्टम है। अब इसी में से जो खिलाड़ी उन्नति किया वो टॉप्स जैसे सुपर एलीट लेवल पे आ गया। टॉप्स में एलीट खिलाड़ी जो मांगता है जनरली वो मिलता है। अब नए वाले सिस्टम में क्या है, 720 डिग्री सपोर्ट कैसा है, पहले जिन चीजों की चिंता की थी उससे आगे बढ़ गए। हमने देखा कि आईटी सपोर्ट नहीं है, नेशनल स्पोर्ट्स

0: फेडरेशन को नहीं है, साई को नहीं है, तो इसमें नए वाले खेलो इंडिया में आईटी सपोर्ट का एक वर्टिकल खड़ा हुआ। सबसे बड़ी समस्या इस देश में है कोच की, कोच कहाँ है और स्तरीय कोच कहाँ है। तो कोच का विकास के लिए एक कोच डेवलपमेंट एंड सपोर्ट स्टाफ डेवलपमेंट का वर्टिकल खड़ा हुआ। तो सिर्फ कोच की बात नहीं है, स्पोर्ट्स साइंस जिसकी मैंने अभी बात की उसका पूरा एक सिस्टम खड़ा होगा, इको सिस्टम खड़ा होगा। उसमें लोग खड़े होंगे, वैज्ञानिक खड़े होंगे, बायो मैकेनिक्स खड़ी होगी, मैसर खड़ा होगा, न्यूट्रिशनिस्ट खड़ा होगा। अब ये पूरा एक सिस्टम जो है बन के आ रहा है। और ऑन टॉप ऑफ दैट खेलो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर ने, जो एक वर्टिकल है खेलो इंडिया का, उसने पूरे देश में जो अधोसंरचना है उसकी एक समझ लीजिए उसमें क्रांति ला दी है। पूर्व में 300 से भी अधिक अधोसंरचनाएं खड़ी हुई थी, नए वाला जो खेलो इंडिया है इसमें और ज्यादा इसमें सपोर्ट है और त्रिस्तरीय सपोर्ट है। हर डिस्ट्रिक्ट में, हमने पहले खेलो इंडिया सेंटर की ही बात की जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की बात की, अब नए वाले में स्कूलों में भी खेलो इंडिया सेंटर होंगे। स्कूल में न बच्चे सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि खेलेंगे भी, और भारत सरकार उसको फंड करेगी ऐसे खिलाड़ियों को। साथ ही साथ और बहुत से कॉलेजेस उनको भी खेलो इंडिया सेंटर या सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बना पाएंगे हम लोग। तो ये बहुत बड़ा एक सिस्टम खड़ा हो रहा है। पहले तो मैदान तक नहीं पहुंच पा रहे थे, अब न सिर्फ वो मैदान पे पहुंचेंगे बल्कि अपनी खेल प्रतिभाओं को कंपटीशन और लीग से निखारेंगे, उनकी प्रतिभाओं का सम्मान होगा, टैलेंट स्काउट होंगे, कम्युनिटी कोच होंगे जो उनकी प्रतिभाएं देखेंगे, ग्राम स्तर पे भी देख पाएंगे क्योंकि कम्युनिटी कोच और जो टैलेंट स्काउट है वो ग्राम ग्राम स्तर तक जा सकेंगे। जोनल टैलेंट सर्च कमेटी बनेगी और टैलेंट आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट कमेटी तो पहले से थी। तो इस प्रकार से ये पूरा एक इकोसिस्टम खड़ा हो गया है जिसने भारत के खेल जगत को एक क्रांति उसने कर दी है।
1: बिल्कुल क्रांति आई है। और जो खिलाड़ियों के ऊपर मानसिक दबाव हुआ करता था कि खेल के मैदान नहीं है, सुविधाएं नहीं है, वो सारे दबाव उनके मन से हटे हैं। और हमने बहुत सारी गंभीर बातें कर ली हैं और इन गंभीर बातों के बीच अब थोड़ा सा मूड को हल्का किया जाए और हम जानना चाहेंगे कि आपको वो कौन सा गीत सबसे ज्यादा पसंद है जिसे आप बार बार सुनना चाहते हैं, और अगर अभी हम आपको सुनाना चाहें तो वो कौन सा गीत होगा?
0: एक्चुअली मैं बचपन से बहुत सारे गाने सुनता हूँ, अगर आप उनमें से एक सुनने को बोलते हैं तो वो मुझे जो समझ में आ रहा है, मुझे बहुत पुराना गाना याद आ रहा है, किसी की मुस्कुराहटों पे वो निसार। मैं तो कुंदन लाल सहगल इरा से अभी अरिजीत सिंह के इरा तक के गाने सुनता हूँ, तो वही मुझे पहले दिमाग में स्ट्राइक किया।
1: तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: और इस सुमधुर गीत के बाद फिर लौटते हैं प्रधानमंत्री जी के मन की बात और अपने विषय मैदान से पोडियम तक की तरफ। और राजा, प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में पीवी सिंधु की जापान की सफलता का जिक्र किया और वो जीत सचमुच अविस्मरणीय रही, क्योंकि किसी भारतीय खिलाड़ी ने पहली बार जापान ओपन बैडमिंटन में ट्रॉफी जीती है। सिंधु की ये जो जीत रही, इसने ट्रॉफी का जो एक लंबे समय का उनका सूखा था, न सिर्फ उसको खत्म किया बल्कि एक उम्मीद भी जगाई है। उनकी इस सफलता से आप कितने प्रभावित हुए हैं?
1: कोई भी खिलाड़ी जब ऐसा प्रदर्शन करता है या करती है, जाहिर सी बात है देश का हर वो व्यक्ति खुश हो जाता है। खास करके पीवी सिंधु जैसे खिलाड़ी की बात करें, क्योंकि आप देखिए उनके पास 5 विश्व चैंपियनशिप के मेडल्स हैं, वो चैंपियन भी रही है, उसके अलावा उनके पास 2 ओलंपिक पदक भी है और बेहतरीन खिलाड़ी रही है, कई सालों से भारत का रिप्रेजेंटेशन करते आई है और 2 साल से उनके पास कुछ था नहीं दिखाने के लिए। सेमीफाइनल में, क्वार्टर फाइनल में, फर्स्ट राउंड में जब हार एक खिलाड़ी के पीछे लगातार पड़ जाती है तो उस खिलाड़ी के अंदर शंका पैदा हो जाती है कि एम आई गुड इनफ, क्या मैं अभी भी अच्छा खिलाड़ी हूँ, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ। वो शंका को दूर करने वाली बात हो गई टोक्यो में, और जापान में जीतना बहुत बड़ी उपलब्धि रही है सिंधु के लिए। शादी के बाद एक महिला खेल सकती है, उन्होंने दिखाया है, टोटल फोकस के साथ दिखाया। हम सबके लिए एक सबक है कि किसी को राइट ऑफ ना करें। शायद उनमें से मैं भी था कि सिंधु पे डाउट होने लग गया कि सिंधु अभी आगे करेगी क्या, सिंधु के बाद कौन होगा, ये सारे सवाल आ गए थे। लेकिन सिंधु ने एक बार फिर अपने और ध्यान को आकर्षित किया है, टेरिफिक परफॉर्मेंस, और जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, सिंधु एक प्रेरणा है और हमेशा रहेगी
0: जी। और मैंग जी, इसी सवाल को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि सिंधु से हम लगातार सफलता की उम्मीद करते हैं, एक आदत सी हो गई उनकी सफलता की, उनकी ट्रॉफियों की। पिछले कुछ वर्षों में अगर हम खासतौर पर पिछले 2 साल की बात करें तो वो पीक पर अपने नजर नहीं आ रही थी, तो ऐसे में जापान ओपन की ये जो कामयाबी है उनकी वापसी की तरफ इशारा करती है, या फिर हमें ये मान लेना चाहिए कि देश के लिए वो अपना सर्वश्रेष्ठ दे चुके?
2: नहीं, बिल्कुल मैं राजा राम जी की बात से सहमत हूँ, इसको वापसी ही मानेंगे हम लोग तो बिल्कुल मानते हैं। और मैं आपको कुछ अंदरूनी जैसी बातें बता सकूं तो सिंधु बहुत फोकस्ड प्लेयर है और सिंधु की जो शारीरिक क्षमताएं हैं वो तो वो लाजवाब है। मानसिक क्षमताओं में भी उसके अंदर बहुत ही अच्छा सुधार हुआ है, उसका फोकस बहुत बड़ा है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो हमारा बेंगलुरु केंद्र है, रीजनल सेंटर, वहां के जो स्पोर्ट्स साइंस सेटअप है, मैंने एक बार वहां पे देखा था, सिंधु आई थी, उनका फोकस एकदम क्लियर है कि ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो रही है बॉडी में, इसका क्या है। उन्होंने बकायदा चेकअप कराया, उसका एक सोल्यूशन निकलवाया और उस चीज पे वर्क किया। तो अगर ये खिलाड़ी इतने अनुभवी होने के बाद ये इस स्तर पे स्पोर्ट्स साइंस के लेवल पे चीजें सोच रहे हैं तो ये उनका फोकस, उनका एक ये दिखाता है कि वो उसमें पूरी तरह से रमे हुए हैं। मुझे लगता है कि सिंधु में भी मतलब एलिट 28 तक मुझे वो काफी सक्रिय और काफी सक्सेसफुल दिखाई देती है
0: जी। और राजा रमन जी, साल 2028 ओलंपिक ईयर है, ऐसे में 31 साल की 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट सिंधु के लिए टूर्नामेंट को चूज करना और अगले 2 सालों तक फिटनेस को बनाए रखना कितना जरूरी है?
1: बहुत जरूरी है धर्मेंद्र, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि प्लेयर के सामने चुनौती

0: लगातार टूर्नामेंट्स खेलने पड़ते हैं रैंकिंग पॉइंट्स जमाने के लिए और रैंकिंग बना के रखने के लिए, क्योंकि सबको पता है कि ओलंपिक गेम्स में क्वालिफिकेशन रैंकिंग के बदौलत होती है। अगर आप टॉप 16 में है तो आपका गारंटीड स्पॉट बन जाता है, उसके बाहर होते हैं तो मुश्किल होता है आपका क्वालिफिकेशन, क्योंकि कम खिलाड़ियों को बुलाते हैं, कुछ कोटा देना पड़ता है, या तो फिर आप एशियन गेम्स जीत के दिखा दें या फिर कॉन्टिनेंटल चैंपियन बने या फिर टॉप रैंकिंग में बने रहे। तो सिंधु के सामने एक चुनौती रहेगी कि अपना रैंकिंग बना के रखना होगा और इसके लिए लगातार खेलता रहना पड़ेगा उन्हें। और दिस इज अ चैलेंज, क्योंकि एक तो उम्र उनका बढ़ता जा रहा है, लेकिन उनके अंदर जो ऊर्जा है उसको सही दिशा में चैनलाइज करके सिंधु इज फेसिंग द चैलेंजेस। और मुझे पूरा विश्वास है कि लॉस एंजलिस 2028 तक वो रैंकिंग भी बना के रखेगी और फिर वहां पे बहुत बेहतरीन प्रदर्शन भी करेगी।
1: बैडमिंटन से जुड़ा एक और सवाल है कि भारत में जो है बैडमिंटन की बेहद मजबूत परंपरा रही है, उस परंपरा को खासकर महिला बैडमिंटन के जरिए साइना नेहवाल और पीवी सिंधु ने एक बड़ा ऊंचा मकाम दिया है, उस स्तर को बनाए रखने के लिए बैडमिंटन की नई पौध मयंक जी कितनी दमदार दिखाई देती है?
2: बैडमिंटन में बहुत ही अच्छी संभावनाएं हैं। आपने तो केवल महिला खिलाड़ियों की बात की, पर मुझे लगता है कि पुरुष खिलाड़ी भी इसमें कम नहीं है। बहुत सारे अभी खिलाड़ी अंडर 18, हालिया एक टूर्नामेंट हुआ है, उस टूर्नामेंट में उस अंडर 18 प्लेयर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। बॉडीली भी वो बहुत अच्छा एडवांटेजियस पोजिशन में है। इसके अलावा जो आपने बात की कि महिला खिलाड़ी विशेष रूप से ज्यादा उनके अंदर संभावना है, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। मैंने जितना इन लोगों का प्रदर्शन देखा है, न सिर्फ प्रदर्शन की बात है, जिस प्रकार से अपने खेल को ये अप्रोच करती हैं, जिस प्रकार से अपने खेल को सीरियसली लेती हैं और जिस प्रकार से इनका फोकस है, ये सभी खिलाड़ी, मेरा काडर छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के ऐसे खिलाड़ियों को देख करके, अभी गुवाहाटी कुछ दिन पहले मैं गया था जहां पे एक बहुत अच्छी एकेडमी है और कोरियन रशियन और मलेशियन कोच वहां पे हैं, जिनके भाई जो है BAI बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वो वहां पे ट्रेनिंग कराती है अपने प्लेयर्स को। तो यू नो, इनका फोकस देखकर, उनका प्रोफेशनलिज्म देख करके और उनका एंबिशन देख करके मुझे बिल्कुल लग रहा है कि आगे आने वाले समय में मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि एशियन गेम्स में कुछ सरप्राइज भी हो जाए, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाला जो ओलंपिक है उसमें भी कुछ सरप्राइज हो जाए।
0: मैं आपको बता दूं
1: जी,
0: उन्नति हुडा जैसे प्लेयर उभर कर आई है, अस्मिता चलिहा जैसे प्लेयर उभर कर आई है, और न सिर्फ सिंधु और साइना नेहवाल की बात कर सकते हैं, हम ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोन्नप्पा की भी बात कर सकते हैं, और गायत्री गोपीचंद और ट्रीसा जॉली, ये भी दुनिया में अच्छा प्रदर्शन देते आए हैं। खिलाड़ी को चोट लगता है, कुछ खिलाड़ी बाहर हो जाते हैं, लेकिन भारत का बैडमिंटन बहुत अच्छे हेल्थ में है। मेरा ये मानना है कि हमें हमेशा डाउट होता है कि सिंधु के बाद कौन, लेकिन ये युवा खिलाड़ी आई है, ये जवाब दे रही है हम सबको।
2: मैं इसमें चिराग और उसको भी हम लोग राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं, सात्विक और चिराग को आप बिल्कुल राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं।
0: लक्ष्य सेन खेल ही रहा है,
2: लक्ष्य सेन भी अच्छा खेल रहा है, और अभी भले उसकी कोई ऐसी न्यूज नहीं है कि उसने, लेकिन स्टिल इन द फ्रे एंड चिराग और ये लोग तो बहुत अच्छे उसमें हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। एशियन गेम्स में ज्यादा टाइम नहीं बचा है, हम लोग बिल्कुल इसका एक मुजाहिरा जरूर देखेंगे वहाँ।
1: बिल्कुल, अब आगे बढ़ने से पहले एक गीत सुनते हैं। राजा, अब आप बताइए कि आपकी पसंद का वो कौन सा गीत सुना जाए।
0: मयंक जी ने मुकेश जी का गाना चुना था, मैं भी मुकेश जी का ही गाना चुनूंगा। मेरे से भी पहले एक गाना था जो आज भी मेरे ख्याल से हम सबके लिए रेलेवेंट है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती।
1: वाह क्या बात है।

0: रहती है।
1: दोस्तों, इस गीत के बाद कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आपका फिर स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी के मन की बात में खेलों के बारे में की गई चर्चा की। हमारे आज के दो मेहमान हैं भारतीय खेल प्राधिकरण के उप महानिदेशक और IPS मयंक श्रीवास्तव जी और वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन। राजा, प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में लॉर्ड्स मैदान में खेले गए पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारतीय टीम की शानदार सफलता का जिक्र किया था। इसे उन्होंने भारतीय पुरुष टीम की 1983 की विश्व कप की विजय से जोड़ा। ये जुड़ाव स्वाभाविक भी है क्योंकि उस कामयाबी के बाद हमने दुनिया को अपनी क्रिकेट महाशक्ति होने का एहसास कराया था। महिला टीम की टेस्ट क्रिकेट में ये जीत उसे इस लॉन्ग फॉर्मेट का सुपर बनाने की दिशा में कितना मदद करेगी?
2: बहुत ज्यादा। मुझे ये लगता है कि भारत कई सालों से महिला क्रिकेट की अगर बात करें तो टेस्ट मैचेस की ओर ध्यान नहीं दिया था और लॉर्ड्स में जाकर टेस्ट मैच खेलना और पहले ही मैच में मेजबान इंग्लैंड को पराजित करना, ये बहुत बड़ी बात है और दिखाता है कि हमारी महिला टीम के अंदर जो जोश है, जो ऊर्जा है, जो बिलीफ है, जो एक स्वाभिमान वाली बात है, ये बहुत अच्छी बात है तो देखने को मिला है। वहां पे शतक भी जड़े हैं हमारे खिलाड़ी, 5 विकेट्स इन एन इनिंग्स वाली भी बात हुई है। अच्छा प्रदर्शन करते हुए पहला ही मैच जीतना, हालांकि कंपैरिजन गलत होगा, लेकिन पुरुष टीम की अगर बात करें कई साल लग गए भारतीय पुरुष टीम को टेस्ट मैच जीतने में लॉर्ड्स में, और महिलाओं ने वो कर दिखाया कि हम इंग्लैंड जाएंगे और इंग्लैंड को हराएंगे।
1: राजा, वनडे विश्व कप जीतने और लॉर्ड्स में ऐतिहासिक टेस्ट जीत के बाद महिला टीम की सोच और अप्रोच में कितना बदलाव आया है और कितना बदलाव आना चाहिए?
2: मुझे लगता है कि भारतीय महिला टीम में सोच और अप्रोच दोनों सही थे, लेकिन अब विश्वास बढ़ जाएगा कि हम दूसरे देश के मैदान में, वो भी सर्वश्रेष्ठ मैदानों में से माना जाता है, इट इज नोन एज द होलीएस्ट ऑफ क्रिकेट ग्राउंड, वहां पे जाके जीतना पहले ही मैच में, टीम का हौसला बुलंद हो जाता है, पहले से बुलंद है, विश्व चैंपियन रही भारतीय टीम, लेकिन इंग्लैंड में जाकर जीतना हम सबके लिए कहीं ना कहीं एक स्पेशल मीनिंग आ जाता है कि ब्रिटेन में जाके इंग्लैंड को हराना, देयर इज अ स्पेशलिटी टू इट। और मुझे लगता है कि महिला टीम ये कर दिखाई है और फिर उनके अंदर जो हौसला अफजाई चाहिए था उन्हें खुद उन्होंने ढूंढ के निकाला है और फिर सबको दे भी दिया है।
1: और मयंक जी, प्रधानमंत्री जी ने खेल के मैदान पर नारी शक्ति का भी अपनी बातों में जिक्र किया, ये स्वाभाविक भी है क्योंकि नारी शक्ति की वजह से ही हम ग्लासगो में 13 गोल्ड मेडल जीत कर मेडल टैली में चौथे स्थान पर पहुंच सके और उसमें 8 गोल्ड मेडल महिलाओं के थे। यानी हम कह सकते हैं कि हम खेल महाशक्ति बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इसमें हमारी नारी शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है।
3: ये बात न सिर्फ मौजूद है, रेलेवेंट है, बल्कि ये बात बहुत एक तरह से कह लें कि ये टैक्ट फुलनेस की भी बात है, ये एक रणनीति की भी बात है। मैं ऐसे ही एक बार अध्ययन कर रहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना, जो कि ओलंपिक खेलों में पहले दूसरे उस पे रहते हैं, इनका क्या है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इनके स्वर्ण पदकों का, और मैंने पाया कि इनके अधिकतर जो पदक हैं वो महिला खिलाड़ी जीत रही हैं। और कुछ ऐसा अभी भी पूरे विश्व में जो वातावरण है, खेल परिदृश्य जो है, मैं समझता हूं कि भारतीय महिला खिलाड़ियों का जो अभी पूरी क्षमता का निर्माण नहीं हुआ है, अब ऑब्वियसली उसमें लग गए हैं और इसमें बहुत स्कोप है। हमने यदि महिला खिलाड़ियों को सशक्त कर दिया और उनको अच्छी ट्रेनिंग दे दी तो निश्चित रूप से हमारा वो जो लक्ष्य है कि हम 2036 तक पहले 10 खेल महाशक्ति होंगे, वो बिल्कुल संभव है। और आपने जो उदाहरण दिया, निश्चित रूप से वो एक फैक्ट तो है ही है कि 13 में से 8 मेडल जो है वो महिला खिलाड़ियों ने जीते हैं। आप अगर विश्लेषण कीजिए पिछले कुछ सालों में रेसलिंग में, जो कि हमारी वैसे भी ताकत रही है, और हमारा पहला जो इंडिविजुअल गोल्ड मेडल ओलंपिक में वो भी रेसलिंग में मिला था, पुरुष खिलाड़ी ने दिया था, पर अगर आप अभी आप देखें तो महिला रेसलर्स जो हैं उनके अंदर ज्यादा

0: संभावनाएं दिखती हैं। महिला बॉक्सर्स, उनके अंदर ज्यादा संभावनाएं दिखती हैं। सबसे बड़ा सुखद क्षण मुझे लगा इस कॉमनवेल्थ में वो जूडो में खिलाड़ियों का आगे आना। जूडो एक ऐसा खेल है कि जिसमें हम लोग संभवतः पहली बार ऐसे मेडल जीते हैं और उसमें भी महिला खिलाड़ियों का ही प्रमुखता रही है और ये बहुत ही अच्छा एक सुखद संकेत है आगे आने वाले समय के लिए। तो निश्चित रूप से मैं बिल्कुल सहमत हूँ और ये मेरा मानना है कि महिला खिलाड़ी न सिर्फ अभी योगदान दे रही हैं बल्कि आगे भी हमारे खेल परिदृश्य में बहुत अच्छा योगदान करने वाली हैं।
1: और राजा, खेलों को आम जन से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी छोटी जगहों और छोटी घटनाओं का भी जिक्र करते रहते हैं, जैसा कि उन्होंने केरलम के एर्नाकुलम के स्कूल के संस्कृत शिक्षक की फुटबॉल पहल का जिक्र किया। प्रधानमंत्री जी के ये प्रेरक उदाहरण आम लोगों के मन में खेलों के प्रति सकारात्मक सोच पैदा करने के लिए कितने अहम होते हैं।
2: बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है कि कुछ ऐसे अध्यापक हैं जो खेल की ओर ध्यान देते हैं। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बना है 2020 का और जो अभी स्पोर्ट्स का पॉलिसी बना है, इसमें खेल और पढ़ाई दोनों को मिलाने का, मिश्रण बनाने का एक प्लान है। तब जाके भारत का खेल आगे बढ़ेगा। और उनका ध्यान देखिए एक अध्यापक पे गई है जहाँ पे वो संस्कृत को यूज करते हुए खिलाड़ियों को फुटबॉल खेलने में प्रोत्साहित करती है। हालांकि केरला में फुटबॉल के लिए कमी नहीं होती है, बहुत पॉपुलर स्पोर्ट है। लेकिन एक और महिला है जो साड़ी पहनकर कोचिंग करती है। फुटबॉल की ही बात करें अगर, हालांकि कईयों को पता नहीं है ये, अगर हम विश्व में रैंकिंग की बात करें, हमारे महिला टीम फुटबॉल की टीम की बात कर रहा हूं मैं, उनका बहुत बेहतर रैंकिंग है व्हेन कंपेयर टू मेन। और हम हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं इस बात को, बहुत बेहतरीन प्लेयर्स आए हैं। और जाहिर सी बात है कि एक अध्यापक अगर संस्कृत को लेके खिलाड़ियों को संस्कृत और खेल दोनों को मिला के एक अच्छा मैसेज, और ये बात प्रधानमंत्री जी तक पहुंची है और ही हैज ओनली एलोबरेटेड इट, और ये अच्छी बात है। और भी अध्यापक में एक जोश और ऊर्जा पैदा हो जाएगा कि हम भी कुछ ऐसा करें ताकि उनकी नजर हम पे भी पड़े।
1: जी, सवालों और जवाबों का ये सिलसिला तो जारी रहेगा। फिलहाल बारी है एक और गीत की। मयंक जी, अपनी पसंद का एक और गीत बताइए।
0: इस बार थोड़ा सा नया गीत बताता हूँ। दिल समझ जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू।

0: और इस गीत के बाद एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी की बात पर लौटते हैं, जो देश में खेलों के विकास और भारत को खेल महाशक्ति बनाने के लिए बेहद गंभीर हैं। इसी का नतीजा है कि अहमदाबाद में 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन होने जा रहा है, साथ ही 2036 में हमारी ओलंपिक मेजबानी की भी योजना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के कुल बजट के साथ संशोधित खेलो इंडिया योजना को मंजूरी दी है। मयंक जी, इस संशोधित खेलो इंडिया योजना का प्राइमरी लॉन्ग टर्म गोल क्या है और जो पैसों का आवंटन है वो किस तरह से किया गया है?
1: संभवतः हमारी किसी बात में ये जिक्र आया था कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, जो भारत सरकार का एक लक्ष्य है कि 2036 तक हम खेलों में प्रथम 10 स्थानों पर रहने वाले देश बन सके, 2047 तक हम प्रथम 5 देशों में से एक हों, ऐसा एक बृहद लक्ष्य है। अब उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, जैसा मैंने पहले भी आपको थोड़ा सा खेलो इंडिया जो योजना है उसके बारे में बताया था कि कैसे वो 720 डिग्री सपोर्ट देती है और 360 डिग्री सपोर्ट के आगे वो कोच की भी बात करती है, स्पोर्ट्स साइंस की भी बात करती है, आईटी सपोर्ट की भी बात करती है, हर जिले में और स्कूलों में डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स स्कूल की बात करती है, इसके अलावा जो राज्य के साथ भागीदारी में अधोसंरचना की बात करती है जिसमें केंद्र सरकार 60% योगदान देगी और राज्य सरकारें 40% और नॉर्थ ईस्ट में 90% तक का योगदान भारत सरकार देगी। इसी प्रकार से एक ट्रेनिंग इकोसिस्टम खड़ा किया गया जिसमें साई के जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो अंग है, NCOE नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस, साई ट्रेनिंग सेंटर्स, इन सब का भी एक पूरा एक वो चलेगा, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं पहले बात किया था KISC OKIC वो तो रहेंगी। तो एक पूरा एक अधोसंरचना, पूरा एक सपोर्ट सिस्टम हर क्षेत्र में इसमें आ गया। जहां तक पैसों के आवंटन का प्रश्न आपने किया है, तो पैसों का आवंटन अभी इसको बोल सकते हैं कि अभी फ्लूइड है और आवश्यकता अनुसार इसमें किया जाएगा, जो एक तरह से कह लें कि एलोकेशन इसमें आवश्यकता अनुसार किया जाएगा। निश्चित रूप से जो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हैवी एलिमेंट है उनमें चूंकि उसका संगठन ऐसा होता है कि उसमें पैसा ज्यादा लगता है,

0: तो निश्चित रूप से वहां पे ज्यादा पैसा लगेगा, लेकिन जो लक्ष्य है वो है ट्रेनिंग में खर्चा करने का, एथलीट के ऊपर खर्चा करने का, और अकेडमिक या इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट बनाना है उसमें खर्चा करने का।
1: जी, तो राजा रमन जी, खेलो इंडिया के नए स्वरूप के तहत खिलाड़ियों को मिलने वाले साइंटिफिक ट्रेनिंग में बदलाव की कितनी आवश्यकता है, जैसे की चर्चा कर रहे थे कि ट्रेनिंग भी एक फोकस विषय है इस संशोधित खेलो इंडिया का।
2: धर्मेंद्र, जितना भी मैं खेला हूँ और देखा हूँ, करीब 50 साल तो हो गए होंगे इन सबको, स्पोर्ट्स साइंस का बहुत जरूरी होता है। अभी तक बहुत कम यूज हुआ है स्पोर्ट्स साइंस, हम सिर्फ एलीट लेवल पे यूज करते आए हैं स्पोर्ट्स साइंस को। मयंक जी ने कोचिंग की बात की, कोचेस हमारे पास कम है जो विश्व स्तर का कोचिंग कर सके, जो स्टैंडर्ड कोचिंग करें, ताकि जो खिलाड़ी मैदान में सीखता है, बेसिक्स जहां पे उसके पढ़ते हैं, फंडामेंटल जहां पे आते हैं, अगर वहां से उठना है तो वो फंडामेंटल सही पढ़े। फाउंडेशन अगर सही गिरता है, नींव अगर सही पड़ता है, तो आगे चल के वो स्टार बन सकता है। धर्मेंद्र, आप भी सुन चुके होंगे, मैं भी सुनता हूँ, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय कोचेस आते हैं वो कहते हैं कि आपका टेक्निक ही गलत है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिखाना पड़ता है कि टेक्निक कैसे सुधारा जाए। अगर हम इस पे फोकस करते हैं, और अब फोकस आ रहा है, कोचिंग और स्पोर्ट्स साइंस दोनों में फोकस आ रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि जो खेलो इंडिया के ट्रेनिंग फैसिलिटीज होंगे, हर जिले में होगा, और हर स्कूल में शायद एक अच्छा सा कोच होगा जो स्पोर्ट्स साइंस को समझ सके। जब तक आप इसको जोड़ नहीं लेते हैं, आपके खिलाड़ियों को भी समझ नहीं आता है। कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से झिझकते हैं, कि वो कहते हैं कि साइकोलॉजिस्ट के पास हम क्यों जाएं, हमें कोई मनोवैज्ञानिक बीमारी तो नहीं है। ये सब बदल रहा है, और ये नया देश देखने को मिल रहा है, हमारे खिलाड़ी फियरलेस होते जा रहे हैं, उनके अंदर जो डर था वो दूर हो रहा है, और वो चाहते हैं कि दुनिया को जाके कॉन्कर कर कर आए और फिर अपने घर में राज करें। दे आर सेलिब्रेटेड, और हम क्यों ना पूजे उनको। वो ऐसे इंसान है जो विदेश में भी हमारे झंडा को लहरा के आते हैं। बहुत कम लोग कर सकते हैं ये काम, और खिलाड़ी ही करते हैं, लगातार करते हैं। क्या कहूं, राष्ट्रगान जब बजता है विद द फ्लैग गोइंग अप, चाहे वो ओलंपिक्स हो या एशियन गेम्स हो, रोंगटे खड़े होते हैं, और ये खिलाड़ी ही कर सकता है। अगर 20 मेडल चाहिए, 30 मेडल चाहिए, हमें चाहिए कि ग्रासरूट में स्पोर्ट्स साइंस लाए, और ये खेलो इंडिया मिशन का एक बहुत अच्छा फोकस है कि कोचिंग भी सही हो और फिर स्पोर्ट्स साइंस भी सही हो।
1: मैन जी, इस संशोधित योजना में प्रतिभाशाली एथलीटों को मिलने वाली स्कॉलरशिप और वित्तीय सहायता के लिए क्या कुछ नए नियम बनाए गए?
0: जहां तक नियमों का सवाल है, नियम तो लगभग वही रहेंगे। नियमों से परे जो चीज हुई है, जो क्रांति इसमें हुई है, पहले हम मात्र 3,000 खिलाड़ियों को खेलो इंडिया एथलीट बनाते थे, और उनको आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस, और जहाँ पे वो लोग प्रैक्टिस करते हैं उन संस्थानों को वित्तीय सहायता देते थे। अब ये संख्या बढ़ के 30,000 हो जाएगी। 30,000 लोगों को वित्तीय सहायता मिलेगी, आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस मिलेगा। वो जिन संस्थानों में अभ्यास करते हैं उन संस्थानों को इन खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने में और अनुकूल सहायता देने के लिए वो जो वित्तीय सहायता थी वो मिला करेगी। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। 8 गुना वृद्धि हुई है टोटल फाइनेंशियल एलोकेशन में, और 10 गुना वृद्धि हुई है प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के बकेट में। 10 गुना अधिक खिलाड़ियों को डायरेक्ट सपोर्ट हम बोल सकते हैं कि मिला करेगा।
1: स्पॉन्सरशिप बड़ी समस्या हुआ करती थी, लेकिन जैसा कि मयंक जी ने बताया कि जो स्कॉलरशिप है उसके लिए खिलाड़ियों की संख्या बढ़ा दी गई है, इसका कितना पॉजिटिव असर खेलों पर, खिलाड़ियों पर पड़ेगा?
2: बहुत ज्यादा पड़ेगा, और एक विश्वास बढ़ जाएगा खिलाड़ी के अंदर। और जो हमेशा डाउट रहता है कि अगर मुझे चोट लग गया, मैं बीमार हो गया या खेल से बाहर हो गया तो मेरा क्या होगा, इस सवाल का जवाब अब शायद मिलने लगा है खिलाड़ी को। वो निडर होके खेलने लगे हैं धर्मेंद्र, और मुझे लगता है कि जो खेलो इंडिया का स्कॉलरशिप स्कीम है, अगर 3,000 से बढ़कर 30,000 खिलाड़ी तक जा रहा है
1: जी,
2: तो आपका जो बेस है वो और ब्रॉड होता जा रहा है। मुझे लगता है कि क्रीम और बेहतर होगा आगे चल के। 2036 की ओर ध्यान है, आज शुरू करना चाहिए, और शुरू हो गया है, अच्छे नतीजे आएंगे, वी विल सी वेरी गुड रिजल्ट। और मेरा ये मानना है कि हर वो एंगल कवर्ड है, पॉजिटिविटी भरा हुआ है देश के अंदर और खिलाड़ियों के अंदर और भी ज्यादा हुआ है। मेरा ये मानना है कि अगर उसको सही दिशा दे, सही चैनलाइज करें, तो हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खेल के देशों में हम एक जरूर बन सकते हैं।
1: और मयंक जी, कॉमनवेल्थ गेम्स में तो हमने खेलो इंडिया स्कीम से निकले खिलाड़ियों का जलवा देखा, ढेर सारे मेडल खेलो इंडिया के खिलाड़ियों की तरफ से आए, जो प्रदर्शन रहा है अद्भुत रहा है, क्या कहेंगे?
0: बिल्कुल, वो जो आपने शुरू में एक स्लोगन कहा था, मैदान से पोडियम तक का, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो दिया गया था आपने उसे दोहराया, तो ये खेलो इंडिया इस कॉमनवेल्थ गेम में आप बिल्कुल उसको फलीभूत होते हुए देख

0: पाएंगे। 122 खिलाड़ी थे, उनमें से 70 खिलाड़ी खेलो इंडिया से किसी न किसी रूप में संबद्ध रहे हैं। और जो मेडल विनर्स थे, 39 मेडल्स हमारे आए, 39 मेडल्स में से 16 मेडल्स, 16 पदक,
1: जी
0: वो खेलो इंडिया से संबद्ध खिलाड़ियों के रहे।
1: जी
0: तो आप देख सकते हैं कि वो जो मैदान से पोडियम तक, यहाँ पे एकदम साकार हो रहा है, एकदम फलीभूत हो रहा है।
1: जी और राजा कहते हैं कि खेल प्रतिभाएं वो गांवों में भी बहुत छुपी हुई हैं और उनके पहचान की आवश्यकता है। वहां से बहुत सारे ऐसे एथलीट, ऐसे खिलाड़ी निकल कर सामने भी आते हैं जिन्होंने देश के लिए ढेर सारे मेडल जीते हैं। अभी इस दिशा में खेलो इंडिया के तहत और कितना काम करने की आवश्यकता है?
2: धर्मेंद्र, मेरा यह मानना है कि भारत के जो मेडल्स अभी तक आए हैं वो हिंटरलैंड से ही आए हैं। ज्यादातर आप खेलों में देखें तो वो खिलाड़ी रूरल एरिया से हैं, बैकवर्ड एरिया से हैं। उनके अंदर एक भूख है जो शायद शहरी खिलाड़ियों में कम है। मैं नहीं कह रहा कि शहरी खिलाड़ी कम है, किसी स्तर पे भी कम है, लेकिन भूख उनके अंदर ज्यादा दिखता है। और इनको खोजने में जो खेलो इंडिया का टैलेंट आइडेंटिफिकेशन स्कीम है, ये अभी मदद करेगा। मेरा ये मानना है कि खेलो इंडिया के जो अधिकारी है उनको समझ आया होगा, 2 साल पहले उन्होंने एक स्कीम चलाया था, उसमें से सीख मिली होगी। कीर्ति स्कीम था, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन स्कीम, उसमें से कुछ सीख मिला होगा। और आगे जो करना है हमें टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में, इसमें सुधार लाकर अच्छे टैलेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। जो
1: जी
2: 30,000 खिलाड़ियों की बात हो रही है खेलो इंडिया स्कॉलर्स की, ये हमारा भविष्य होंगे। और मेरा ये मानना है कि ये सारे अच्छे खिलाड़ी होंगे और बेहतरीन रिजल्ट्स भारत के लिए लेकर आएंगे आगे चलकर। ये कोई भी देश में ये होता है धर्मेंद्र, के आज अगर आपके पास 30,000 खिलाड़ी हैं, वो सारे 30,000 वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनेंगे, उनमें से छाट कर आपको 30 वर्ल्ड क्लास एथलीट मिलेंगे। अगर आपके पास बेस 3,000 का ही है तो 3 खिलाड़ी आपको मिलते हैं। अच्छी बात है कि बेस हम बढ़ा रहे हैं और वहां से हमारे खिलाड़ी उभर कर आएंगे और विश्व स्तर पर अच्छे चैंपियंस बनेंगे और फिर गर्व से हमारा दिल धड़कने लगेगा।
1: और मैन जी, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी टॉप्स जो है देश में, उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, उसके क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स अभी तक आए हैं और भविष्य में क्या योजनाएं हैं?
0: टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जो है भारत सरकार ने इस उद्देश्य से शुरू की थी कि जो हमारे एलीट एथलीट हैं, एलीट एथलीट का आशय उन एथलीट से है जिनको कि हम ये मान करके चलते हैं कि इनके अंदर इतनी प्रतिभा है और उनकी स्किल लेवल इतनी अच्छी है कि ओलंपिक और एशियन गेम्स इस तरह के जो टॉप नॉश जो कॉम्पिटिशन्स हैं उनमें ये भारत को पदक दिलाने में सक्षम है। तो उनको इस तरह की कोई असुविधा का सामना न करना पड़े, कोई फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल न फेस करना पड़े, कोई अन्य गतिरोध न फेस करना पड़े, ट्रेनिंग का हो, चाहे जगह का हो ट्रेनिंग के लिए, चाहे ट्रेनिंग के लिए सामानों का हो, या जो रिकवरी का हिस्सा है ना, मतलब उनके जो मैसर्स होते हैं, उनके जो फिजियो होते हैं, इन सभी की दृष्टि से उनको कोई ऑब्स्टिकल का सामना न करना पड़े और कोई उनके पास कमी न रह जाए, इसलिए टॉप्स जो है स्कीम लाई गई थी। और इसमें ऐसे एथलीटों का चयन किया जाता है, एक समिति होती है जो साई में कार्य करती है, उस समिति में रिनाउंड प्लेयर्स हैं, रिनाउंड कोचेस हैं, हमारे नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के भी रिनाउंड जो पुराने लोग हैं वो लोग हैं, और ऑफ कोर्स अधिकारी ही हैं। और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सीईओ टॉप्स एक अधिकारी है जो कि वर्तमान में कर्नल जोहल हैं, जो स्वयं भी ओलंपियन रह चुके हैं। तो ये अधिकारी जो है उनके अधीन ये समिति उनका निर्धारण करती है, उनके पैमाना बना होता है कि किस प्रकार के लोग इसमें टॉप स्कोर एथलीट बनेंगे। टॉप स्कोर एथलीट को ज्यादा स्कॉलरशिप बोल लें, अलाउंस बोल लें, वो मिलता है। एक टॉप्स डेवलपमेंट है जिनको हम दूसरी रंग मान सकते हैं कि ये कोर से तुरंत ही कोर बन सकते हैं, इनके अंदर भी मेडल क्षमताएं हैं, तो उनको थोड़ा सा कम पैसा मिलता है। और जो बाकी सुविधाएं जैसे मैंने आपको बताया, जितनी चीजें स्पोर्ट्स साइंस हो, चाहे कोचिंग हो, चाहे उनकी रिकवरी के हिस्से हो, चाहे उनके स्पोर्ट्स के सामान हो, इत्यादि इत्यादि। उदाहरण के लिए नीरज चोपड़ा जैसे, तो साउथ अफ्रीका में जो उनकी ट्रेनिंग थी उसकी फंडिंग टॉप्स के द्वारा ही की गई थी। तो इस प्रकार से एलीट एथलीट को सहायता देने का एक प्रयास टॉप्स के माध्यम से होता है। और आप देख रहे होंगे कि एलीट एथलीट के हिसाब की ही चीजें उनको प्रदाय की जा रही है। जैसे नीरज चोपड़ा ने चाहा था कि साउथ अफ्रीका में वो प्रैक्टिस कर सके, तो वो सुविधा उनको टॉप्स के माध्यम से प्रदान की गई थी।
2: मयंक जी ने नीरज चोपड़ा की बात की, मैं मीराबाई चानू की बात करूंगा आपसे। मीराबाई चानू को चोट लग गया था, बैक में प्रॉब्लम था। मैं 2021 ओलंपिक गेम जो 20 में होने थे लेकिन 21 में हुआ है, उस गेम की बात कर रहा हूँ। मीराबाई चानू को वहां पे मेडल मिला था, हम सब जानते हैं, लेकिन 3 महीने पहले मीराबाई चानू को चोट लगी थी और डाउट्स हो गए थे कि इनका क्या होगा। टॉप्स के सपोर्ट से वो गई अमेरिका, सेंट लुइस, वहां पे स्कॉट यूनिवर्सिटी एक बहुत ही बेहतरीन प्रोफेसर है जिन्होंने उनका इलाज किया और उनका स्क्वाट लिफ्टिंग

0: भी इम्प्रूव कर दिया और तब जाके ओलंपिक में मेडल मिला है। कई सारी बातें टॉप्स की जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है इसकी हमारे सामने आती नहीं है, लेकिन जरूरी है कि जब खिलाड़ी को मदद की जरूरत पड़ती है, जैसे मीराबाई चानू को ऐन वक्त पे पड़ गई थी और किसी का भी क्लियरेंस का टाइम नहीं वेस्ट हुआ है। एक टाइम था जब मीराबाई चानू चिट्ठी लिखती थी 3 महीने वेट करो, फिर उसके बाद क्लियरेंस हो ना हो पता नहीं, तब तक आपके पीठ का क्या हाल हो रहा है पता ही नहीं। लेकिन ये मेडल अगर किसी को जाता है, हालांकि मीराबाई चानू के हुनर को जाता है, उनके कोच को जाता है, लेकिन अगर कहीं क्रेडिट जाना पड़ेगा किसी को तो वो टॉप्स को जाता है।
1: और राजा, इतनी सारी बातें हमने कर ली, सुना आप गाना भी बहुत बढ़िया गाते हैं।
0: नहीं, गाता तो नहीं हूँ और मैं श्रोता को डराना नहीं चाहता हूँ धर्मेंद्र, लेकिन खेल का जो मुहिम है, 1958 में एक ऐसा खिलाड़ी भारत के अंदर एक जोश पैदा कर दी, मैं मिल्खा सिंह की बात कर रहा हूँ। आज की तारीख में जितना उनका तारीफ की जाए कम, वो फौजी रहे, बड़े मुश्किल परिस्थिति से उभर कर आए और फिर चल के कॉमनवेल्थ का मेडल जीता उन्होंने, क्योंकि हम कॉमनवेल्थ की बात कर रहे हैं, रोम ओलंपिक्स में 4th प्लेस फिनिश किया उन्होंने। उनके एक बायोपिक बना था भाग मिल्खा भाग, उसमें एक बहुत बेहतरीन गाना है जो आज भी हम सबको प्रेरित करेगा, हम सबको दिखाएगा कि आप मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट अच्छे आएंगे।
1: जी, वो कौन सा गाना है जो सुनना चाहते हैं?
0: भाग मिल्खा भाग।

0: तो ये गीत भी हमने सुन लिया। सच कहें तो नए भारत में खेलों के मैदान पर सफलता का सिलसिला जारी है और ये दौर लगातार मजबूती से आगे बढ़ रहा है। खेलों के मैदान से पोडियम तक पहुंचने के लिए नई बुनियाद खड़ी की जा रही है, कामयाबी की नई कहानी लिखी जा रही है। खेल को बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए हमने कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए अभी बहुत सारे कदम आगे बढ़ाने हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी सोच में परिवर्तन लाएं, अपने बच्चों को भी खेलों के लिए प्रोत्साहित करें और प्रेरित करें। मैदान मार रहे अपने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने में कोई कसर न छोड़े, तभी मैदान से पोडियम तक पहुंचने का हमारा ये महाअभियान पूरा होगा। तो मयंक श्रीवास्तव जी, खेलों के क्षेत्र में भारत सरकार और भारतीय खेल प्राधिकरण की तरफ से किए जा रहे प्रयास के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू
0: जी। राजारमन जी, खेलों में भारत के वर्तमान और भविष्य पर इतनी अच्छी बातचीत के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू सो मच धर्मेंद्र।
0: तो अब कार्यक्रम के संयोजक प्रमोद कुमार वत्स और प्रस्तुतकर्ता शहनवाज खान के साथ मैं धर्मेंद्र मणि राजेश, कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर

0: 111 से आप सबसे लेता हूं अनुमति। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111, जो कि आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया गया था। अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। जयपुर अजमेर के अलावा आप हमारे कार्यक्रम आकाशवाणी डूंगरपुर, नाथद्वारा, करौली, भरतपुर, झुंझुनू, अनूपगढ़ और कोटपूतली केंद्रों से भी सुन रहे हैं। और साथ ही आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लाइव सुन सकते हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये बैठक सार्थक चर्चाओं में शामिल होने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का एक मंच है। मंत्रालय के अनुसार भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के लिए प्राथमिकता वाले 4 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, दवा नल और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और अनुकूलन शामिल हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे। छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है, जो वित्त अधिनियम 2026 योजना के अध्याय 4 में शामिल है। ये योजना करदाता को तय कर का भुगतान करके कुछ ऐसी विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की जानकारी देने की सुविधा देती है, जिनका पहले खुलासा नहीं किया गया था। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। 15 सितंबर तक ये खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
3: इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया है। ये पुष्प भारत की समृद्ध पुष्प विरासत को दर्शाने के साथ साथ उद्यान की जैव विविधता को भी समृद्ध करते हैं। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक खुला रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन

0: बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। यह सेवा सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर संचालित होगी।
1: सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: दिल्ली सरकार ने DTC बसों में महिलाओं के लिए पिंक टिकट की सुविधा इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। परिवहन विभाग के अनुसार मुफ्त बस यात्रा की पात्र महिलाएं DTC और दिल्ली क्लस्टर बसों में कागजी पिंक टिकट का इस्तेमाल कर सकेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस के महाप्रयाण दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, झारखंड, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण कार्यक्रम रूपरेखा में। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
3: कल सुबह 9:15 पर सुनिए कार्यक्रम फिट एंड फाइन। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर, टोंक रोड, टोंक फाटक, गांधीनगर, जयपुर।

प्रस्तुत है आज कार्यक्रम प्रसारित होने वाले हैं उनकी रूपरेखा। दिन में 12:10 पर आप सुनेंगे सिंधी कार्यक्रम गुलडनी जी गुलकारी, जिसमें होंगे प्रेरक प्रसंग और बाल गीत। दिन में 2:30 और 3:30 पर आप सुन सकेंगे राजस्थानी लोक संगीत।

शाम 5 बजे आप सुन सकेंगे युवाओं का कार्यक्रम युववाणी। शाम 6:30 पर आप सुन सकेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद जिले की चिट्ठी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।

शाम 7 बजे ग्राम भारती कार्यक्रम में बातचीत होगी पशुओं में परजीवी प्रबंधन और भ्रांतियों पर। ग्राम भारती के बाद आप कार्यक्रम खेती बाड़ी सुन सकेंगे, जिसमें बातचीत का विषय होगा फसलों में समन्वित कीट और

और रोग प्रबंधन पर। रात्रि 8:30 पर कार्यक्रम होगा स्पोर्ट्स स्कैन, जो कि दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होगा। उसके बाद 8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 न्यूज़ एट 9 और 9:15 पर उर्दू में समाचार। रात्रि 10:00 अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा सुन सकेंगे, जो कि दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होगी। ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी जयपुर का अजमेर का ये आमेर।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे सिंधी कार्यक्रम गुलडनी जी गुलकारी।

ही मुंहिंजो वतन, ही मुंहिंजो वतन, ही मुंहिंजो वतन, मिश्रीअ खां मिठेरो, माखीअ खां मिठेरो, क़ुर्बान हिन वतन ते कयां पंहिंजो तन बदन। ही मुंहिंजो वतन, ही मुंहिंजो वतन, ही मुंहिंजो वतन। आज़ादी ॾींहं जूं तव्हां सभिनी खे लख लख वाधायूं। साथियूं, कल 15 अगस्त

0: असां आज़ादीअ जो ॾींहुं धूमधाम सां मल्हायो। हाज़िर आहियूं खणी अव्हांजो पंहिंजो सिंधी प्रोग्राम। सभिनी सामाइनि खे अनुष्का रंगानीअ जो प्यार भरियो नमस्कार। त साथियूं, अॼु आहे महीने जो टियों आर्तवार ऐं अॼु जो प्रोग्राम मुक़ररु थींदो आहे असांजे नंढड़नि गुलरनि लाइ। प्रोग्राम आहे गुलरनि जी गुलकारी, जंहिंमें असां फ़ोन ज़रिए कुझु ॿारनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं तव्हां ॿुधंदा कुझु ॿाराणा गीत। साथियूं, 15 अगस्त 1947 जो भारत अंग्रेज़नि खां आज़ादु थियो। सॼे मुल्क में जश्न मल्हायो वियो, छाकाणि त एतिरी लंबी आज़ादी जी लड़ाई लड़ी करे जॾहिं असां आज़ादु भारत में तिरंगो लहिरायूं पिया त हर को माण्हू ख़ुशीअ सां नची टुपी रहियो हो। देशभक्तीअ जो जज़्बो हर हिकु माण्हूअ में हो। हिन देश खे आज़ादु करण लाइ असांजे घणनि ई वीर सपूतनि पंहिंजी क़ुर्बानी ॾिनी। आज़ादी लाइ शहीद थिया, तॾहिं वञी असांखे आज़ादी हासिल थी। असां पारां हुननि सभिनी खे नमन। ऐं हाणे प्रोग्राम में ॿारो अचो त ॿुधूं फ़ोन ज़रिए कयल असांजे नंढड़नि गुलड़नि सां ॻाल्हि ॿोल। त ॿारो अचो ॿुधूं नमीशा दीदी असांजे गुलड़नि सां छा ॻाल्हियूं करे रही आहे।
1: गुलड़नि जी गुलकारी प्रोग्राम में असां जुड़िया आहियूं हिकु नए ॿार सां। ॾिसूं था अॼु असांखे हू छा थो ॿुधाए। छा नालो आहे तव्हांजो?
2: मुंहिंजो नालो विश्वा सावलानी आहे।
1: अरे वाह, कहिड़ी क्लास में पढ़ंदा आहियो तव्हां?
2: आऊं 8 क्लास में पढ़ंदी आहियां।
1: 8 क्लास में? अच्छा अच्छा। ॿियो ॿुधायो, तव्हांखे हींअर गर्मियुनि जी छुटियो आहे, नई क्लास में वञण जो मौक़ो मिलियो त तव्हांखे कीअं पियो लॻे नए दोस्तनि सां मिली करे?
2: ॾाढो सुठो पियो लॻे।
1: अच्छा, ॾाढो मज़ो ईंदो आहे त नई नई टीचरूं बि मिली हूंदियूं तव्हांखे हुते?
2: हा, नई टीचर मिलियूं आहे मूंखे।
1: ही त तमामु सुठी ॻाल्हि आहे। ॿियो तव्हांजी पढ़ाई कीअं पई हले?
2: ॾाढी सुठी थी हले मुंहिंजी पढ़ाई।
1: अरे वाह, ही बि ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे। तव्हां अॼु असांखे छा ॿुधाइण वारा आहियो?
2: अॼु आऊं तव्हांखे हिकु कविता ॿुधाईंदसि। सावन जो महीनो आहे त असांजे घर पे झिरकियूं ॾाढियूं ईंदियूं आहिनि ऐं झिरकी जे मथां हिकु कविता ॿुधाईंदसि।
1: अरे वाह, झिरकियुनि जे मथां झिरकी केॾी सुठी लॻंदी आहे न, नंढड़ी नंढड़ी सी पाण ॾिसंदा आहियूं त।
2: हा
1: हलो ॿुधायो।
2: भितते झिरकी छिते झिरकी, भितते झिरकी छिते झिरकी, घर थी चाहे सुख थी चाहे, सुस्त न आए आना लाए। भितते झिरकी छिते झिरकी, भितते झिरकी छिते झिरकी, अन्न थी मेरे कुंभ पकेड़े, उड़े मथे ती कुड़े मथे ती। अन्न थी मेरे खंभ पकेड़े, उड़े मथे ती कुड़े मथे ती। चिंबती खोले बोलियूं बोले, चिंबती खोले बोलियूं बोले, लात लवे थी राग चवे थी। छिटते झिड़की भितते झिड़की, छिटते झिड़की भितते झिड़की, घर चाहे सुख चाहे, सुस्त न आए आना लाए। भितते झिड़की छिटते झिड़की, ककपन आए आई अण आए, बचड़न के दे पुछड़न के दे। वांदी नाए पोरियूं चाहे, वांदी नाए पोरियूं चाहे, प्यारी झिड़की न्यारी झिड़की, छिते झिड़की भिते झिड़की। घर ती चाहे सुख ती चाहे, सुस्त न आए आना लाए। भिते झिड़की छिते झिड़की।
1: अरे वाह, तव्हां त ॾाढी सुठी कविता ॿुधाई असांखे, एॾी सुठी बढ़िया ॻाए करे ॾाढो मज़ो आयो। लविष्का, ॿियो छा ॿुधाइण वारा आहियो तव्हां असांखे?
2: आऊं तव्हांखे हिकु गीत ॿुधाईंदसि।
1: अच्छा, गीत ॿुधाईंदा? ॿुधायो कहिड़ो गीत ॿुधाईंदा।
2: कल 15 अगस्त थियो हो त आऊं हुन जे मथां हिकु गीत ॻाईंदसि।
1: अरे वाह, ही त ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे। हा भई, कल्ह त सभिनि 15 अगस्त मनायो आहे सॼे देश वारनि। केॾो सुठो लॻंदो आहे न, त पंहिंजे देश जे प्रति केॾो सुठो महसूसु थींदो आहे पाण खे।
2: हा, ॾाढो सुठो महसूसु थींदो आहे।
1: तव्हां कीअं मनायो 15 अगस्त, ॿुधायो।
2: 15 अगस्त जीअं असां सभी मिली करे झंडो फहिराईंदा आहियूं, स्कूल में सभी मिली करे प्रोग्राम कंदा आहियूं, असां घर में बि झंडो फहिराईंदा आहियूं, असांजो देश आज़ाद थियो हुओ।
1: हा बिल्कुल। अॼु तव्हां असांखे कहिड़ो गीत ॿुधाईंदा आहिनि 15 अगस्त जे मौके ते?
2: ही मुंहिंजो वतन।
1: अच्छा, ॿुधायो।
2: ही मुंहिंजो वतन, मुंहिंजो वतन, मुंहिंजो वतन, ही मुंहिंजो वतन, मुंहिंजो वतन, मुंहिंजो वतन। मिसरीअ का मिठड़ो, माखीअ का मिठड़ो, कुर्बान

बदन कुर्बान ते वतन ता करिया पंहिंजो तन बदन ही मुंहिंजो वतन मुंहिंजो वतन मुंहिंजो वतन ही मुंहिंजो वतन मुंहिंजो वतन मुंहिंजो वतन। मिसरीअ का मिठड़ो मां खीअ का मिठड़ो मिसरीअ का मिठड़ो मां खीअ का मिठड़ो कुर्बान ते वतन ता करिया पंहिंजो तन बदन कुर्बान ते वतन ता करिया पंहिंजो तन बदन ही मुंहिंजो वतन मुंहिंजो वतन मुंहिंजो वतन मिठ

0: लगन ही मुंहिंजो वतन मुंहिंजो वतन मुंहिंजो वतन ही मुंहिंजो वतन मुंहिंजो वतन मुंहिंजो वतन।
1: अरे वाह, तमामु सुठो, ॾाढो सुठो गीत ॻातो अथव लविष्का तव्हां। पंहिंजो वतन मिठड़ो आहे ॾाढो, है न, मिसरीअ खां बि पाण खे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे न, पंहिंजे वतन सां प्रेम
0: हा
1: आहे। पाण पंहिंजे वतन लाइ ॿियो कुझु न करे, वध में वधि हिक ॿिए सां प्रेम भाव रखूं, हिक ॿिए सां मिठो ॻाल्हायूं। ती अगरि देशभक्ति पाण खे ॾेखारणी आहे त घटि में घटि प्यार भावना सां, भाईचारे सां रहंदासीं त इहो बि वॾी ॻाल्हि आहे न।
0: हा सही ॻाल्हि आहे। मां
1: अच्छा, तव्हां असांखे ॿियो कुझु ॿुधाइण वारा आहियो छा?
0: तव्हांखे हिकु ॿी कविता ॿुधाइण थी चाहियां, सुठा संस्कार।
1: अरे वाह, हिकु ॿी कविता ॿुधाईंदा, हलो हलो ॿुधायो।
0: मां

0: उठजे अवल धनिया जो ना लो गिनजे, कूड़ न चेजे डिजे नगार, छे चोराए डिजे न क्वार। हिन नसीहत ते जो हलंदो, माइट मिट के सो वणंदो, माइट मिट के सो वणंदो।
1: अरे वाह, तमामु सुठी कविता ॿुधाई अथव लविष्का की। सुठा संस्कार, जेको हिन नसीहत ते हलंदो, माइट मिट खे सो वणंदो। त तव्हां हलंदा आहियो हिन नसीहतुनि ते?
0: हाँ,
1: तव्हां कंदा आहियो सभु इहे कम? अरे
0: वॾनि जो चयो मैं नंदी आया
1: वाह, तव्हां त ॾाढा सुठा आहियो, ॾाढी सुठी गुड़िया आहियो। पंहिंजे मम्मी पापा जा लाडली गुड़िया हूंदा, है ना? तव्हां उन्हनि जो चयो
0: हूँ।
1: मञंदा आहियो त हलो,
0: हाँ,
1: तमामु सुठो लविष्का। तव्हां असांखे ॿ सुठियूं कविताऊं ॿुधायूं, हिकु गीत ॿुधायो, तव्हां सां ॻाल्हाए असांखे ॾाढो सुठो लॻो। धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: अचो हाणे असां जुड़ंदासीं यश खेमवानी सां। कहिड़ो हाल आहे यश?
2: मां सुठो आहियां, तव्हांजो कहिड़ो हाल आहे?
1: मुंहिंजो बि बढ़िया हाल आहे, मां बिल्कुलु ठीकु आहियां। ॿियो ॿुधायो, तव्हां कहिड़ी क्लास में पढ़ंदा आहियो?
2: मां 9th क्लास में पढ़ंदो आहियां।
1: अच्छा, 9th क्लास में पढ़ंदा आहियो, ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे। ॿियो ॿुधायो, तव्हांजी परीक्षाऊं थी वियूं की थियण वारियूं आहिनि?
2: हाण हिकु त थी वई, हाण बी अचण वारी आहे। हा
1: अच्छा, अचण वारी आहे, त तव्हां उन जी पढ़ाई में लॻा पिया हूंदा, है ना? मन लगाए पढ़ाई करो पिया ना?
2: हा
1: हलो सुठो। ॿियो तव्हां अॼु असांखे छा ॿुधाइण वारा आहियो?
2: मां हिकु कविता ॿुधाईंदमि।
1: अच्छा, कविता ॿुधाईंदा, ॿुधायो।
2: कविता जो नालो आहे सुठो आहे।
1: अच्छा,
2: भुख लॻे त खाइण सुठो आहे, निंड अचे त सुम्हण सुठो आहे, उथण प्रभात जो सुठो आहे, महिटे महिटे रोज स्नान सुठो आहे, वक्त अनुसार काम करण सुठो आहे, धीरज दुख में रखण सुठो आहे, आयल जो स्वागत सुठो आहे, दीनन जो दुख हरण सुठो आहे, मेहनत करे कुछ कम करण सुठो आहे, खिलण ऐं खिलाइण सुठो आहे, सुठो आहे हिम्मत सदा ॾेखारण, सभिनि खे शीश नवाइण सुठो आहे, गुस्सो न पर गम खाइण सुठो आहे, प्रभुअ में ध्यानु लॻाइण सुठो आहे, सुठो आहे हिली मिली करे रहणो, जग में नालो कढाइण सुठो आहे, पढ़ण ऐं पढ़ाइण सुठो आहे, गीत खुशियुनि जा ॻाइण सुठो आहे, देश धर्म लाइ बलिदान ॾियण करे पंहिंजे फर्ज़ निभाइण सुठो आहे।
1: तमामु सुठी कविता ॿुधाई अथव यश, तव्हां तमामु सुठी कविता ॿुधाई अथव बेटा। लेकिन हिकु ॻाल्हि ॿुधायो, तव्हां हिननि मां कहिड़ी कहिड़ी शयूं सुठियूं सुठियूं कंदा आहियो?
2: मां पढ़ंदो आहियां
1: अच्छा, ॿियो
2: ऐं प्रभु

0: ध्यानु लॻाईंदो आहियां,
1: अरे वाह, ही त ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे। ॿियो छा कंदा आहियो?
0: सभिनि सां हिली मिली करे रहंदो आहियां।
1: अच्छा, हलो सुठी ॻाल्हि आहे कि तव्हां सभिनीनि सां हिली मिली रहंदा आहियो, प्रभुअ में ध्यानु बि लॻाईंदा आहियो, पंहिंजी पढ़ाई टाइम ते कंदा आहियो। तमामु सुठी ॻाल्हि आहे। ॿियो तव्हांजा कहिड़े कहिड़े शौक़ आहिनि? ॿियो छा कंदा आहियो तव्हां?
0: मूंखे क्रिकेट खेलणु पसंदि आहे।
1: अच्छा, त तव्हां क्रिकेट लाइ पंहिंजो टाइम ॾींदा आहियो पंहिंजी खेलण खे?
0: हा, मां रोज शाम जो वेंदो आहियां।
1: अरे वाह, ही त सुठी ॻाल्हि आहे। पंहिंजी पढ़ाई पूरी करे ही वेंदा हूंदा न?
0: हा,
1: इन जे अलावा ॿियो कोई तव्हांजो शौक़ आहे क्रिकेट खेलण जे अलावा?
0: मूंखे ड्रॉइंग बनाइण सुठो लॻंदो आहे।
1: अच्छा, ड्राइंग ठाहिण सुठो लॻंदो आहे, त ड्राइंग ठाहींदा आहियो कॾहिं कॾहिं?
0: हा, कॾहिं कॾहिं।
1: हलो सुठी ॻाल्हि आहे। यश, तव्हां असांखे तमामु सुठी कविता ॿुधाई ऐं पंहिंजे बारे में ॿुधायो, तव्हांजो घणो घणो धन्यवाद। हाणे असां जुड़ंदासीं जय जजवानी सां। जय, नमस्कार बेटा, कहिड़ो हाल आहे?
2: जय झूलेलाल, सुठो हाल आहे।
1: हा, ॿियो ॿुधायो, तव्हां कहिड़ी क्लास में पढ़ंदा आहियो?
2: मां कक्षा 7 में पढ़ंदो आहियां।
1: अच्छा, 7 में पढ़ंदा आहियो, ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे।
2: हाँ
1: ॿियो हींअर पढ़ाई कीअं पई हले? स्कूल वेंदा आहियो न तव्हां?
2: हाँ वेंदो आहियां, पढ़ाई सुठी पई हले।
1: अरे वाह, तव्हांजा एग्ज़ाम वग़ैरह थी विया?
2: हाँ एग्ज़ाम थी वी आहे,
1: कीअं थिया तव्हांजा एग्ज़ाम?
2: सुठो वियो पेपर।
1: सुठा विया पेपर? हलो, इहा त तमामु सुठी ॻाल्हि
2: हाँ
1: आहे। त ॿियो पढ़ाई जे अलावा तव्हांखे छा छा वणंदो आहे?
2: मूंखे म्यूज़िक वणंदो आहे, डांस वणंदो आहे।
1: अरे वाह, त पोइ तव्हां इन लाइ म्यूज़िक या डांस लाइ क्लास वग़ैरह अटेंड कंदा आहियो? कुझु कोर्स कंदा आहियो छा?
2: स्कूल में वठिणो आहे।
1: स्कूल में बहिरो वठंदा आहियो? अच्छा,
2: हाँ
1: म्यूज़िक चाहे गीत ॻाइणो हुजे चाहे डांस करणो हुजे, उन जे लाइ तव्हां पंहिंजो स्कूल में बहिरो वठंदा आहियो।
2: हाँ
1: अरे वाह, इहा त ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे। ॿियो तव्हां अॼु असांखे छा ॿुधाइण वारा आहियो?
2: मां हिकु कविता ॿुधाइण आयो।
1: अच्छा, कविता ॿुधाइण वारा आहियो, ॿुधायो।
2: 10 रुपियनि जो चॉकलेट आहे, 20 रुपियनि जी आहे टॉफी, खर्ची आहे 4 रुपया असांजी, मम्मी चवे आहे काफ़ी, पापा त मम्मी खाधी अॻिते, चवनि ही वटि 1 रुपयो, मां हुननि खे छा समुझायां, 1 रुपयो मां छा छा वठिबो, चइनि आसे पासे महंगाई, अघु वधिया हर शइ जा, फल महंगो मिठाई बि महांगी, अघु वधिया सभु खाधनि जा, एही सूरत में ख़र्ची मिले असांखे, हीअ असांजी ख़र्ची।
1: अरे वाह, तमामु सुठी कविता ॿुधाया अथव। असांजी ख़र्ची महांगाई त भई सच था चओ कि वधी वई आहे। त तव्हां पंहिंजी ख़र्ची मां छा कुझु वठंदा आहियो कि पंहिंजी ख़र्ची जी बचति कंदा आहियो तव्हां?
2: मूंखे जो ख़र्ची मिलंदी आहे मां उनमें सां बचत बि कंदो आहियां और वठंदो बि आहियां।
1: अरे वाह, मतलबु तव्हां बचति बि कंदा आहियो ऐं पंहिंजी जेकी शइ खपंदी आहे उहा बि वठंदा आहियो। हलो, तमामु सुठी ॻाल्हि आहे। जय, ॿियो ॿुधायो, तव्हां पढ़ाई जे अलावा ॿियो तव्हांजा कहिड़ा शौक़ आहिनि?
2: मूंखे साइकिलिंग जो शौक़ आहे।
1: अच्छा, साइकिलिंग कंदा आहियो। अच्छा, इन
2: हाँ
1: अलावा
2: हाँ
1: ॿियो तव्हां असांजा ही सिंधी प्रोग्राम ॿुधंदा आहियो?
2: हाँ मां ॿुधंदो आहियां।
1: अच्छा, त ॿारनि जो ही गुलनि जी गुलकारी प्रोग्राम बि ॿुधंदा हूंदा पोइ त?
2: हाँ
1: तव्हांखे कीअं लॻंदो आहे ही प्रोग्राम?
2: मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे।
1: अरे वाह, ही त सुठी ॻाल्हि आहे। कल्ह असांजे सॼे देश में 15 अगस्त मल्हायो वियो, तव्हांखे ख़बर आहे?
2: हाँ
1: त 15 अगस्त ॾींहुं तव्हां बि स्कूल में पंहिंजो मल्हायो हूंदो न? 15 अगस्त जो ॾींहुं पंहिंजे
2: हाँ
1: स्कूल में
2: हाँ
1: कीअं मल्हायो तव्हांजो 15 अगस्त जो ही ॾींहुं?
2: मां 15 अगस्त जो स्कूल में हिकु कविता चइनो आहियां।
1: अरे वाह, छा उहा कविता असांखे ॿुधाए सघो था?
2: हाँ
1: ॿुधायो।
2: मैं हूँ आजाद चंद्रशेखर, भारत माँ का वीर सपूत, आजादी मेरा सपना था, देश प्रेम था मेरा अटूट, अंग्रेजों से कभी न डरता, सीना तान के आगे बढ़ता, भारत माँ को मेरा प्रणाम।
1: अरे वाह, तमामु सुठी कविता ये तव्हां स्कूल में चई पंहिंजे।
2: हाँ
1: अरे वाह, तमामु सुठो जय कि तव्हां पंहिंजे 15 अगस्त जे ॾींहुं कविता बि ॿुधायव। ऐं उन जे
2: गीत
1: अलावा तव्हांजे स्कूल में ॿियो कहिड़ा कार्यक्रम थींदा आहिनि?
2: संगीत डांस झंडा वंदन भी हूंदो है।
1: झंडा रोहण कयो हो तव्हां?
2: हाँ
1: ॿियो मिठाई भी मिलंदा आहिनि, लड्डू भी मिलंदा आहिनि पाण खे, उहो मिलियो?
2: हाँ
1: हलो, सुठी ॻाल्हि आहे। त सुठो लॻंदो आहे न 15 अगस्त जे ॾींहुं जॾहिं असां स्कूल वेंदा
2: हाँ
1: आहियूं
2: ॾाढो
1: पंहिंजे।
2: सुठो
1: अच्छा,
2: लॻंदो
1: लेकिन
2: है।
1: जीअं पाण खे ख़बर आहे कि पाण 15 अगस्त छो मल्हाईंदा आहियूं, तव्हांखे ख़बर आहे इहा ॻाल्हि
2: हाँ
1: छो मल्हाईंदा आहियूं? ॿुधायो।
2: हुने जी पंहिंजो देश आजाद थियो हो।
1: हा, उन ॾींहुं पंहिंजो देश आज़ादु थियो हो, इन ई ख़ुशी में हर साल पाण 15 अगस्त मल्हाईंदा आहियूं ऐं झंडा रोहण कंदा आहियूं, है न?
2: हाँ
1: हलो, तमामु सुठी ॻाल्हि आहे। जय, तव्हां असां सां गॾु ॻाल्हायो, असांखे पंहिंजी कविताऊं बि ॿुधायूं, तव्हांजो घणो घणो

झोपड़ीअ जे पासे खां वञी रहियो हो त हिकु भील जे दर ते पिंजरे में बंदि तोते रड़ कई। डुको पकड़ियो, मारे छॾियो हिन खे, इन जो घोड़ो खसे वठो। राजा समझी वियो त हू डाकुनि जी बस्ती में अची वियो आहे। हुन घोड़े खे पूरी रफ़्तार सां डोड़ायो। डाकुन हुन जो पीछो कयो, पर राजा जो घोड़ो सुठी नस्ल जो हो, थोरी देर में परे निकिरी वियो। डाकू थकजी मायूस थी पीछो करणु छॾे ॾिनो। भॼंदे डुकंदे अॻिते वेंदे राजा खे ऋषि मुनिनि जो आश्रम मिलियो। जॾहिं राजा हिकु कुटिया जे साम्हूं निकितो त पिंजरे में वेठल तोते उन खे ॾिसंदे ई चवणु लॻो, अचो राजन, तव्हांजी आज्ञा आहे। अरे, असांजा महिमान आया आहिनि, वञो राजन लाइ आसन खणी अचो। तोते जी ॻाल्हि ॿुधी मुनि ओॾी महिल ई कुटिया जे ॿाहिरि अची वियो। उन्हनि राजा जी आज्ञा कई। राजा मुनिअ खे पुछियो, महाराज, हिकु ई जाति जा पखी ॿिन्हिनि जे स्वभाव में एतिरो फ़र्क़ु छो आहे? मुनिनि जे चवण खां पहिरियों ई तोते चयो, राजन, असां ॿई हिकु ई माउ पीउ जी संतान आहियूं। मूंखे ही संत इते वठी आया, पर उन खे खूंखार डाकू भील खणी विया। हू खूंखार डाकुनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधंदो आहे ऐं मां मुनिनि जा वचन ॿुधंदो आहियां। तव्हां पाण ई ॾिसी वरितो त कहिड़ी तरह सां गॾु रहण सां खूबियूं ऐं खामियूं कीअं ईंदियूं आहिनि। त ॿारहों, हिन कहाणी सां असांखे छा सीख मिली? असांजे शास्त्रनि में चयो वियो आहे त जहिड़ो संग तहिड़ो रंग। ॿार जीअं जीअं वॾो थींदो आहे, उहा ई उन ते माउ पीउ जो, ओड़े पाड़े जे माहौल ऐं नंढपण जे दोस्तनि जो उन्हनि जे जीवन ते असरु पवणु लॻंदो आहे। इन करे माउ पीउ खे इन ॻाल्हि ते बि ध्यानु ॾियणु खपे त हू ॿारनि में नंढपण में सुठा संस्कार विझनि ऐं उन्हनि खे ख़राब संगत खां परे रखनि। ऐं हाणे प्रोग्राम में अॻियां अचो त मज़ो माणियूं ढोलन राई जी आवाज़ में ॻातल हिन सुहिणे गीत जो।

ॿारहं हींअर अवां मज़ो माणे रहिया हुआ टोलन राई जे आवाज़ में ॻातल हिन सुहिणे गीत जो। अॼु आहे श्री गुनो समताणीअ जी वर्सी। सिंधी साहित्य में नयूं रिवायतुनि जी शुरूआति कंदड़ ऐं अकादमी अवार्ड सां नवाज़ियल मशहूरु सिंधी लेखक श्री गुनो समताणीअ जो जनमु 14 जुलाई 1933 ते हैदराबाद सिंध में थियो हो। बीए ताईं पढ़ाई कयल श्री गुनो समताणीअ जा केतिरे ई साल महाराष्ट्र सरकार जी मुलाज़िमियत में गुज़रिया ऐं रिटायरमेंट वक़्तु हू जॉइंट सेक्रेटरी जे उहिदे तां रिटायर थिया। श्री गुनो समताणीअ जो नालो मुल्क जे विरांगे खां पोइ वारे अरसे जी सिंधी साहित्य जी मशहूरु त्रिमूर्तीअ में शुमार थियल आहे। ॿिया लेखक आहिनि मोहन कल्पना ऐं लाल पुष्प। इन्हनि टिन्हिनि खे संदन जे तरक़ी पसंद वीचारनि ऐं लिखण जे ख़ासि नमूने सबबि हिकु ख़ासि मुक़ाम हासिल आहे। गुनो समताणी बुनियादी तौर हिकु कहाणी लेखक हुआ जंहिंजूं कहाणियुनि जो मुख्य विषय घणे भाङे सचे प्यार जी तलाश ऐं इंसानी रिश्ता रहियो आहे। संदसि कहाणी मजमो अपराजिता जंहिं वास्ते इन्हनि खे सिंधी साहित्य अकादमी अवार्ड हासिलु थियो तंहिंमें 6 कहाणियूं आहिनि। सिंधी अदब में इन्हनि जे योगदान वास्ते महाराष्ट्र सरकार पिणु गौरव पुरस्कार सां इन्हनि जो सत्कार कयो हो ऐं 16 अगस्त 1997 में हू हिन फ़ानी दुनिया मां चालानो करे विया। ऐं साथियूं हिन ॼाण सां गॾु ई अॼु जो असांजो सिंधी कार्यक्रम

इते ही पूरो थो थे, वरी अवां सां गॾिजाणी थींदी ईंदड़ मंगल ते। ईअं ई ॾींहं में 12:10 ते खणी हाज़िर थींदासीं हिकु नई सिंधी पेशकश। तेसीं ताईं तव्हां सभु सावण में चांहि जो मज़ो माणियो ऐं ॾियो अनुष्का रंगानीअ खे मोकल। नमस्कार।

हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अभी आप सुन रहे थे सिंधी कार्यक्रम गुलडनी जी गुलकारी, और अब आप आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत का। श्रोताओं, फिल्म संगीत की इस कड़ी में आप सुनेंगे उदित नारायण की आवाज़ में दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का ये गीत, जिसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है जतिन ललित ने। लीजिए सुनते हैं ये गीत।

राजस्थान में खरीफ 2026 में फसल बीमा योजना PMFBY एवं RWBCIS लागू की जा रही है। आज ही अपने नजदीकी बैंक CSC केंद्र या अन्य अधिकृत माध्यम से अपनी फसल का बीमा कराएं और प्राकृतिक आपदाओं से अपनी फसल को सुरक्षित करें। अधिक जानकारी के लिए कृषि रक्षक हेल्पलाइन 1447 पर संपर्क करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।

कुमार सानू की आवाज़ में अभी आपने सुना परदेस फिल्म से ये गीत, जिसके बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। अब आप सुनेंगे मोहब्बत फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ों में मोहब्बतें फिल्म से ये गीत। गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था जतिन ललित ने। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत की ये श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी का जयपुर अजमेर केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज प्रदेश में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। उन्होंने चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अष्ट धातु से निर्मित 21 फीट ऊंची प्रतिमा और मिनी अटल स्मारक का अनावरण किया। इसके बाद श्री शाह डॉ भीमराव अम्बेडकर कॉलेज मैदान में पहुंचे, जहां वे इस समय अटल गौरव स्मृति समारोह को संबोधित कर रहे हैं। इससे पहले गृह मंत्री ने 15 जिलों के लिए 5,659 करोड़ रुपए के 944 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद श्री शाह का आज ही अलवर जाने का कार्यक्रम है, जहां से राज्य के 17 जिलों के लिए 6,453 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। इस दौरान गृह मंत्री सरस डेयरी परिसर में नए डेयरी संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। श्री शाह विभिन्न दुग्ध संघों के डेयरी प्रसंस्करण और पशु आहार संयंत्रों का भी उद्घाटन करेंगे। वे विजयनगर ग्राउंड में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री रोजगार उत्सव के तहत 10,500 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। श्री शाह नए केंद्रीय सहकारी बैंकों के गठन की घोषणा करेंगे और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को DBT के जरिए राशि भी हस्तांतरित करेंगे। इनमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी शामिल हैं। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। अपने सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने वाजपेयी जी को असाधारण दूरदर्शी और उत्कृष्ट राजनेता बताया, जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र

0: सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री के शब्दों ने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया और उनके नेतृत्व ने राष्ट्र को सशक्त बनाया। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI जस्टिस सूर्यकांत प्रदेश के दौरे पर हैं। उन्होंने आज जोधपुर के जिला न्यायालय परिसर में 60 कोर्ट क्षमता वाले नए 7 मंजिला भवन का उद्घाटन किया और नए हाईकोर्ट गेस्ट हाउस की आधारशिला रखी। CJI का नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के 25वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने और समारोह को संबोधित करने का कार्यक्रम है। साथ ही लीगल टेक्नोलॉजी एंड इट्स रोड मैप विषय पर आयोजित वाइस चांसलर्स कॉन्क्लेव का भी उद्घाटन करेंगे। वहीं CJI का प्रमुख अधिवक्ता संगठनों द्वारा आयोजित संयुक्त सम्मान समारोह में भी शिरकत करने का कार्यक्रम है। राजधानी जयपुर में आज बूढ़ी तीज की सवारी निकाली जाएगी। बैंड बाजों और शाही लवाजमे के साथ जनानी ड्योढ़ी से ये सवारी निकलेगी। इसके लिए प्रशासन ने यातायात के विशेष प्रबंध किए हैं। प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार अब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी है। हालांकि मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 10 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। पिछले 24 घंटों में भरतपुर धौलपुर सहित कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हुई और कुछ स्थानों पर तेज बरसात रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान भरतपुर सवाईमाधोपुर धौलपुर करौली कोटा में दिन भर रुक रुक कर तेज बरसात का दौर चला। वहीं टोंक बूंदी अलवर और चित्तौड़गढ़ के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। इधर राज्य के पश्चिमी भागों में बारिश का दौर थमने के बाद अब फिर से धूप निकलने से गर्मी और उमस बढ़ने लगी है। प्रदेश में सबसे अधिक 38.6 डिग्री सेल्सियस तापमान श्रीगंगानगर में दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल और परसों प्रदेश में अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहने का अनुमान है। हालांकि 19 अगस्त से एक बार फिर पूर्वी राजस्थान के जिलों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना जताई गई है। महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस के महाप्रयाण दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत के महान विचारक और माता काली के परम भक्त श्री रामकृष्ण परमहंस ने भारतीय सनातन परंपरा की गहन शक्ति और आध्यात्मिक चेतना को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। पहला गीत सुनेंगे आप धनवान फिल्म से लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में।

0: अभी आपने सुना कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में 1942 ए लव स्टोरी फिल्म से ये गीत, जिसके बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने और संगीत दिया था आरडी बर्मन ने।
1: राजस्थान में खरीफ 2026 में फसल बीमा योजना PMFBY एवं RWBCIS लागू की जा रही है। आज ही अपने नजदीकी बैंक CSC केंद्र या अन्य अधिकृत माध्यम से अपनी फसल का बीमा कराएं और प्राकृतिक आपदाओं से अपनी फसल को सुरक्षित करें। अधिक जानकारी के लिए कृषि रक्षक हेल्पलाइन 1447 पर संपर्क करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
0: श्रोताओं, लीजिए फिल्म संगीत की इस कड़ी में सुनते हैं अगला गीत, जो कि है कुमार सानू की आवाज में हाँ मैंने भी प्यार किया फिल्म से। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

अभी आपने सुना कुमार सानू की आवाज़ में हाँ मैंने भी प्यार किया फिल्म से ये मधुर गीत। तो श्रोताओं, अब फिल्म संगीत की इस कड़ी के अंतिम गीत की ओर चलते हैं, जो कि विनोद राठौड़ की आवाज़ में है, बाजीगर फिल्म से, जिसके बोल लिखे हैं रानी मलिक ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

0: तो श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत की ये श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम बालवाणी।
1: भाई, मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
2: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
3: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।

कल सुबह 9:15 पर सुनिए कार्यक्रम फिट एंड फाइन। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर, टोंक रोड, टोंक फाटक, गांधीनगर, जयपुर।

0: खेल खेल में सीखने वाली, इंद्रधनुष में रंग भर दे, बातें इनकी बड़ों पे भारी, हर किसी को दंग कर दे, कभी शरारत कभी है गुस्सा, संगीत कला कहानी किस्सा, ये है बच्चों का संसार, बालवाणी, बच्चों की बातें बच्चों के संग।
1: हेलो बच्चों, लीजिए भाई आपके प्यार इसे प्रोग्राम बालवाणी में आपकी मनीषा दीदी हाजिर है आपसे ढेर सारी प्यारी सी बातें करने के लिए, ढेर सारी नई नई बातें। बच्चों, जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल अपने समय को ही नहीं बल्कि अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को भी अपने विचारों और आदर्शों से रोशन करते हैं, और ऐसे बहुत से महापुरुषों के बारे में, बहुत से लोगों के बारे में हम आपसे बातचीत करते ही हैं ना अपने कार्यक्रम के जरिए। तो भाई आज के कार्यक्रम में भी हम ऐसे ही महान संत रामकृष्ण परमहंस को याद करेंगे जिनका जीवन प्रेम, सरलता, भक्ति और मानवता का संदेश देता है, और इसके साथ ही बात करेंगे एक ऐसे दिन की जो हमें आपसी प्रेम, भाईचारा, सद्भाव का महत्व समझाता है, यानी कि सद्भावना दिवस। बच्चों, हम हर साल 16 अगस्त को महान संत और आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस की पुण्यतिथि मनाते हैं। इनका जन्म 18 फरवरी 1836 को बंगाल के कामारपुकुर गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। बचपन से ही इनका मन ईश्वर की भक्ति और आध्यात्मिक चिंतन में लगता था। ये बहुत सरल स्वभाव के थे। उनका जीवन सादगी और प्रेम से भरा हुआ था। वो मानते थे कि ईश्वर तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, लेकिन सबकी मंजिल एक ही होती है। उनकी सबसे प्रसिद्ध शिक्षा थी जितने मत उतने पथ, मतलब अलग अलग धर्म और विचार हमें अलग अलग रास्ते तो दिखा सकते हैं, लेकिन सभी का उद्देश्य है मानवता, प्रेम और सत्य की ओर बढ़ना। रामकृष्ण परमहंस ने विभिन्न धार्मिक परंपराओं का अध्ययन और साधना की,

जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हर धर्म और हर विचार का सम्मान करना चाहिए। वो कहते थे कि केवल पूजा पाठ करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि मनुष्य की सेवा करना भी ईश्वर की सेवा है। उनके महान शिष्य स्वामी विवेकानंद ने उनके विचारों को देश विदेश तक पहुंचाया। रामकृष्ण परमहंस का निधन 16 अगस्त 1886 को हुआ। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें श्रद्धापूर्वक याद करते हैं और उनके जीवन से प्रेम, करुणा, सहिष्णुता और मानव सेवा की प्रेरणा लेते हैं। शतशत नमन करते हैं हम ऐसे आध्यात्मिक गुरु को, क्योंकि उनका जीवन हमें एक बहुत सुंदर संदेश देता है। प्रेम करो, दूसरों का सम्मान करो और जरूरतमंद की सहायता करो। तो भाई, इतनी अच्छी भावना के साथ एक प्यारा सा गीत भी सुन ले।

0: बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस प्यारे से बालवाणी कार्यक्रम में। और अब वक्त हो चला है हमारे हुनरबाज से बातचीत करने का। तो भाई, हमारी हुनरबाज जो है ना, वो स्टूडियो में बहुत देर से बैठी हुई है और देख रही है कि दीदी कितनी बातें कर रही हैं, मेरे से कब बात करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं आज कौन है हमारे साथ।
1: चलिए सबसे पहले उनका नाम पूछ लेते हैं। बताएं भाई, क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम आकांक्षा है।
1: आकांक्षा, बहुत बढ़िया भाई। आकांक्षा नाम का अर्थ भी बहुत ही खूबसूरत है। आकांक्षा, सबसे पहले तो ये बताओ कि आज तुम पहली बार यहाँ आकाशवाणी स्टूडियो में आई हो, कैसा लग रहा है आपको हमारे यहाँ स्टूडियो में आना और यहाँ की फीलिंग्स कैसी लग रही हैं?
2: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
1: कहाँ की रहने वाली हो?
2: मैं जयपुर की रहने वाली हूँ।
1: चलिए भाई, ये बताइए कि आप जो हैं, हमें दिख रही हैं, कलाकार हैं, तो कहाँ कहाँ आपने प्रस्तुति दी है, क्या क्या गाती हो? क्योंकि भाई, इसके सामने जो है ना, एक बड़ा सा हारमोनियम रखा हुआ है, तो हारमोनियम है, इसका मतलब ये कोई ना कोई गीत प्रस्तुत करेंगी। अरे भाई, मैंने कयास लगा लिया श्रोताओं। चलिए भाई, बताइए कहाँ कहाँ प्रस्तुति दी और क्या क्या गाती हो?
2: मैंने बहुत से कार्यक्रम में भाग लिया है और कई जगह पे मैंने परफॉर्मेंस दी है। मैं सभी तरीके के गाने गाती हूँ, भजन गाती हूँ, गजल गाती हूँ और ठुमरी सब गाती हूँ।
1: बहुत बढ़िया आकांक्षा। अब ये तो हम बता ही चुके हैं ना कि आप अपने सामने हारमोनियम लेकर बैठी हो और कुछ न कुछ सुनाने वाली हो, तो बताएं हमारे श्रोताओं को आज क्या सुनाओगी?
2: मैं अपनी नानी की कंपोजिशन सुनाने वाली हूँ जो कि मेरी नानी ने तैयार की है।
1: भाई वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया जो है, इनका ताना बाना बैठा हुआ है। चलिए भाई, नानी की कॉम्पोजिशन है जो हम भी सुन लेते हैं।

0: भाई वाह आकांक्षा, आप तो छुपी रुस्तम निकली, क्या पकड़ है आपकी। बहुत अच्छा आपने गाया और सच में हम तो आपके इस गायन में बिल्कुल गुम हो गए। अच्छा ये बताओ कि जीवन में आपका आगे क्या उद्देश्य है, क्या करना चाहते हो, भविष्य में क्या बनना चाहती हो, कुछ बताओ।
1: जी ज़्यादा इतना मैंने कभी सोचा नहीं है कि क्या बनना है क्या नहीं, बस मेरा काम गाना है, मैं गाना कर रही हूँ।
0: बहुत बढ़िया। आकांक्षा का मानना है कि हमें नियति पर अपने आप को छोड़ देना चाहिए, प्रयास करने चाहिए, सीखना चाहिए, लेकिन ईश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ सोच रखा है। देखो अब आकांक्षा जो है वो इतना अच्छा गाती है, सीखती भी है, लेकिन भविष्य में क्या बनेगी इसने भी सोचा नहीं है, ये इसने अपनी मम्मी नानी और बड़ों पर छोड़ दिया है ना। श्रोताओं जब आकांक्षा गाती है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे नूरजहां जी गा रही हैं, इसकी आवाज में कहीं ना कहीं नूरजहां की सिमिलैरिटी मिलती है। तो आकांक्षा आपने नूरजहां को सुना है?
1: जी हाँ, मैंने सुना तो था लेकिन मुझे ऐसा पता नहीं था कि मेरी आवाज़ इनसे मिलती है।
0: हाँ, पर तुम्हारी आवाज ना कहीं बहुत सिमिलर जाती है उनसे। अच्छा ये बताओ कि अब हमें क्या सुना रही हो?
1: जी मैं देशभक्ति गीत सुना।

0: भाई वाह, एक तो देशभक्ति गीत, ऊपर से आकांक्षा की इतनी प्यारी आवाज़, हमारा रोम रोम पुलकित हो गया। और देखिए ना, अभी हमने जो है अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है, देशभक्ति का जज्बा अभी भी हमारे मन में है, और ये गीत सुनकर तो सच में हम बहुत बहुत आकांक्षा को बधाइयाँ देना चाहते हैं, शुभकामना देना चाहते हैं कि आकांक्षा तुम संगीत की दुनिया में ढेरों नाम कमाओ और खूब ऊंचाइयाँ प्राप्त करो, और भविष्य में जो बनना चाहती हो वो भी ईश्वर तुम्हें बहुत आसानी से दे।
1: और अब बात करते हैं सद्भावना दिवस की। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है सद्भावना दिवस। उनकी स्मृति में हर वर्ष मनाए जाने वाले इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है देश में शांति, एकता, भाईचारे और आपसी सद्भावना को बढ़ावा देना। क्यों? क्योंकि सद्भावना का अर्थ है एक दूसरे के प्रति प्रेम, सम्मान, मित्रता और भाईचारे के भाव को रखना। और अब भी बच्चे सोच रहे होंगे कि सद्भावना जैसी बड़ी बात हम छोटे से बच्चों के जीवन में कैसे आ सकती है। तो भाई, ये तो बहुत आसान बात है। आपकी कक्षा में कोई नया बच्चा आया है और आप उससे दोस्ती करते हैं, ये है सद्भावना। अगर आपका दोस्त किसी विषय में कमजोर है और आप उसकी पढ़ाई में मदद करते हैं, ये है सद्भावना। किसी बच्चे की भाषा, पहनावा, संस्कृति आपसे अलग है पर फिर भी आप उसका सम्मान करते हैं, यही है सद्भावना। और अगर दो दोस्तों में झगड़ा हो जाए और आप उन्हें प्यार से समझाकर दोस्त बना लें, तो ये भी सद्भावना ही है। यानी सद्भावना केवल एक दिन मनाने की चीज नहीं है, बल्कि हमें इसे अपने व्यवहार में उतारना चाहिए। हमारा भारत देश अनेक भाषाओं, धर्मों, संस्कृतियों, परंपराओं और त्योहारों का देश है। कहीं दीपावली मनाई जाती है तो कहीं ईद, कहीं गुरु पर्व, कहीं क्रिसमस, कहीं पोंगल, बिहू, ओणम, बैसाखी, है ना, ढेर सारे त्योहार। भाई, हमारी विविधता ही हमारे देश की खूबसूरती है। तो बच्चों, हमें ये समझना चाहिए कि अगर अलग अलग फूल मिलकर जैसे एक सुंदर गुलदस्ता बनाते हैं, वैसे ही अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृतियां और

परंपराएं मिलकर भारत को सुंदर बनाती हैं। और यही बात हमें स्वतंत्रता दिवस के आसपास और भी अच्छी तरह याद आती है। आप लोगों ने कल मनाया ना स्वतंत्रता दिवस, जब हमने अपने शहीदों को याद किया और ये याद किया कि कितनी कुर्बानियां देकर के उन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई। उन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखा जहां लोग मिलजुल कर रहे। इसलिए स्वतंत्रता का आनंद तभी सार्थक है बच्चों, जब हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान हो। चलो एक छोटी सी कल्पना करते हैं। मान लीजिए आपकी कक्षा में तीन बच्चे हैं, आरव, सिया और अली। तीनों की पसंद अलग अलग है। आरव को क्रिकेट पसंद है, सिया को चित्र बनाना और अली को संगीत पसंद है। अब क्या अलग अलग पसंद होने के कारण वो दोस्त नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना। तो यही तो सद्भावना है। हमारी पसंद अलग हो सकती है लेकिन हमारा दिल एक दूसरे के लिए सम्मान और दोस्ती से भरा होना चाहिए। तो बच्चों आज के बालवाणी कार्यक्रम में हमने दो महान संदेश एक साथ सीखे। पहला, रामकृष्ण परमहंस हमें सिखाते हैं प्रेम, सहिष्णुता और मानव सेवा का मार्ग अपनाना, और सद्भावना दिवस हमें याद दिलाता है एक दूसरे का सम्मान करना, मिलजुल कर रहना और देश की एकता को मजबूत बनाना। तो भाई हम सब एक छोटा सा संकल्प लेते हैं कि हम भारत की एकता, विविधता का सम्मान करेंगे।

0: आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, खूब पढ़ें, खूब सीखें और अपने आसपास हमेशा प्यार और मुस्कान बांटते रहें। आपकी प्यारी सी दीदी मनीषा आपसे फिर मिलेगी नए बालवाणी कार्यक्रम में। तब तक के लिए बाय बाय किड्स।
1: खेल खेल में सीखने वाली इंद्रधनुष में रंग भर दे, बातें इनकी बड़ों पे भारी, हर किसी को दंग कर दे। कभी शरारत कभी है गुस्सा, संगीत कला कहानी किस्सा, ये है बच्चों का संसार। बालवाणी, बच्चों की बातें बच्चों के संग।

हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बालवाणी। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है।

0: Northwest Bay of Bengal intensifies flood threat in northern Odisha. In badminton, India set to host BWF World Championships beginning tomorrow. And in cricket, Bangladesh secure historic first test win in Australia. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी किए। आपत्तियां दर्ज करने के लिए मंगलवार तक का समय। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान में पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा बढ़ा। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू होगी। और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत, ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से दी मात। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। एक रिपोर्ट।
2: छात्र आधिकारिक यूजीसी नेट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उत्तर कुंजी को चुनौती दे सकते हैं। प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने के लिए ₹200 प्रति प्रश्न का प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा। छात्रों को प्रत्येक चुनौती के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है। किसी अन्य माध्यम से भेजी गई चुनौतियों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रोसेसिंग शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि इस महीने की 18 तारीख है। एनटीए ने बताया कि शेष 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र के प्रश्न पत्रों में विभिन्न प्रकार की त्रुटियों से संबंधित शिकायतों की जांच के लिए एक समिति गठित की गई थी। एनटीए ने कहा कि समिति की सिफारिशों के आधार पर इन तीनों विषयों के संबंध में अलग से सार्वजनिक सूचना आज जारी की जाएगी। एनटीए ने छात्रों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट और आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर प्रकाशित सूचनाओं पर ही भरोसा करें। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व लंबे समय तक विपक्ष में रहे थे, फिर भी उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और यही कारण है कि उन्हें अजात शत्रु कहा जाता था। श्री शाह ने ये बात श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आज राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में उनकी प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर कही।
4: 16 अगस्त आज ही के दिन अटल जी हम सब के बीच में से विदा लिए थे। अटल जी की याद में इस पवित्र भूमि पर आज एक बहुत बड़ी 21 फीट की प्रतिमा लगाने का काम और एक भव्य स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है।
1: श्री शाह ने कहा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना श्री वाजपेयी के ही कार्यकाल में हुई थी। उनकी पहल के कारण जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए कई कार्य हुए, जिसे मौजूदा सरकार ने भी आगे बढ़ाया है और कई ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जनजातीय लोगों के हितों और अधिकारों की रक्षा की गई है।

0: शाह आज अलवर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी श्री वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी ने आज पार्टी कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। एक रिपोर्ट।
1: भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक सार्थक चर्चाओं में शामिल होने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का मंच है। मंत्रालय के अनुसार भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के लिए प्राथमिकता वाले 4 क्षेत्रों की पहचान की है। में सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वन संवर्धन, दावानल और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और अनुकूलन शामिल हैं। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के विरोध का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह में वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के गायन को रुकवाने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि ऐसा करके कांग्रेस ने राष्ट्रगीत का अपमान तो किया ही, संविधान और देश की जनता का अपमान भी किया।
2: हमने कल जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, हमने कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी द्वारा किया गया विरोध में देखा। कांग्रेस ने सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स का ही अपमान नहीं, इस देश के संविधान का, इस देश की संप्रभुता अखंडता का और इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है वंदे मातरम के उद्घोष का विरोध करते हुए।
0: भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर पार्टी मुख्यालय में वंदे मातरम का पूरा गायन हुआ था। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज हरियाणा में करनाल में तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये अभियान इस महीने की 9 तारीख से 17 तारीख तक पूरे देश में चलाया जा रहा है। तिरंगा यात्रा को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने रवाना किया। राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
3: अमृत उद्यान के संस्करण में देशज और स्थानीय ग्रीष्मकालीन पुष्प प्रमुख आकर्षण है। इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। वही रखरखाव कार्य के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: केरलम का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव तिरुवोणम 26 अगस्त को मनाया जाएगा। उत्सव को लेकर उल्लास का माहौल है। आज अथम के साथ राज्य में ओणम की शुरुआत हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: ओणम के औपचारिक समारोह आज अथम के साथ शुरू हो गए हैं और पूरे केरल में मनाए जा रहे हैं। अथम की खास पहचान अथ पुक्कलम है, जिसमें घरों में रंग बिरंगे फूलों से कालीन सजाए जाते हैं। इसमें तिरुवोणम तक हर दिन फूलों की एक नई परत जोड़ी जाती है। मध्य केरल के त्रिपुनितुरा में आयोजित होने वाला भव्य अथा चमयम जुलूस भी ओणम समारोह का प्रमुख आकर्षण है। इसमें पारंपरिक कला रूपों और प्रस्तुतियों के माध्यम से राज्य

0: की समृद्ध संस्कृति और विरासत की झलक देखने को मिलती है। उधर सबरीमाला मंदिर आज मासिक पूजा के लिए खोल दिया गया है। विशेष ओणम पूजा 24 से 28 अगस्त तक होगी। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अंजुम आलम।
1: उधर जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले की मंडी तहसील में स्थित प्राचीन बाबा बुड्ढा अमरनाथ मंदिर की 12 दिन की वार्षिक श्री बुड्ढा अमरनाथ यात्रा कल शुरू होगी। श्रावण माह में होने वाली यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी। पुदुचेरी में आज डी ज्यूरे ट्रांसफर डे मनाया जा रहा है। ये दिन पुदुचेरी के भारत में विलय के स्मरण में मनाया जाता है। इस अवसर पर पुदुचेरी के गृहमंत्री ए नमस्सिवयम ने कीझूर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यहां 1954 में भारत में विलय को लेकर ऐतिहासिक जनमत संग्रह हुआ था। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने साइबर कुश्ती 2026 नामक एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमता हैकाथॉन का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा आकलन में मानवीय निर्णय क्षमता का परीक्षण और उसे मान्यता प्रदान करना है। साइबर कुश्ती के लिए कल से शुरू हुआ पंजीकरण अगले महीने की 10 तारीख तक जारी रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में एक बार फिर हवा का कम दबाव का क्षेत्र बन जाने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार तक मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है।
2: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल उत्तरी ओडिशा तट पर कम दबाव का एक नया क्षेत्र बना है, जिससे राज्य में बाढ़ की समस्या और बढ़ गई है। IMD ने भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। उत्तरी ओडिशा के कुछ हिस्सों में खासकर कल और परसों बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। बैतरणी, ब्राह्मणी, सालंदी, जलका और बूढ़ा बलंग नदियों ने बड़े इलाकों को जलमग्न कर दिया है। बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज, केंवझर और केंद्रापड़ा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 500 से ज्यादा गाँव में लगभग 2,70,000 लोग प्रभावित हुए हैं। 95,000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है और बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए अधिकारी हाई अलर्ट पर है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इधर राजधानी दिल्ली में आज शाम हल्की वर्षा हो सकती है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रही है। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। भारत दूसरी बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले वर्ष 2009 में ये चैंपियनशिप भारत में हुई थी। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन PV सिंधु कल अपना पहला मैच खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी से भारत को पदक मिलने की उम्मीद है। महिला डबल्स में त्रिशा और गायत्री गोपीचंद चुनौती पेश करेंगी। मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो भारत की अगुवाई करेंगे। भारत ने अब तक विश्व चैंपियनशिप के मिक्स्ड डबल्स में कोई पदक नहीं जीता है। और अगर क्रिकेट की बात करें तो बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट मैच में 9 विकेट से हरा दिया है। ये ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत है और ऑस्ट्रेलिया पर कुल मिलाकर दूसरी। दोनों देशों के बीच दूसरा टेस्ट मैच 22 अगस्त से मैके में खेला जाएगा।
1: महान संत श्री राम कृष्ण परमहंस के महाप्रयाण दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत के महान विचारक और माता काली के परम भक्त श्री राम कृष्ण परमहंस ने भारतीय सनातन परंपरा की गहन शक्ति और आध्यात्मिक चेतना को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। NTA ने इस वर्ष जून में हुई UGC नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी किए। आपत्तियां दर्ज करने के लिए मंगलवार तक का समय। झारखंड में JPSC JSSC परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान में वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में हवा

एफएम बैंड 101.2 MHz पर। अभी दोपहर के 2:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब से कुछ देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत।

0: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
3: सावण सुरंगो आई अजी को

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोक संगीत। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं और अब आप आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत का।

फिल्म संगीत की इस कड़ी में पहला गीत आप सुन रहे हैं अरमान फिल्म से सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है शंकर एहसान।

अभी आपने सुना अलका याग्निक की मधुर आवाज़ में उमराव जान फिल्म से ये गीत, जिसके बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने और संगीत दिया था अनु मलिक ने। तो श्रोताओं, फिल्म संगीत की इस कड़ी में अगला गीत आप सुनेंगे स्वदेश फिल्म से, उदित नारायण, कैलाश खेर और हरिहरन की आवाज़ों में। गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है AR रहमान ने।

श्रोताओं, फिल्म संगीत की इस कड़ी में बढ़ते हैं अंतिम गीत की ओर, जो कि है रोग फिल्म से के की आवाज़ में, जिसके बोल लिखे हैं नीलेश मिश्रा ने और संगीत दिया है MM करीम ने।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.5 एक मीटर यानी 603 किलो हर्ट्ज और एफएम बैंड 101.2 मेगा हर्ट्ज पर। श्रोताओं, दोपहर के 3:30 हुए हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलो हर्ट्ज और एफएम बैंड 101.2 मेगा हर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब आप आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत का।

इस कड़ी में पहला गीत आप सुनेंगे तेरे नाम फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने।

अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक की आवाज़ में स्वदेश फिल्म का ये गीत, जिसे गाया था अलका याग्निक ने। गीत के बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने और संगीत दिया था AR रहमान ने। श्रोताओं, फिल्म संगीत की श्रृंखला में अगला गीत आप सुनेंगे साथिया फिल्म से KK की आवाज़ में, जिसके बोल लिखे हैं गुलजार ने और संगीत दिया है AR रहमान ने।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में अभी आपने सुना एक रिश्ता फिल्म का ये गीत। फिल्म संगीत की श्रृंखला में अगला गीत आप सुनेंगे दिल है तुम्हारा फिल्म से, अलका याग्निक और कुमार शानू उदित नारायण की आवाज़ों में।

अभी आपने सुना उदित नारायण की आवाज़ में देवदास फिल्म का ये गीत, जिसके बोल लिखे थे नुसरत बद्र ने और संगीत दिया था इस्माइल दरबार ने। श्रोताओं, फिल्म संगीत की श्रृंखला में अगला गीत सुनेंगे आप सोनू निगम की आवाज़ में दीवाना एल्बम से, जिसके बोल लिखे हैं फैज़ अनवार ने और संगीत दिया है साजिद वाजिद ने।

सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में अभी आपने सुना कभी अलविदा ना कहना फिल्म से ये गीत, जिसके बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने और संगीत दिया था शंकर एहसान लॉय ने। श्रोताओं, फिल्म संगीत की इस श्रृंखला में अगला गीत आप सुनेंगे इश्क विश्क फिल्म से अलका याग्निक की आवाज़ में, जिसके बोल लिखे हैं समीर ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

श्रोताओं, अभी आपने सुना रंग दे बसंती फिल्म से मधुश्री और नरेश अय्यर की आवाज़ों में ये गीत, जिसके बोल लिखे थे प्रसून जोशी ने और संगीत दिया था AR रहमान ने। फिल्म संगीत की श्रृंखला में अगला गीत आप सुनेंगे वीर ज़ारा फिल्म से उदित नारायण की आवाज़ में, जिसके बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है मदन मोहन ने।

लीजिए श्रोताओं, अब चलते हैं फिल्म संगीत की श्रृंखला के अंतिम गीत की ओर, जो कि है चलते चलते फिल्म से अभिजीत की आवाज़ में, जिसके बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है आदेश श्रीवास्तव ने।

अभिजीत और साथियों के गाए चलते चलते फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ और दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। इस समय शाम के 5 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है युवा साथियों के लिए उनका कार्यक्रम युववाणी।

0: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाएं समाधान।
3: कल सुबह 9:15 पर सुनिए कार्यक्रम फिट एंड फाइन। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर, टॉक रोड, टॉक फाटक, गांधीनगर, जयपुर।
4: नमस्कार युवा साथियों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी और मैं हूँ आपकी अपनी ऐश्वर्या। दोस्तों, आजादी का मत

मतलब सिर्फ एक तारीख नहीं, आज़ादी का मतलब है अपने फैसले खुद लेने का अधिकार, अपनी पहचान पर गर्व और अपने भविष्य को खुद गढ़ने का हौसला। 15 अगस्त को हम भारत की स्वतंत्रता का जश्न मनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसके अगले ही दिन यानी 16 अगस्त का भी दिन भारत के लिए इतिहास में एक खास महत्व है। आज हम बात करेंगे दी ज्यूर ट्रांसफ़र डे की, एक ऐसे ऐतिहासिक दिन की जो हमें बताता है कि आज़ादी और राष्ट्रीय एकीकरण की यात्रा कितनी लंबी और महत्वपूर्ण रही है। उससे पहले हम सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

दोस्तों, 16 अगस्त को पुदुचेरी में दी जून ट्रांसफ़र डे मनाया जाता है। साल 1962 में इसी दिन पुदुचेरी का फ्रांस से भारत में कानूनी रूप से विलय हुआ था। अब सवाल है कि इस दिन का युवाओं से क्या संबंध है? तो दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी देश की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। हमारे पूर्वजों ने देश की आज़ादी और एकता के लिए संघर्ष किया, लेकिन अब देश को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी हमारी युवाओं की है। आज हम ये समझना होगा कि देशभक्ति केवल तिरंगा लहराने या राष्ट्रगान गाने तक सीमित नहीं है। देशभक्ति का मतलब है ईमानदारी से पढ़ाई करना, अपने काम को पूरी जिम्मेदारी से करना, संविधान और कानून का सम्मान करना। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं अब।

0: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इस सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
3: आजादी के बाद अगली उड़ान युवा और डिजिटल इंडिया। दोस्तों आज की दुनिया में टेक्नो

टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। एक स्मार्टफोन से हम पढ़ाई कर सकते हैं, नई स्किल सीख सकते हैं, दुनिया भर की जानकारी हासिल कर सकते हैं और अपने टैलेंट को लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, टेक्नोलॉजी को अपॉर्चुनिटी में बदलना स्मार्ट यूथ की पहचान है। अगर आपको कोडिंग पसंद है, सीखिए। अगर आपको राइटिंग पसंद है तो सीखिए। अगर बिजनेस का आइडिया है तो उस पर काम कीजिए। अगर कोई नया हुनर सीखना चाहते हैं, आज ही शुरुआत कीजिए। क्योंकि आज के समय में एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है, डिग्री के साथ स्किल्स भी ज़रूरी है। एक छोटी सी बात, मान लीजिए आपके पास रोज़ सिर्फ एक घंटा है। अगर आप उस एक घंटे को बिना सोचे सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग में खर्च करते हैं तो दिन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वही एक घंटा अगर आप कोई नई स्किल सीखने में लगाते हैं तो कुछ महीनों बाद आपके पास एक नया टैलेंट हो सकता है। यानी आपका एक घंटा आपकी डिजिटल बदल सकता है। जब आप अपनी पढ़ाई ईमानदारी से करते हैं, जब आप अपने स्किल्स बढ़ाते हैं, जब आप ऑनलाइन फ्रॉड और फेक न्यूज़ से समाधान रहते हैं, जब आप टेक्नोलॉजी का रिस्पॉन्सिबल इस्तेमाल करते हैं, तब आप भी देश के विकास में अपना योगदान दे रहे होते हैं। याद रखिए, देश की अगली उड़ान बल्कि किसी युवा से आइडिया से भी निकाल सकते हैं। इसी के साथ सुनते हैं हमारा अगला गाना।

दोस्तों, हमारी आज की रोजगार सूचना है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद खास है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI ने जूनियर एसोसिएट यानी क्लर्क के पदों पर भर्ती का अवसर दिया है। इस भर्ती के तहत कुल 9,766 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा 20 से 28 वर्ष निर्धारित की गई है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 है। इस भर्ती की पूरी जानकारी और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए SBI की आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर जाकर विजिट कर सकते हैं।

दोस्तों, सफलता हर व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। हर कोई अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, अपनी पहचान बनाना चाहता है और अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। लेकिन सफलता की राह हमेशा आसान नहीं होती। इस राह में अनेक कठिनाइयां, असफलताएं और चुनौतियां आती है। ऐसे समय में जो शक्ति हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, वह है हमारा आत्मविश्वास। दोस्तों, हमेशा अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए। इसी के साथ सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

दोस्तों, आज का युववाणी कार्यक्रम आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए अंदाज़ में।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ और दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। इस समय शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। यह आवाज है लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है फकीरा।

कन्यादान फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म संगीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। ये आवाज़ है मुकेश और कंचन की। फिल्म का नाम है धर्मात्मा।

0: सावन को आने दो। जी हाँ, ये था फिल्म का नाम और आवाज़ थी यशुदास की। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।
1: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
2: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
3: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
0: लीजिए प्रस्तुत है हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा हम दिल्ली से रिले करेंगे रात 10 बजे। दिल्ली से ही हम रिले करेंगे नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात 9:30 पर।

शाम 7 बजे होगा कार्यक्रम ग्राम भारती, जिसमें आज आप सुनेंगे बातचीत। विशेषज्ञ मेहमान होंगे डॉक्टर अभिषेक गुप्ता और बातचीत का विषय होगा पशुओं में परंजीवी प्रबंधन और भ्रांतियां। अलावा इसके आप लोक संगीत, बाजार भाव और मौसम की जानकारी भी सुनेंगे। खेतीबाड़ी कार्यक्रम होगा शाम को 7:30 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे बातचीत फसलों में समन्वित कीट और रोग प्रबंधन विषय पर। विशेषज्ञ मेहमान होंगे मुकेश कुमार शर्मा। अलावा इसके आप लोक संगीत, बाजार भाव और मौसम की जानकारी भी सुनेंगे। फिल्म संगीत आप हमारे केंद्र से सुनेंगे शाम 6:05 पर और रात 8 बजे। ये थी हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। इस समय शाम के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। उन्होंने आज राजस्थान के अलवर में कहा कि केंद्र सरकार इन वर्गों पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने राज्य के 17 जिलों में 6400 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।
2: किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए हर साल एक योजना घोषित की। 14 से लेकर 26 तक एक भी साल ऐसा नहीं गया है कि इन्होंने किसानों के लिए कोई बड़ी योजना जाहिर न की हो।
1: इस अवसर पर गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में सीधे धनराशि अंतरित की। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। इससे राजौरी, पुंछ और नौशेरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। कालीधर रेंज से होकर बनाई गई ये सुरंग लगभग 3 किलोमीटर लंबी है। इस सुरंग की मदद से यात्रा की दूरी लगभग 13 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी काफी कम होगा। लगभग 600 करोड़ रुपये की लागत से बनी ये सुरंग अभी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सिर्फ हल्के वाहनों के लिए खुली रहेगी। भारी वाहनों, बसों और मालवाहक वाहनों को आवागमन की अनुमति निर्माण कार्य पूरा होने के बाद दी जाएगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉ. पेमा सानी चंद्रशेखर ने

0: आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी क्षेत्रीय पुस्तकालय के पुनर्निर्माण की घोषणा की। डॉक्टर पेमा सानी ने कहा कि ब्रिटिश काल में 1915 में स्थापित इस पुस्तकालय से कई पीढ़ियों के विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इस कार्य के लिए डॉक्टर पेमा सानी और जिलाधिकारी साई कांत वर्मा की उपस्थिति में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए यूजीसी नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इंडोनेशिया के फ्लोरेस तट के पास कल सुबह आए 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत में 14 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की गई है। ये स्थिति 28 अगस्त तक प्रभावी रहेगी। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार भूकंप में 51 लोगों की मौत हो गई और 113 लोग घायल हैं। गोल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन पहली पारी में ताजा समाचार मिलने तक 9 विकेट पर 460 रन बना लिए हैं। बारिश के कारण आज पहले और दूसरे सत्र का खेल नहीं हो सका। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज और दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। इस समय शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

आनंद बख्शी का लिखा गीत अभी आपने सुना। संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, आवाज़ें थी किशोर कुमार और आशा भोंसले की, और फिल्म का नाम था राम बलराम। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। यह आकाशवाणी का जयपुर अजमेर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिले की चिट्ठी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा नाम मुनिया भाई राठिया है, मैं ग्राम केरा कछार से हूं। 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 93,000 का वित्तीय राशि मिला खरीफ फसल में, कि फसल बीमा जरूर कराएं ताकि फसल में जो नुकसान होता है उसके लिए सहायता मिल सके। फसल बीमा कराना बहुत जरूरी।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
6: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है
7: तो लेन देन
6: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
7: ओ,
6: जैसे UPI से।
7: अच्छा।
6: हाँ, और सुनो, एक और नियम है।
7: वो क्या है मम्मी जी?
6: तुम्हारी मुँह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
7: आम भी ना मम्मी जी।
8: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
9: हर लेन देन अब है आसान।
10: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
11: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
10: और लाइट बिल के,
11: अब 0 रुपए कैसे दूं?
10: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
11: पक्का।
12: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
13: हर घर सूर्य घर।
14: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आज विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को याद किया गया। राज्य के नगर निकायों के चुनाव के लिए वार्ड आरक्षण लॉटरी कल निकाली जाएगी। और प्रदेश में बारिश के दौर में कमी, 19 अगस्त से पूर्वी राजस्थान में बरसात की गतिविधियां फिर से बढ़ने के आसार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता, और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान को 12,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। श्री शाह ने चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में आयोजित कार्यक्रम में 5,659 करोड़ रुपए के 944 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इनमें 15 जिलों के विकास कार्य शामिल है। इस अवसर पर उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत 1,500 गांवों के लिए

0: किसान पहले पानी की कमी के लिए जाना जाता था, लेकिन भजनलाल सरकार ने 3 बड़े जल समझौते कर प्रदेशवासियों की प्यास बुझाने का काम किया है।
1: राजस्थान को पानी की कमी के लिए जाना जाता था, भजनलाल जी ने 3 बड़े समझौते कर आधे राजस्थान की प्यास बुझाने का काम हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने किया है। लगभग लगभग एक ही योजना से 3 करोड़ लोगों के प्यास बुझाने का काम होगा, और बाकी 2 योजना से भी कुछ कॉमन भी है, मगर 2.5 करोड़ और लोगों का प्यास बुझाने का काम होगा।
0: कार्यक्रम को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी संबोधित किया। चित्तौड़गढ़ के बाद केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री अलवर पहुंचे। वहां से श्री शाह ने प्रदेश की 17 जिलों के लिए 6,453 करोड़ रुपए के 954 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें अलवर जिले में 200 करोड़ रुपए की लागत वाले सरस डेयरी के नए प्लांट का शिलान्यास और अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण शामिल है। अलवर के विजयनगर ग्राउंड में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार इन वर्गों पर विशेष ध्यान दे रही है। इसी कड़ी में अलवर में सरस डेयरी प्लांट पशुपालकों में विश्वास को आगे बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण कदम है।
1: आज अलवर में सरस डेयरी के नए प्लांट का शिलान्यास पशुपालक भाइयों में विश्वास को आगे बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण कदम है। यह आधुनिक प्लांट के निर्माण से दूध के प्रसंस्करण की क्षमता बढ़ेगी, दुग्ध उत्पादनों को बेहतर बाजार मिलेंगे। आज विभिन्न संघों के डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट का, कैटल फील्ड प्लांट का लोकार्पण भी आपने किया है। 4 केंद्रीय सहकारी बैंकों की आपने घोषणा की है। इन बैंकों के गठन से इन जिलों में भाई बहनों को शून्य ब्याज पर फसली ऋण बीमा भी मिलेगा।
0: श्री शाह ने मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के तहत प्रदेश की 10,548 नव नियुक्त कर्मचारियों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र प्रदान किए। वहीं प्रदेश के 66,74,000 लाभार्थी किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की 6ठी किस्त का DBT के माध्यम से हस्तांतरण किया गया। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित श्री वाजपेयी के स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया संदेश में श्री वाजपेयी को असाधारण, दूरदर्शी और उत्कृष्ट राजनेता बताते हुए कहा कि अटल जी ने अपना जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित कर दिया। इधर प्रदेश में भी विभिन्न स्थानों पर कई कार्यक्रमों के माध्यम से पूर्व प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी को याद किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में अटल गौरव स्मृति समारोह में कहा कि लोकतांत्रिक गरिमा के प्रतीक और राष्ट्र निर्माण के शिल्पकार अटल जी का जीवन आज भी राष्ट्र नीति की आधारशिला है।
1: वाजपेयी जी देश के सबसे महान नेताओं में से एक थे। उनके कुशल नेतृत्व में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण 1999 में हुआ, 98 में हुआ और 1999 कारगिल का युद्ध जीता। अटल जी के देश को एक सूत्र में परोने के लिए इस संकल्प को गति देते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाजपेयी जी के जन्म दिवस 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया।
0: भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत आज जोधपुर प्रवास पर रहे। उन्होंने जोधपुर के जिला न्यायालय परिसर में 60 कोर्ट क्षमता वाले नए 7 मंजिला भवन का उद्घाटन किया और नए हाईकोर्ट गेस्ट हाउस की आधारशिला रखी। जस्टिस सूर्यकांत ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भी भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कानून बंद किला नहीं बल्कि जीवंत और खुला मंच होना चाहिए, जहां हर नागरिक की पहुंच और सुनवाई हो सके। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी के 176 विद्यार्थियों को उपाधियां दी गई। वहीं मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश ने लीगल टेक्नोलॉजी एंड इट्स रोड मैप विषय पर आयोजित वाइस चांसलर्स कॉन्क्लेव का भी उद्घाटन किया।

0: इस कॉन्क्लेव में AI और आधुनिक तकनीकों के समुचित प्रयोग और विधि पाठ्यक्रमों को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाने पर जोर दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राज्य में नगरीय निकायों के चुनाव के लिए वार्ड आरक्षण लॉटरी कल निकाली जाएगी। जिलों में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के वार्डों का आरक्षण कलेक्टर के स्तर पर किया जाएगा। जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों सहित जिले की नगर परिषद और पालिकाओं के वार्डों की लॉटरी को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं परसों ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच पदों के आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी। सरपंच और वार्ड पंचों की प्रक्रिया उपखंड स्तर पर और जिला परिषद तथा समिति सदस्यों की प्रक्रिया कलेक्ट्रेट सभागार में होगी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आज डीडवाना में हॉस्पिटल चौराहे पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल का जीवन संघर्षों से भरा हुआ रहा, लेकिन उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में रहकर भी अपना जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। राज्यपाल ने युवाओं से पंडित दीनदयाल के विचारों को अपनाने का आह्वान किया। राज्यपाल लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित भी किया। प्रदेश में मॉनसून की बारिश के दौर में कमी आई है। हालांकि मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 13 जिलों में बरसात का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच पश्चिमी स्थानों पर बारिश का दौर धीमा पड़ने से गर्मी और उमस का असर बढ़ गया है। विभाग ने कल और परसों राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहने का अनुमान जताया है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 19 अगस्त से एक बार फिर पूर्वी राजस्थान के जिलों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी के आसार हैं।
1: मानसून ट्रफ लाइन अपने सामान्य अवस्था से उत्तर की ओर से होकर गुजर रही है। आगामी 4-5 दिन पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के ज्यादातर इलाकों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर, इसके अलावा कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं 19 से 21 अगस्त के दौरान पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में मध्यम से तेज बारिश होने की भी संभावना है।
0: राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने साइबर कुश्ती 2026 नामक एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और AI हैकेथॉन की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा आकलन में मानवीय निर्णय क्षमता का परीक्षण और उसे मान्यता देना है। साइबर कुश्ती के लिए अगले महीने की 10 तारीख तक पंजीकरण जारी रहेगा। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि इसमें भागीदारी निःशुल्क है और 3 सदस्यीय टीमों में विद्यार्थी और शोधकर्ता भाग ले सकते हैं। विजेता टीम को साइबर केसरी 2026 की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा और उन्हें पारंपरिक गदा भेंट की जाएगी। उपविजेताओं को रुस्तम और पहलवान की उपाधि से नवाजा जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आज विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को याद किया गया। राज्य के नगर निकायों के चुनाव के लिए वार्ड आरक्षण लॉटरी कल निकाली जाएगी और प्रदेश में बारिश के दौर में कमी, 19 अगस्त से पूर्वी राजस्थान में बरसात की गतिविधियां फिर से बढ़ने के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से झुंझुनू जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं संदीप केडिया। चिट्ठी में सबसे पहले बात स्वतंत्रता दिवस समारोह की। झुंझुनू के स्वर्ण जयंती स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। समारोह में राजस्थान पुलिस, होमगार्ड, NCC, महिला पुलिस, स्काउट और

0: एड के दलों ने मार्च पास्ट में भाग लिया। स्कूली विद्यार्थियों ने पीटी प्रदर्शन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और बैंड वादन से सभी का मन मोह लिया। समारोह में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर शहीदों के परिवारों का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रगान के साथ राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर अजय आर्य ने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का प्रदेशवासियों के नाम संदेश पढ़कर सुनाया। जिले के अन्य शहरों, कस्बों और गांवों में भी स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर झुंझुनू के स्काउट्स मैदान में विभाजन विभीषिका संगोष्ठी और युवाओं से संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में नगरीय निकाय और स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने भी शिरकत की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, इतिहास की सही जानकारी युवाओं को स्वतंत्रता के वास्तविक महत्व से परिचित कराती है और राष्ट्र प्रेम, समर्पण तथा त्याग की भावना को मजबूत करती है। अब बात करते हैं आस्था और परंपरा की। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल लोहारगल धाम में हरियाली अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। अरावली की सुरम्य वादियों में स्थित सूर्य कुंड में हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। श्रद्धालुओं ने कुंड में स्नान के बाद गोमुख की पवित्र जलधारा में पूजा अर्चना की। कांवड़ियों और श्रद्धालुओं का लगातार लोहारगल धाम में आवागमन बना हुआ है। वहीं तीज का पर्व भी उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। पिछले दिनों स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मातृ और शिशु स्वास्थ्य पर विशेष जोर दिया गया। CMHO डॉ. छोटेलाल गुर्जर ने गर्भवती महिलाओं की जांच, ANC पंजीकरण और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की निगरानी में लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए। RCHO डॉक्टर दयानंद सिंह ने हर गर्भवती महिला का 12 सप्ताह से पहले ANC पंजीकरण सुनिश्चित करने और कम से कम 8 ANC चेकअप कराने पर जोर दिया। बच्चों की सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे स्पर्श अभियान के तहत 20 वॉलंटियर्स ने 21 विद्यालयों में 44 जागरूकता सत्र आयोजित किए गए और करीब 18,000 विद्यार्थियों और शिक्षकों से संवाद किया। सुरक्षित असुरक्षित स्पर्श, व्यक्तिगत सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, आत्मविश्वास और जीवन कौशल जैसे विषयों पर बच्चों को जागरूक किया गया। अभियान के प्रभारी सचिव डॉ. नवीन जैन ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा केवल उनकी नहीं बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता डॉ. राजेंद्र सिंह ने सिंघानिया विश्वविद्यालय परिसर से जल संचय जन अभियान की शुरुआत की। जोहड़ स्थल पर तालाब पूजन, 300 से अधिक पौधरोपण और जल संरक्षण पर संवाद हुआ। डॉक्टर सिंह ने जल स्रोतों के पुनरुद्धार, चेक डैम निर्माण, अरावली संरक्षण और पारंपरिक जल संरचनाओं की रक्षा पर जोर दिया। उन्होंने शेखावाटी क्षेत्र के लोगों से जल संरक्षण के लिए जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। RUIDP के 5वें चरण के तहत झुंझुनू, चिड़ावा, नवलगढ़, मंडावा और खेतड़ी में 129,84,00,000 रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्य किए जाएंगे। अपशिष्ट जल प्रबंधन, ड्रेनेज, बाढ़ प्रबंधन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, विरासत संरक्षण और पर्यटन विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। परियोजनाओं को अंतिम रूप देने से पहले आमजन और विभिन्न वर्गों से सुझाव भी लिए गए हैं। अंगदान जागरूकता में झुंझुनू ने प्रदेश में दूसरा और देश में तीसरा स्थान हासिल कर जिले का गौरव बढ़ाया है। 31 जुलाई तक जिले में 19,086 नागरिकों ने अंगदान का संकल्प लिया। इस उपलब्धि के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम को राज्य स्तरीय समारोह में सम्मानित किया गया। इसी के साथ झुंझुनू जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर, अजमेर उपेश सिंझा बगतरा, प्रादेशिक समाचार। पहली खास समाचार। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कयो, साल 2047 ताई भारत ने पूर्ण विकसित राष्ट्र बनावण सारू नौजवान, गरीब, महिलावां और काश्तकारां ने मजबूत बनावणो जरूरी। पहली रात प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पुण्यतिथि माथे आज न्यारा न्यारा कार्यक्रम री मार्फत राष्ट्र निर्माण में वारा योगदान ने याद करी जिया। राज्य रा नगर निकाय रा चुनाव सारू वार्ड आरक्षण लॉटरी काले निकाली जायला। और प्रदेश में बिरखारा दौर में कमी, 19 अगस्त अगुणी राजस्थान।

0: में बिरखारी गतिविधियां फेरू बदन रा आसार। समाचार रे साथ है मैं शंभू सिंह और अब समाचार विगतवार। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राज्य रा 12,000 करोड़ रुपयों बतीरा कमारी सौगात दी। श्री शाह चित्तौड़गढ़ रा निम्बाहेड़ा माय विया कार्यक्रम माय 5,659 करोड़ रुपया रा 944 विकास कमारी नींव धरी और लोकार्पण करियो। इन माय 15 जिला रा विकास रा काम भेड़ा है। ई मौके वणा जल जीवन मिशन रे तहत 1,500 गांव सारू हर घर नल से जल योजना री शुरुआत करी। श्री शाह पहली रा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अष्ट धातु बनी 21 फुट ऊंची मूर्त और मिनी अटल स्मारक रोई अनावरण करियो। श्री शाह कहो कि अटल जी हर गांव ने सड़क जोड़न रो काम करियो। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना रे तहत नेशनल हाईवे बनाया। देश रा आदिवासियों सारू पहली बार जनजातीय कल्याण मंत्रालय बनाई जो। वणा कहो कि केंद्र और राज्य सरकार री कोशिशों राजस्थान में विकास रा नुआ आयाम थापित वे रिया है। प्रदेश पानी री कमी सारू जानियो जावतो हो फेरो भजनलाल सरकार 3 मोटा जल समझौता करने प्रदेशवासियों री प्यास बुझाउन रो काम करियो है।
1: राजस्थान को पानी की कमी के लिए जाना जाता था। भजनलाल जी ने 3 बड़े समझौते कर आधे राजस्थान की प्यास बुझाने का काम हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने किया है। लगभग एक ही योजना से 3 करोड़ लोगों के प्यास बुझाने का काम होगा और बाकी 2 योजना से भी कुछ कॉमन भी है मगर 2.5 करोड़ और लोगों का प्यास बुझाने का काम होगा।
0: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्माई भाषण करियो। चित्तौड़गढ़ रे पछे केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री अलवर पूग्या वठे श्री शाह प्रदेश रा 17 जिला सारू 6,453 करोड़ रुपया रा 954 विकास कामारो लोकार्पण करियो और नींव धरी। इन माय अलवर जिला में 200 करोड़ रुपया री लागत वाला सरस डेयरी रा नुआ प्लांट री नींव अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज रो लोकार्पण भेड़ो है। अलवर रा विजयनगर ग्राउंड में विया कार्यक्रम में बोलता श्री शाह कहो कि साल 2047 ताई भारत ने पूर्ण विकसित राष्ट्र बनावण सारू नौजवान गरीब महिलावां और काश्तकारां ने मजबूत बनावणो जरूरी है। वणा कहो कि केंद्र में मोदी सरकार आ तबका माथे खास ध्यान दे रही है। ई कड़ी में अलवर में सरस डेयरी प्लांट मवेशी पालका में भरोसा ने आगे बढ़ावण वालो महत्वपूर्ण कदम है।
1: आज अलवर में सरस डेयरी के नए प्लांट का शिलान्यास पशुपालक भाइयों में विश्वास को आगे बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण कदम है। यह आधुनिक प्लांट के निर्माण से दूध के प्रसंस्करण की क्षमता बढ़ेगी, दुग्ध उत्पादनों को बेहतर बाजार मिलेंगे। आज विभिन्न संघों के डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट का कैटल फील्ड प्लांट का लोकार्पण भी आपने किया है। 4 केंद्रीय सहकारी बैंकों की आपने घोषणा की है। इन बैंकों के गठन से इन जिलों में भाई बहनों को 0 ब्याज पर फसली ऋण बीमा भी मिलेगा।
0: श्री शाह मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव रे तहत प्रदेश रा 10,548 नवा नियुक्त कर्मचारियों ने सरकारी नौकरी रा नियुक्ति पाना सौंपया। वठी प्रदेश रा 66,74,000 लाभार्थी काश्तकारों ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि री 6 किस्त ने DBT री मार्फत भेजी जिया। देश आज पहली रा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पुण्यतिथि माथे वाने श्रद्धा सुमन अर्पण कर रिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में श्री वाजपेयी रा स्मारक सदैव अटल माथे पुष्पांजलि अर्पण करी। प्रधानमंत्री आपरा सोशल मीडिया संदेश में श्री वाजपेयी ने असाधारण दूरदर्शी और ठावा राजनेता बतावता कहो कि अटल जी आपरो जीवन देश सेवा में समर्पित कर दियो। अठीने प्रदेश में न्यारी ने ठोड़ा कई कार्यक्रमों की मार्फत पहली रा प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी ने याद कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आपरा संदेश माय कहो कि लोकतांत्रिक गरिमा रा प्रतीक और राष्ट्र निर्माण रा शिल्पकार अटल जी रो जीवन आज ही राष्ट्र नीति री आधारशिला है।
1: वाजपेयी जी देश के सबसे महान नेताओं में से एक थे। उनके कुशल नेतृत्व में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण 1999 में हुआ, 98 में हुआ और 1999 में कारगिल का युद्ध जीता। अटल जी के देश को एक सूत्र में

0: होने के लिए इस संकल्प को गति देते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाजपेयी जी के जन्म दिवस 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया।
1: भारत रा मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत आज जोधपुर प्रवास माथे रिया। ई दौरान वणा जोधपुरा जिला अदालत परिसर में 60 कोर्ट क्षमता वाला नुआ 7 मंजिला भवन रो उद्घाटन करियो और नुआ हाईकोर्ट गेस्ट हाउस री नींव धरी। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रा दीक्षांत जलसा में हिस्सो लियो। ई मौके वणा कहो कि कानून बंद किलो नहीं है बल्कि जीवंत और खुलो मंच वेणु चाहिए जटे हर रहवासी री पहुँच और सुनवाई वह सके। जलसा में स्नातक स्नातकोत्तर और PhD रा 176 पड़ेसरा ने सनद दिरीजी वठे होशियार पड़ेसरा ने सोना रा तमगाई दिरीजिया। इनरे अलावा मुख्य न्यायाधीश लीगल टेक्नोलॉजी एंड इट्स रोडमैप मुद्दा माथे राखी जी वाइस चांसलर्स कॉन्क्लेव रो ही उद्घाटन करियो। ई कॉन्क्लेव में AI और आधुनिक तकनीका रा वाजिब उपयोग कानूनी कोर्स ने भविष्य री जरूरत मुजब बनावण माथे जोर दिरीजियो। ए समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रिया हो। राज्य रा नगरीय निकाय रा चुनाव सारू वार्ड आरक्षण लॉटरी काले निकाली जायला। जिला में नगर निगम नगर परिषद और नगर पालिकाओं रा वार्ड आरक्षण कलेक्टर थर माथे करिया जायला। जयपुर नगर निगम रा 150 वार्ड समेत जिलारी नगर परिषद और पालिकाओं रा वार्ड री लॉटरी ने लेर सगली तैयारियां पूरी कर लीजी है। वठी परसों ग्राम पंचायत में सरपंच और वार्ड पंच ओहदारी लॉटरी निकाली जायला। सरपंच और वार्ड पंच री प्रक्रिया उपखंड थर माथे और जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य री प्रक्रिया कलेक्ट्रेट सभागार माए वेला। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आज डीडवाणा में हॉस्पिटल चौराया माथे पंडित दीनदयाल उपाध्याय री मूर्त रो अनावरण करियो। ई मौके जलसा में बोलता वणा कहो कि पंडित दीनदयाल रो जीवन संघर्षों भरियो रियो फिर वणा खिलाफ हालात माए रह आपरी जिंदगी देश सारू समर्पित कर दी। राज्यपाल नौजवानों पंडित दीनदयाल उपाध्याय रा विचारा ने अपनावण री अरज करी। राज्यपाल लोकतंत्र सेनानिया ने सम्मानित करिया। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान साइबर कुश्ती 2026 नाम री एक साइबर सुरक्षा और AI हैकेथॉन री शुरुआत करी है। इनरो मकसद साइबर सुरक्षा आकलन माए मानवीय फैसला बूंतारो परीक्षण और उनने मान्यता देवे है। साइबर कुश्ती सारू आवता मीनारी 10 तारीख तई पंजीकरण चालता रहेला। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय बतायो कि इन माय भागीदारी मुफ्त है और 3 सदस्य री टीम माय पड़ेसर और शोधकर्ता हिस्सो ले सके है। जीतन वाली टीम ने साइबर केसरी 2026 री सनद सम्मानित करया जायला और वाने रीत मुजब गदा भेंट करी जायला। उप विजेताओं ने रोस्तम और पहलवान री सनद नवाजा जायला। अरबे मौसम प्रदेश माय मानसूनी बिरखारा दौर माय कमी आई है। फिर वहीं मौसम महकमो आज प्रदेश रा 13 जिला में बिरखारो येलो अलर्ट काढ़ियो है। ई बीच राज्य रा आथोणी हल्का में बिरखारो दौर धीमो पड़णु गर्मी और उमस रो असर बद गयो है। महकमो काले और परसों राज्य रा घणकरा हल्का में मौसम साफ रहण री आस जताई है। फिर वहीं 19 अगस्त एक और फेरू अगुणी राजस्थान रा जिला में बिरखारी गतिविधियां में बढ़वार री आस है।
2: मानसून ट्रफ लाइन अपने सामान्य अवस्था से उत्तर की ओर से होकर गुजर रही है। आगामी 4-5 दिन पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के ज्यादातर इलाकों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि पूर्वी राजस्थान के भरतपुर जयपुर इसके अलावा कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं 19 से 21 अगस्त के दौरान पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में मध्यम से तहेज तेज बारिश होने की भी संभावना है।
1: राज्य में न्यारी न्यारी ठोड़ा बिरखाओं जलाशय में पानी री आवक वेरी है। जल संसाधन महकमा मुजब प्रदेश रा छोटा मोटा 693 बंदा मायू 38 बंदा लबालब है वठे 447 बंदा अध भरिया है। राजधानी जयपुर में आज बूढ़ी तीजरी सवारी निकाली जा रही है। बैंड बाजा और साई लवाज मारे साथ है जनानी ड्योडियों आज सवारी रवाना हुई जो परकोटा माए न्यारा न्यारा मार्गों वेता निकल रही है। सवारी माए लोक कलाकार आपरी मोवनी प्रस्तुतियां दे रिया है। देशी विदेशी सैलानियारी घनी तादाद ने देखता प्रशासन यातायात और हिफाजत रा खास बंदोबस्त करिया है। ध्यान जोग है कि काले हरियाली तीज रे मौके ही साई लवाजमा रे साथ तीज मातारी सवारी निकाली जी ही।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त दीतवार ने आकाशवाणी प्रसारित किया जाने वाला खास कार्यक्रम मन की बात में आपरा विचार बतावेला। आ हर महीना प्रसारित किया जाने वाला ये कार्यक्रम री 137वीं कड़ी वेला। इस हारू आप ही 28 अगस्त ताई मुफ्त नंबर 1800-1178-00 माथे आप री राय भेज सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम री मार्फती आप विचार भेज सको हो। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA इस साल जून महीना में भी UGC नेट परीक्षा रा 84 विषयों रा आखिरी उत्तर कुंजी काट दी है। उम्मीदवार 18 अगस्त ताई आ उत्तर ने चुनौती देवन सारू UGC नेट पोर्टल माथे ऑनलाइन अर्जी दे सके है। नबे आखिर में खास समाचार आप एक कर फेरों सुन ले रहो। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कहो साल 2047 ताई भारत ने पूर्ण विकसित राष्ट्र बनावन सारू नौजवान गरीब महिलावां और काश्तकार ने मजबूत बनावनो जरूरी। पहली रा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पुण्यतिथि माथे आज न्यारा न्यारा कार्यक्रमारी मार्फत राष्ट्र निर्माण में वारा योगदान ने याद करी ज्या। राज्य रा नगर निकाया रा चुनाव सारू वार्ड लॉटरी काले निकाली जायला। प्रदेश में बिरखारा दौर में कमी 19 अगस्त अगुणी राजस्थान में बिरखारी गतिविधियां फिर बढ़न रहा आसार। नए साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो मारो आगलो समाचार बुलेटिन काले सवारा 9 बजे हिंदी में प्रसारित करो जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलो हर्ट्ज, एफएम बैंड 101.2 मेगा हर्ट्ज और दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। जयपुर अजमेर के अलावा आप हमारे कार्यक्रम आकाशवाणी डूंगरपुर, नाथद्वारा, करौली, भरतपुर, झुंझुनू, अनूपगढ़ और कोटपुतली केंद्रों से भी सुन रहे हैं। इस समय शाम के 7 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम भारती।

0: ग्राम भारती सुन वाला सगला श्रोतावा ने करसा भाई बहना ने और दूर दराज गांव ढाली में चौपाल सुनती मारी सगली सखी सहेलिया ने मधु नायक रो घणो मोकड़ो राम राम। और विशाल भाई आपने भी खूब खूब राम राम सा।
1: राम राम मधु बहन और सगला ग्राम भारती श्रोतावा ने घना घना राम राम सा।
0: तो विशाल भाई
1: जी सा,
0: बिरखारी जो रुत ई टेम चाल रही है जिन आप भाई चौमासो के वहाँ, हाँ तो ई टाइम जो सबसे चोखो काम है ना अपना करसा भाई बहना के ताई और खास तौर से आपा भी
1: जी,
0: आपा ने भी जी चीज़ को ध्यान रखना चाहिए जी, या जो सहज रूप से आप कर सका हाँ वो है आपना जो आकाश से बिरखा का रूप में जो अमृत टपके है
1: जी
0: बिना आपा के यहाँ सहज रख सका हाँ सहज रूप से, क्योंकि बी में ना तो आपना कोई पियो लाग रहे हो है ना कोई यान की है कि आपा ने बहुत ज़्यादा अथक प्रयास करना पड़ रहे है मेहनत करनी पड़ी है, आपा सहज सरल रूप से बिरखा रो जो पानी है ई को संचय कर सका हाँ और अपनी आवाड़ी जो पीढ़ी है ई के ताई भी ई इमृत ने बचार राख सका हाँ।
1: जी सा, देखो सा सावन को महीनू चाल रहे है और वर्षा की थे बात कर रहे हो, तो आपन भी को जल संरक्षण को सीधो सो अर्थ ओ है कि जटे भी पानी गिरे बिन आपन बटी रोकणु है हर सहेजणु है। इक लिए आपन कोई बहुत बड़ी तकनीक की जरूरत कोनी है, बल्कि आपा छोटा छोटा प्रयासों आपा वर्षा को जल संरक्षण कर सका हाँ। तो देखो सा रूप टॉप हार्वेस्टिंग मतलब आपने घरां के ऊपर स्कूल सोसाइटियां के जगह छतां के माले जकी छत पर जो पानी गिरे है बरसात को बिन आपा पाइप के माध्यम एक बड़ा टैंक में इकट्ठो कर सका हाँ। और ई पानी को उपयोग

0: लोग आपा कपड़ा धोना में, साफ सफाई में और बागवानी में भी कर सका। हाँ
1: बूंद बूंद सु सागर भरे, बूंद बूंद सु खेत, और पानी ने जो सहज रखे वही साचो मिनक। भाई यो आपनो बहुत बड़ो कर्तव्य जो आप बताया हो। भाई जो किसान है
0: जी
1: आपा, जो आम तौर पर जो आपना खेता को आपने जो छता के ऊपर जो वाटर हार्वेस्टिंग वालों आप बताया,
0: जी
1: पर आपनो किसान जो है वो भी आपका खेत कमाई ने ई वर्षा ने संग्रहित कर रख सके है, मेड़ा बना रख सके है। जो आपनी खेत कमाई ने जो छोटी सी मान लो तलाई होवे है, बेरो होवे है, छोटा छोटा सा ना बेरा होवे गावा कमाई ने,
0: बावड़िया
1: बावड़िया होवे है, तो बाकी जो है साफ सफाई कर रखे, कोई कचरो पचरो तो कोनी पड़े भी कमाई ने, है ना। ये कई बार काई होए कि जो छोटा मोटा जीव जानवर होवे है ना,
0: जी
1: बेबी पड़े भी कमाई ने मान लियो मर जावे है, तो यहाँ की कोई गंदगी तो अपनी बावड़ी में या अपना बेरा में कोनी, है ना,
0: साफ
1: तलाई में
0: सफाई
1: कोनी।
0: कर
1: हाँ
0: जी
1: बिल्कुल, साफ सफाई कर रखा ताकि जो वर्षा रूपी जो अमृत है भी ना आप सहज कर रख सका।
0: और देखो सा, आपना जो को वर्षा को जल है वो अगर आप आज संचय कर ला तो आपने पानी हो काल काम वालू। पानी की एक भी बूंद अपन व्यर्थ नहीं जान देनी है, और अपने आसपास के लोगों ने भी जल संरक्षण के प्रति अपन जागरूक करनु है।
1: बिल्कुल, बहुत चौकी आप बात बताया, जागरूक आपा सबने कर रहे हैं। हाँ, और समय समय पर रेडियो का माध्यम से जद भी आपना श्रोतावा सागे आपनी बात होवे है, तो आपा इयान का जो महत्वपूर्ण विषय हुए है यहाँ पर जागरूक आपना लोगों ने करता रहे वहाँ। अब जागरूकता की विशाल भाई आप बात कर रहे हो ना, तो देखो जागरूक थोड़ा सा आपा हुआ कार्यक्रम में, अगर थोड़ा सो सावण को महीनों चाल रहे है ना, एक चोखो सो सुरीलो सो सावण को लोकगीत सुना दे तो किया रेवे।
0: हाँ सुनाओ सर।
1: ठीक है सर, तो

0: आयो आयो रे सावणियों, ढोला आ जाओ। बहुत ही सोहणो सुरीलो सो यो लोकगीत। उम्मीद है आप सगड़ा ने खूब भाई होसी। और देखो, गीत सुनता तका जो अपना आज का विशेषज्ञ है डॉक्टर अभिषेक गुप्ता जी आ गया है। सागे आ गई है चंचल बहन। तो आप चंचल बहन ने ही माइक संभालावा और जिम्मेदारी देवा की ओळखाण कराओ और जानकारी दिलाओ सा।
1: आपने साथ डॉक्टर अभिषेक गुप्ता सहायक आचार्य पशुआ में परजीवी प्रबंधन भ्रांति और तथ्य पर बात कर रहा है। डॉक्टर साहब सेवा पहले तो कार्यक्रम में आप रो घणो मानो स्वागत करा। राम राम सा।
2: राम राम सा।
1: और जयन की आज को आपनो विषय है कि ढांडा में परजीवी प्रबंधन काई भ्रांतियां हैं, काई तथ्य है और आपना जो पशुपालक है वे परजीवियां सु कहीं निपट सके है, एक ही बात आपा कराला। सेवा पहले यो ही जान पहचानला कि परजीवी काई होवे है और आम पशुपालक किया पिछाने काई लक्षण अपना ढांडा में दिखेला।
2: सबसे पहले तो परजीवी की हम बात करें, परजीवी का संक्रमण होने के बाद पशुओं में जो आमतौर पर दिखने वाले लक्षण हैं, जैसे कि बहुत कमज़ोर रहना, खाना ज़्यादा खाने के बाद भी उतनी ताकत शरीर में नहीं आ पाना, उत्पादन का कम होना, डायरिया हो जाना या फिर शरीर में खून की कमी हो जाना, इन सभी लक्षणों को देख के हम पता लगा सकते हैं कि इसमें परजीवी संक्रमण हो चुका है। परजीवी संक्रमण भी दो किस्म से आप देख सकते हैं, एक तो पेट के अंदर पाए जाने वाले कीड़े और एक शरीर के ऊपर मिलने वाले कीड़े। जो शरीर के ऊपर कीड़े मिल रहे हैं वो आप सामने से देख के पहचान पाएंगे, लेकिन जो पेट के अंदर कीड़े हैं उन्हें हमें इन लक्षणों के माध्यम से ही पहचानना पड़ता है। और इसकी जाँच आप अपने करीबी पशु चिकित्सालय में जाकर करवा के और फिर उसका उपचार ले सकते।
1: जी डॉक्टर साहब, बात करा कि लक्षण दिखता ही आपने आम तौर अपना ढांडा ने लेट जानो है, जो ढांडा को अस्पताल है बैठे और बैठे जांच करवानी है और जैया डॉक्टर साहब कहे भैया आपने इको इलाज शुरू करना है। प्रबंधन की बात आपा कर रहे हैं, लक्षण पतो चालगो, अब प्रबंधन की तरीका से करना है, कायम विधि है, यो भी बताओ सा।
2: अपने जानवर को ले जाने की भी जरूरत नहीं है, आप खाली गोबर का सैंपल अगर ले जाके वहाँ पर जांच करवा के रिपोर्ट ले लेंगे तो भी इसका पता लगाया जा सकता है। दूसरा, प्रबंधन में हमें उनकी साफ सफाई का और उनके रख रखाव का बहुत खास ख्याल रखना है। उनके आसपास बहुत ज़्यादा गंदगी इस किस्म की ना हो जिससे मक्खियाँ मच्छर और दूसरे कीड़े आएँ। ये मक्खियाँ मच्छर भी बहुत सारी बीमारियाँ उनके लिए लेके आती हैं और उनको बहुत सारी बीमारियों से संक्रमित कर सकती हैं। उसके अलावा इनके खाने पीने का, इनके गोबर और खाने के किसी तरह से मिक्स होने का या इनके मल मूत्र का किसी खाने वाली चीज़ में मिल जाने का हमें खास ख्याल रखना है, जिसकी वजह से इनका संक्रमण ना हो। बच्चों को खास तौर पर हमें बड़े जानवरों के साथ नहीं रखना, क्योंकि उनसे निकलने वाला जो संक्रमण है वो बच्चों में और ज़्यादा तीव्रता से हो सकता है और उनमें और ज़्यादा तेज़ लक्षण देखने को मिल सकते हैं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, आपा बात कर रहे हैं परजीवियां रो प्रबंधन भी करनो है और बहुत सारी जो भ्रांतियां हैं बाने दूर करता हुआ जो तथ्य है जिन्हें आजकल की भाषा में ज्यादा समझे फैक्ट्स जिन्हें कहवे है, तो वहां पर आपा चला कौन कौन सी भ्रांतियां हैं जो बहुत ज्यादा देखभाल में आवे है और प्रचलन में है, आपने भी सामना करना पड़े है और सटीक तथ्य काई है बताओ सा।
2: देखिए, भ्रांतियों में जैसे कि हमारा ये मानना कि जितनी ज़्यादा हम दवाई दें, कीटनाशक दें, उतना ही असरदार वो इलाज रहेगा। दवाइयाँ ज़्यादा ना तो इंसान के लिए अच्छी हैं और ना ही जानवरों के लिए। सही तरीके से पहले हमें उसके गोबर की जांच करवा

0: और संक्रमण का पता लगा के ही दवाई देनी चाहिए। दूसरा, दवाई हमें हमेशा पशु चिकित्सक की गाइडेंस में देनी चाहिए। और एक और बात की, दवाई देने के बाद हमें कभी भी हमें लगता है कि दवाई दे दी हमने और हम संक्रमण से हमने अपने जानवर को बचा लिया, तो ऐसा नहीं है। जैसे हम सबको पता है, राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पर हर तरह की विविधताएं, आपको वातावरण की विविधताएं देखने को मिलेंगी। उसी हिसाब से बहुत सारे अलग अलग किस्म के संक्रमण भी देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारी दवाइयाँ सभी के सभी परजीवियों पे या कीड़ों पर काम नहीं कर पाती, इसलिए बहुत ज़्यादा दवाई देने से हम जानवर का भी नुकसान कर लेते हैं और अपना भी नुकसान कर लेते हैं। एक बात ये कि जानवर को बार बार दवाई देने से ना ही सिर्फ जानवर का बल्कि उसके उत्पादों का भी नुकसान होता है, तो हमें बहुत ज़्यादा दवाई देनी नहीं है। हमें दवाइयों के साथ साथ इसके प्रबंधन पर ध्यान देना है, जिससे इसकी इन्फेक्शन को कम किया जा सकता है या संक्रमण को कम किया जा सकता है। और उसके अलावा समय समय पर इसकी जांच करवाकर सही दवाई का पता लगाएं। हर बार हम अलग अलग दवाई देंगे जिससे दवाई की मारक क्षमता हमेशा बनी रहेगी। एक ही दवाई को बार बार देने से या कम देने से उसकी मारक क्षमता कम होती है और जानवरों पर असर उसका घट जाता है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात यह भी तो है कि आपन जरूरत से ज्यादा दवाई अपना ढांडा ने दे रहा हाँ और उत्पाद बराबर आपा ले ही रहा हाँ, तो वो जो दवाई को असर है दूध जो आपा ले रहे हाँ, तो दूध में भी आवेलो और वो मिनखा में भी जावेलो।
0: बिल्कुल, ये इसीलिए मैंने आपसे कहा कि हमें बहुत ज़्यादा दवाई नहीं देनी और जो भी हमें दवाई देनी है वो हमें पशु चिकित्सक के गाइडेंस में देनी है। आज का मैं जो सबसे बड़ा हमको मुश्किल जो फेस करनी पड़ती है वो ये कि जब जानवर को हमारे पास लाया जाता है तो 2 या 3 बार उसकी दवाई वो पहले ही किसान करके लाता है। खासकर कीटनाशक की जो दवाई है वो किसान या पशुपालक हैं वो अपने आप से दे रहे हैं। उनको ये बताया गया उस समय के लिए ये दवाई ठीक भी हो सकती है, लेकिन हर बार वही दवाई काम नहीं करती, जिसका पशुपालकों को ज्ञान कम होता है। इसलिए बार बार पशुपालकों से हम ये अनुरोध करते हैं कि जांच करवाएं, उसके बाद ही आप दवाई का, पशु चिकित्सक हैं उनसे पूछने के बाद ही आप उनको दवाई दिलवाएं, वो जानवर के लिए भी, आपके लिए भी और उसके उत्पादन के लिए भी सही रहेगा।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, या तो बात हुई कि मोटी मोटी जो भ्रांतियां हैं कि एक बार दवाई दे दी या कोई एक दवाई डॉक्टर बता दियो बिना जद आपाने लागे जद दे दी, तो या तो गलत बात है ही है। अगर सही तरीका री बात करी जावे, जी में आ जावे है परजीवियों से बिल्कुल निजात मिल सके अपना ढांडा ने और बिल्कुल स्वास्थ्य चोखो हो सके, कई तरीको है और क्यों जरूरी है प्रबंधन करनो परजीवियों रो, यो बताओ सा।
0: प्रबंधन अच्छा अगर होगा तो हम दवाई की मात्रा को घटा सकते हैं और दवाई की मात्रा को घटाने से पशु को भी निजात मिलेगी, उसके उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी और हमें भी दवाइयों वाले उत्पाद नहीं ज़्यादा झेलने पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पशुपालक ये सोच रहे हैं, को ये बताया गया कि आप दवाई दोगे तो आप संक्रमण से निजात पा जाओगे, पर सिर्फ दवाई से संक्रमण से निजात नहीं पाया जा सकता। प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। प्रबंधन के साथ साथ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जानवर के ऊपर शरीर पर पाए जाने वाले जो चीचड़ और इस तरह की बीमारियां हैं, इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, इनको, इनकी रोकथाम बहुत मुश्किल है। मुर्गी पालन अगर इसके साथ में की जाए तो मुर्गी कहीं ना कहीं उस टिक को, उस चीचड़ को खा के पशु का भी लोड कम करती है और अपना भी पेट भर लेती है। बहुत सारी जानवरों के ऊपर दवाइयों का छिड़काव किया जाता है इन चीचड़ों को रोकने के लिए। ज़रूरत से ज़्यादा अगर छिड़काव किया जाएगा तो वो जानवर के लिए भी हानिकारक है, जानवर के साथ में जो दूसरे उनके बच्चे हैं उनके लिए भी हानिकारक है, और दूसरा उनको चाट के और उसका टॉक्सिसिटी होने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। इसलिए इस चीज़ का बहुत खास ख्याल रखना पड़ता है कि दवाइयों के साथ साथ प्रबंधन और इस तरह के नुस्खे, जैसे पानी में पाए जाने वाली जितनी भी परजीवियों के संक्रमण के स्टेजेस हैं उनके लिए बतख पालन किया जा सकता है। बतख पालन उन पानी में उन स्टेजेस को खाएंगे तो वो संक्रमण आगे नहीं फैलेगा। मुर्गी को अगर हम साथ में पालते हैं जहाँ पर चीचड़ और इस तरह के इन्फेक्शन हैं जानवरों के ऊपर, तो मुर्गी उन चीचड़ के इन्फेक्शनों को भी कम करके और अपना पेट भी भर लेगी। तो इस तरह के प्रबंधन को, छोटे छोटे को अपना के हम दवाइयों का इस्तेमाल कम कर सकते हैं।
1: और यो तो बहुत ही बढ़िया बात डॉक्टर साहब बता रहा है कि जब आप पशुपालन कर रहे हैं, आज नवाचारा की बात आप कर रहा हाँ और एक सौ ज्यादा तरीका अपनावा हाँ तरक्की के ताई पीसो कमावा के ताई, तो न सिर्फ आप मुर्गी या बतख पालन कर परजीवियों को खतरो टाल सको हो बल्कि एक अतिरिक्त आमदनी को स्रोत भी आपने मिल जावे है। आपने साथ डॉक्टर अभिषेक गुप्ता सहायक आचार्य पशुआ में परजीवी प्रबंधन भ्रांति और तथ्य पर बात कर रहा है। डॉक्टर साहब तरीका री बात आपा करें।

0: बताया मुर्गी पालन आपा कर सका, हाँ बतख पालन कर सका, हाँ रहबा की पशुओं का बाड़ा की भी कोई विशेष व्यवस्था आपने करनी चाहिए जी, ताकि परजीवियों से आपने थोड़ा सो निजात मिल सके।
1: प्रबंधन में बाड़े का एक बहुत खास रोल है। कैसा बाड़ा हम जानवर को रहने के लिए दे रहे हैं, उसमें जानवर कितना सहज फील कर रहा है, उसी से उसके प्रतिरोधक क्षमता है उसका गठन होगा। अगर जानवर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहे, बहुत ज़्यादा परेशान रहे, तो उसकी बीमारी की प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बहुत घट जाती है, जिसकी वजह से वो जल्दी संक्रमण की चपेट में आ जाता है। तो बाड़े में खुली हवा हो, साफ सफाई हो, अगर हो सके तो बाड़ा नीचे से पक्का करें, जिसकी वजह से ये चीचड़ की कई स्टेजेस हैं, स्टेजेस मतलब जो इनके अंडे, उन अंडों से निकलने वाले बच्चे, बच्चों से बनने वाले निम्फ, ये छोटे छोटे जो अगर कच्चा बाड़ा है तो उस छोटे छोटे खड्डों में, क्रैक्स में ये घुस जाते हैं और वहाँ पर ये अपने आप को बचा के रख लेते हैं दवाइयों से भी और हमारे जो डेली हम साफ सफाई करते हैं उससे भी। तो बहुत ज़्यादा जानवरों पर दवाई अपनाने के बाद भी आप 2 या 3 महीने में फिर से वो चीचड़ का इन्फेक्शन उस पर वापस देखोगे, कारण वही निम्फ जो खड्डे में घुस गया था। पक्का बाड़ा होगा तो साफ सफाई इफेक्टिव रहेगी, इस तरह के खड्डे उनको नहीं मिलेंगे जहाँ पर वो छुप के बैठ जाएं और उसकी वजह से इन्फेक्शन कम किया जा सकता है। तो प्रबंधन में बाड़ों का एक बहुत बड़ा रोल है। दूसरा, बाड़े में हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि छोटे बच्चों का, जिनमें कि ये प्रतिरोधक क्षमता इतनी ज़्यादा नहीं होती, उनको अगर हम बड़ों के साथ रख रहे हैं तो उनमें इन्फेक्शन जो होगी उसकी तीव्रता बड़ों के मुकाबले कई ज़्यादा होगी, तो उनको भी अलग रखना है। तो ये छोटे प्रबंधन के जितने भी मैंने आपको बताए हैं, इनको इस्तेमाल करके हम परजीवी प्रबंधन को और ज़्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं और दवाइयों का इस्तेमाल कम से कम कर सकते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, बाड़ारी प्रबंधन री भी बात करें, खान पीन का प्रबंधन री बात करें, कई तरीका को खानो पीनो देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा जो पशुपालक हो वे कहवे में समय समय पे नमक को पानी पिलावा, हाँ गर्म पानी पिलावा, हाँ जी सुबह रेचक क्रिया बाकी हो जावे है, तो वो सही रहे कहीं?
1: खाने पीने के प्रबंधन के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, जो पशुपालक भारतीय नस्ल के जो पशु रख रहे हैं वो ये जानते हैं कि इनमें इस तरह के जो इन्फेक्शंस हैं, कीड़ों का संक्रमण, ये बहुत कम देखने को, जो मैंने आपको शुरू में जितने भी लक्षण बताए ये भारतीय पशुओं में देखने को बहुत कम मिलेंगे और जिनके पास क्रॉस पशु उनको ज़्यादा मिलेंगे,
0: मतलब देसी नस्ल में कम
1: देसी
0: मिले।
1: देसी नस्ल में कम मिलेंगे। और देसी नस्ल में कम मिलने का कारण यही है कि देसी नस्ल जो है उनकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी है। अगर उस प्रतिरोधक क्षमता के ऊपर उनको जो खाना जितना उनको चाहिए अगर वो दे दिया जाए तो ज़रूर उनके उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी, है ना। जानवर के अंदर अगर किसी तरह के कीड़ों का संक्रमण है तो आप ये मान के चलें कि उसकी जितनी भी न्यूट्रिशन जो वो खाने से ले रहा है वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रही है उन कीड़ों के तरफ। तो वो कीड़ों को ना मिलके आपको मिले, इसके लिए 10% प्रोटीन अगर हम जो खाने में जितना रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर अगर 10% हम बढ़ा दें, यानी खाना जितना हम दे रहे हैं उसके ऊपर हम थोड़ा सा और दें, तो उससे उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और पैरासाइट के होने के बावजूद, यानी कीड़ों के होने के बावजूद भी उसका उत्पादन बढ़ेगा। यही जो विदेशी नस्ल की गायें हैं उसमें हमें दवाई का इस्तेमाल करना ज़रूरी हो जाता है अगर संक्रमण कीड़ों का हो जाए तो।
0: तो कुल मिलार आपकी बात सु मैंने एक बात यह समझ में आई कि सऊ ज्यादा बड़ी भ्रांति जो पशुपालका में चाले है कि देसी नस्ल में उत्पाद कम मिले है, यह सरासर भ्रांति है, क्योंकि उत्पाद तो बाको चोको हो सके है। जयान की डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि देसी नस्ल का ढांडा में परजीवियारा लक्षण कम दिखाई देवे है, पर बाने जो खानो चारो दानो आपा दे रहे हैं वो बाकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ने बढ़ावा में लाग रहे है, इली उत्पाद कमा रहे है। अगर जो खानो आपा दे रहे हैं बिना संतुलित मात्रा में तो देवा ही, थोड़ो सो ज्यादा देवाला बेसी देवाला तो परजीविया सु भी लड़ेला और उत्पादन भी चोखो मिले लो। डॉक्टर साहब बात करा या तो प्रबंधन री आपा बात करें की तरीका सु कर सका, अगर सटीक रोकथाम री बात करा तो की तरीका को विधि आपने अपनानी है और की तरीका से रोकथाम करनी है परजीवारी, यो भी बताओ सा।
1: सटीक तरीके से हमारे जितने भी पशु चिकित्सक हैं और पशु चिकित्सालय हैं वहाँ पर पूरा इनका डिवर्मिंग शेड्यूल, इनका वैक्सीनेशन शेड्यूल, ये सब बना हुआ है। वैक्सीनेशन शेड्यूल मतलब जो टीकाकरण, इनका टीकाकरण जो होना है, जो इनको कीटनाशकों की दवाई देनी है, इसका पूरा शेड्यूल पशुपालकों और पशु चिकित्सालय इनके बीच में दिया गया सरकार द्वारा। देखने की बात इसमें थोड़ी सी ये है कि राजस्थान, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़ा राज्य है, तो यहाँ पर क्योंकि बीमारियाँ अलग अलग जगह पर अलग अलग मिल सकती हैं, तो आपको अपने उस जगह के जो भी पशु चिकित्सालय हैं वहाँ पर जाके पशु चिकित्सक की सलाह से उसका

0: समय पर टीकाकरण और समय पर अगर आप कीटनाशक दवाई उसको दिलवा रहे हैं जांच के बाद, तो वो आपके जो जानवर की सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि पूरे राज्य में एक जैसा टीकाकरण तो है, लेकिन पूरे राज्य में एक जैसा दवाई का जो सिस्टम, ये कीटनाशकों का जो सिस्टम है, ये अलग अलग हो सकता है। इसलिए अपने एरिया के जो पशु चिकित्सक हैं उनकी सलाह से ये करना ज़्यादा सही।
1: पशुओं में परजीवी प्रबंधन भ्रांति और तथ्य, ई विषय माते डॉक्टर अभिषेक गुप्ता सहायक आचार्य PGIVER कॉलेज सुया और बहुत चोखी जानकारी माने दिया, इसके लिए आप लोग घणो घणो धन्यवाद सा।
2: और चंचल बहन थाको भी घणो घणो धन्यवाद, अति चोखी जानकारी थेली। और तो मधु बहन, अब आपा कार्यक्रम ना आगे बढ़ावा और जानकारी स्वरूप सुना एक चोखो सो गीत।
3: बिल्कुल सा।

0: बहुत ही सुरीलो सो लोकगीत आपां सगला रड़मिल सुनिया, और जियां की जानकारी भी आपां ले लिया, लोकगीत भी आपां सुन लिया। शुरू में जद आपां बात करी कि बिरखा रा पानी ना आपां ने क्या सहेजनो है, तो पानी है तो खेती बाड़ी जन धन जीवन स क्यों है, और इसे ही अन्न धन और समृद्धि है। तो आप कार्यक्रम का माध्यम से यो प्रण लेवा कि आपने पानी बचानो है ताकि आप आगे से आगा खुशहाल होते रहे वहाँ। तो ई प्रण के सागे ही ग्राम भारती में आज के ताई इतनो ही। अगला कार्यक्रम में यानी कि खेती बाड़ी में ओजू आपके सागे जुड़ रहे हैं, तो कार्यक्रम में दियो आज्ञा यानी कि चाला और करा
1: राम
0: राम
1: राम
0: राम
1: सा।
0: सा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम भारती, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ और दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। इस समय शाम के 7:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: राजस्थान में खरीफ 2026 में फसल बीमा योजना PMFBY एवं RWBCIS लागू की जा रही है। आज ही अपने नजदीकी बैंक CSC केंद्र या अन्य अधिकृत माध्यम से अपनी फसल का बीमा कराएं और प्राकृतिक आपदाओं से अपनी फसल को सुरक्षित करें। अधिक जानकारी के लिए कृषि रक्षक हेल्पलाइन 1447 पर संपर्क करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
1: खेतीबाड़ी सुन बाड़ा सगला काश्तकार भयन विशाल गोडरो घणो घणो राम राम सा और मधुबेन थाने भी घणा घणा राम राम
2: घणा घणा राम राम और खेतीबाड़ी सुन बाड़ा सगला श्रोतावा ने करसा भाई बेणा ने और दूर दराज गांव ढाणी में चौपाल सुनती सगली सखी सहेलिया और भेणा भाईला ने मधु नायक रो घणो मोकलो राम राम सा। तो विशाल भाई सा
1: जी सा
2: देखो अबार बिरखा री जो या रुत है आपा खूब बात करया कि आपा ने साब जल को संचयन करनो चाहिए पर बिरखा में एक और खास बात है कि ई टाइम मौसम का मायने ई समय में संक्रमण बहुत ज्यादा फैले है
1: जी।
2: तो जी आपा अपनो ध्यान रखा ना घर बार को बच्चा को टाबरा को अपना बड़का को तो यही ध्यान रखनो है आपा ने अपना ढांडा सासरा को
1: जी सा पशुवारी सार संभाल रखनो बहुत ही जरूरी है
2: कि पशुधन री सेवा करा साफ सुथरी राका थान स्वस्थ रेवे आपनो पशुधन खुशहाल रेवे हर जन जन आधार।
1: काई बात है सा बहुत ही बढ़िया। देखो सा पशु साला में चौमासन में एकदम चोखी घर साफ राखण वास्ते एक अपन बहुत ही मतलब बिन राखनु चीज सूखो राखनु चीज है पशु साला में क्योंकि देखो कीचड़ की वजह से पशुओं में कई प्रकार की बीमारियां होने को डर हुए जी हाँ खुरपका मुँह पका थनेला निमोनिया रोग

0: राजस्थान में खरीफ 2026 में फसल बीमा योजना PMFBY एवं RWBCIS लागू की जा रही है। आज ही अपने नजदीकी बैंक CSC केंद्र या अन्य अधिकृत माध्यम से अपनी फसल का बीमा कराएं और प्राकृतिक आपदाओं से अपनी फसल को सुरक्षित करें। अधिक जानकारी के लिए कृषि रक्षक हेल्पलाइन 1447 पर संपर्क करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
1: आयो आयो तीज त्योहार भाई, आपने तो राजस्थान प्रदेश है यो भाई, त्योहार की एक तरीके से कहवा की तीज त्योहार अटे मेला खेड़ा खूब चाले है और खूब लोग अटे रमे है। तो लोकगीत तो आप सुन लिया और देखो लोकगीत सुनता तक का जो अपना विशेषज्ञ है आज का मुकेश कुमार शर्मा जी आ गया है और आपने जो अभिलाषा भाईसा है ये भी आ गया है। तो अभिलाषा भाईसा ने आप माइक संभलावा और देवा जिम्मेदारी की भाई थे ओळखाण भी कराओ और जानकारी भी दिराओ।
2: किसान साथियों कार्यक्रम में जानकारी देबा खातिर अपने साथ है मुकेश कुमार शर्मा सहायक कृषि अधिकारी कृषि आयुक्तालय जयपुर से और यहाँ से अपनी बातचीत को विषय रेवेलो खरीफ फसला में समन्वित कीट व रोग प्रबंधन। तो मुकेश जी आपको कार्यक्रम में घणो घणो स्वागत। राम राम सर।
3: राम राम सर किसान भाई। राम राम।
2: तो सर जी यहाँ की आप बात कर रहे हैं खरीफ फसला की, तो जो किसान साथी कार्यक्रम सुन रहे हैं वाने सबसे पहले यू ही बताओ कि खरीफ फसला में समन्वित कीट व रोग प्रबंधन से आपनों का ही तात्पर्य

0: किसान भाई, आज अपन चर्चा करेंगे खरीफ फसलों में समन्वित कीट और रोग प्रबंधन में। तो पहले तो अपन बात कर लेते हैं कि समन्वित कीट व रोग प्रबंधन होता क्या है। तो किसान भाई, ये समन्वित कीट व रोग प्रबंधन है वो रोगों के नियंत्रण का एक ऐसा तरीका होता है जिसमें अपन केवल रासायनिक दवाइयों का प्रयोग ही नहीं करते, उसमें और भी जैसे कृषि क्रियाएं हैं, यांत्रिक क्रियाएं वगैरह, या जैविक क्रियाओं को और रासायनिक क्रियाओं को, सभी को सम्मिलित रूप से एक दूसरे के पूरक के रूप में अपनाकर इन रोग व कीटों का नियंत्रण करते हैं। तो क्योंकि केवल अपन यदि रासायनिक दवाओं से इसका किसी भी रोग का इलाज करेंगे तो उससे अपना एक भूमि का और कृषि उत्पाद का क्वालिटी खराब होगी, उसकी गुणवत्ता खराब होगी और उसका खर्चा भी ज़्यादा आता है।
1: जी
0: इसलिए अपन को कुछ कृषि क्रियाएं भी करनी चाहिए, उनसे भी अपना काफ़ी कुछ कंट्रोल हो जाएगा और कुछ यांत्रिक क्रियाएं करके भी अपन उसे कंट्रोल कर लेंगे। तो इस प्रकार इन सभी को सम्मिलित रूप से अपने क्रियाओं को करेंगे ना, तो उसी विधि को कहते हैं अपन समन्वित कीट रोग प्रबंधन।
1: जी साहब, तो सब खरीफ फसलों में समन्वित और एकीकृत कीट व रोग प्रबंधन की आवश्यकता अपना किसान साथियों ने क्यों पढ़े है?
0: हाँ किसान भाई, खरीफ फसलों में बहुत से हानिकारक कीट व रोगों का प्रकोप हो जाता है। तो किसान भाई क्या करते हैं कि अधिक बहुत महंगे से महंगे और बहुत अधिक मात्रा में रसायनों का प्रयोग कर देते हैं, जिससे कि उनकी फसल की गुणवत्ता खराब हो जाती है, उनकी भूमि की गुणवत्ता खराब हो जाती है और उससे खर्चा भी ज़्यादा होता है, वातावरण भी प्रदूषित हो जाता है। तो इससे खराब गुणवत्ता के उत्पाद को खाने से मनुष्य में भी कई प्रकार की बीमारियां, जैसे हाई या लो बीपी हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, इस प्रकार की कई प्रकार की बीमारियां उनमें होने लग गई है। तो इसलिए इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ी कि यार कि अपन को ऐसा कुछ क्या करें जिससे इन रसायनों का उपयोग कम से कम किया जाए। तो इसलिए समन्वित कीट रोग प्रबंधन की जरूरत पड़ी, जिससे सभी को सम्मिलित रूप से, सभी क्रियाओं को सम्मिलित रूप से अपना कर इन कीट व रोगों का उपचार किया जा सके।
1: जी सर, तो सब अब बात करें आप कि समन्वित और एकीकृत कीट व रोग प्रबंधन का मुख्य घटक कौन कौन सा छे?
0: हाँ किसान भाई, अब अपन चर्चा करते हैं घटक में कौन कौन सी चीज़ें आती है समन्वित कीट रोग प्रबंधन। तो पहली अपन बात कर लेते हैं कृषि क्रियाओं के। तो रोग और कीट व रोग नियंत्रण के लिए अपन कुछ ऐसी कृषि क्रियाएं करते हैं जिससे भी अपन काफ़ी हद तक इन कीट व रोगों का उपचार कर सकते हैं, जिसमें जैसे अपन तो बीजोपचार है। तो अपन कोई किसी भी फसल की यदि बुआई करें तो सबसे पहले उसमें को उसको बीज से उसको उपचारित करके ही बुआई करें। यदि अपन बीजों को उपचारित करके बुआई करेंगे तो अपन कम से कम 50% तक उन होने वाले रोगों से अपन उसको बचा सकते हैं, फसलों को बचा सकते हैं। तीसरा है अपन फसल चक्र अपनाएं। फसल चक्र अपनाने से मतलब है फसल एक ही फसल एक खेत में बार बार न लेवे, अब फसलों को बदल बदल कर लेवे। जैसे अभी कभी बार मक्का ली है तो अगली बार ज्वार है या मूंगफली है या ग्वार वगैरह दूसरी फसल उसमें लेवे। और ट्रैप फसलों का भी लगाएं, जैसे किसी फसल में जैसे मक्का की फसल की बात करें तो मक्का की फसल में यदि कातरे का प्रकोप ज़्यादा रहता है तो उसके चारों तो 2 से 3 लाइन ज्वार की फसल की लगा दें। तो कातरा के ज्वार कातरे का मुख्य भोजन होता है, तो मुख्य फसल मक्का को छोड़कर वो ज्वार में को नुकसान पहुंचाएगा और अपनी मुख्य फसल जो मक्का है वो बच जाएगी। इस प्रकार उसको ट्रैप फसल लगाएं। और अगली बात करें तो प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करें, जिस जिस खेत में जो भी कीड़ा या बीमारी ज़्यादा लगती है तो उनके प्रतिरोधी किस्मों का उसमें चयन करके उसको उनको लगाएं। और अगली बात यदि अपन जैसे अपन प्रतिरोधी किस्मों की बात भी करूँ तो मैं जैसे एक दो कुछ बताऊँ। बाजरे के लिए अपन हरित बाली रोग होता है, उसकी प्रतिरोधी किस्म के लिए अपन RCMS 17 या ICMS 356 किस्म काम में ले सकते हैं। और यदि अपन को यदि मक्का बोनी है तो उसके लिए पत्ता दब्बी या तुलासिता या तनाछेदक रोग होता है, उसके यदि के प्रतिरोधी किस्म की अपन को चाहिए तो माही ध्वल या माही कंच नाम की किस्म आती है। और मूंगफली की यदि बात करें तनागलन और टिक्का रोधी उसमें किस किस्म होती है टिक्का, तो उसके लिए RG 510 किस्म अपन का उपयोग कर सकते हैं। या मूंग की यदि बात करें तो मोजे का एक उसमें रोग होता है, उसके रोधी के लिए MUM 2 नामक एक किस्म आती है, अपन उसका चयन कर सकते हैं। और सोयाबीन की यदि बात करें तो तनागलन और पत्ती दबा रोग के लिए किस्में का आती है प्रताप राज 24 आदि, इन किस्मों का अपन उपयोग करके, ऐसे और भी कई किस्में हैं जिनका उपयोग करके अपन उन फसलों को कीट रोगों से अपन बचा सकते हैं। और अपन को जैसे एक उर्वरक और जो अपन को देते हैं उन खाद उर्वरक देते हैं उनको संतुलित मात्रा में उनमें प्रयोग करते रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी खाद उर्वरक का यदि किसी में कमी हो जाती है, तत्व की कमी हो जाती है तो भी रोग और कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है। तो इसलिए अपन को ध्यान रखें कि उनका संतुलित मात्रा में उपयोग हो। ये अपन कृषि क्रियाओं की बात है। दूसरी अपन बात करें यांत्रिक क्रियाओं की। यांत्रिक क्रियाओं में अपन फसलों के जो कीट निकलते हैं उनको यांत्रिक में क्रियाओं के तहत लाइट ट्रैप या प्रकाशवाश का उपयोग करके उनको नष्ट किया जा सकता है। ये शाम के समय 6 से 8 बजे के लगभग, 2-1 घंटे के लगभग लाइट ट्रैप का यूज़ करें। यदि किसी किसान भाई के पास लाइट ट्रैप या प्रकाशवाश नहीं हो तो एक बिजली का

0: लगा देवें और उसके लाइट से वो कीड़े आकर्षित होंगे और वो उनके नीचे उसे बल्ब के नीचे एक बड़ी परात लेके उस पर बड़ा पात्र लेके उस पर पानी डाल के उसमें कुछ केरोसिन डाल दे ताकि उसमें जलकर नष्ट हो जाएंगे। इसके साथ ही अपन फेरोमोन ट्रैप का भी यूज़ कर सकते हैं। फेरोमोन ट्रैप एक ऐसा आता है जिसमें कीड़े उसके गंध से उसके तरफ आकर्षित होते हैं और उसमें फंस कर वो नष्ट हो जाता है। ये बात हुई यांत्रिक क्रियाओं की। अगली की बात करें तो अपन जैविक क्रियाओं के बारे में कहें। जैविक क्रियाओं के द्वारा भी अपन कीट और रोगों को नियंत्रित कर सकते हैं। जैविक क्रियाओं में अपन जैसे फसलों के फैलने वाले रोगों और रोगजनकों को वहाँ कीटों को अपना भोजन बनाने के लिए परभक्षी एवं उन पर अपना जीवन पूर्ण करने वाले जो कीट होते हैं वो उन सूक्ष्म परजीवी का उपयोग करते हैं। जैसे अपन परभक्षी की बात करें तो क्राइसोपरला और कॉक्सिनेला दो प्रकार के परभक्षी आते हैं जो रोग पैदा करने वाले कीट व लटों या अंडों पर नष्ट करके उनको उनसे अपन को निदान दे देते हैं। उनसे होने वाले अपन को नुकसान से अपन बच सकते हैं। परजीवी की यदि अपन बात करें तो एक परजीवी के नाम से आता है ट्राइकोग्रामा ट्रास्टास्टिकस या एपिरिकेनिया। ये परजीवी होते हैं जो कीट व लटों या अंडे उनके जो अंडे होते हैं उन पे अपना जीवन करके उनको नष्ट कर देते हैं और
1: जी
0: उनसे होने वाले रोगों से अपन को उनसे अपन बच जाता है। अब यदि रोग कारक की बात करें तो रोग कारक में एनपीवी या बीटी का उपयोग करके अपन उनसे बच सकते हैं। और एक आता है फफूंद रोधी, जो फफूंद से जो रोग होते हैं उनके बचाव के लिए अपन ट्राइकोडर्मा का अपन यूज़ कर देते हैं। ट्राइकोडर्मा एक अपने मित्र फफूंद होती है जो यदि बीज उपचार के लिए तो अपन यूज करते हैं तो 8 से 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उसको बीजों को उपचारित करके बुआई करेंगे तो इससे अपन को रोग और बीमारियाँ फसलों में नहीं होगी। और यदि अपन फसल या खेत में अपन को भूमि उपचार के रूप में काम में लेना है ट्राइकोडर्मा को तो 2.5 किलो ट्राइकोडर्मा को 100 किलो अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट में मिलाकर 2-3 दिन उसमें गीली रख के एक बोरी के टाट से ढक दे और उसमें नमी बनाए रखें ताकि उसमें उनके जीवों की संख्या बढ़ जाएगी। फिर 8-5-7 दिन बाद में उसको अपन खेत में बुरक देवे तो इससे भी फफूंद से होने वाले रोगों से अपन को बचा जा सकता है।
1: जी
0: यदि इन क्रियाओं के बाद में यदि कोई नहीं होता है तो फिर अपन रासायनिक दवाइयों का अपन उपयोग करते हैं। रासायनिक दवाओं में अपन को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आजकल जैव रासायनिक दवाएं भी आ रही है तो पहले उनका प्रयोग करें। जैसे अपन फफूंद वाले रोगों की बात करें तो अपन ट्राइकोडर्मा का यूज़ कर सकते हैं या उस ट्राइकोडर्मा के बाद में मैंकोजेब है, कार्बन डिजिम है, कार्बोक्सिन है आदि का उपयोग करें। या कीड़े वाले कीट से जो बीमारियाँ हो रही है उनके लिए नीम तेल, नीम की खली या अरंडी की खली का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही मेलाथियन है, एसीफेट है, क्यूनोल्फोस है या डाइमेथोएट नामक की दवाएं आती है उनसे अपन इन कीट से होने वाले रोगों को अपन उपचार कर सकते हैं।
1: जी साहब, तो सब बात करें आप कि खरीफ फसला में कातरा व सफेद लटकों समन्वित कीट नियंत्रण अपना किसान साथी के हिसाब से करें।
0: हाँ किसान भाई, ये खरीफ फसलों में कातरा और सफ़ेद लट का बहुत ही प्रकोप ज़्यादा रहता है तो कातरे के नियंत्रण के लिए गर्मियों में पहले तो मिट्टी पलटने वाले हल से उनकी गहरी खेत की गहरी जुताई कर दें जिससे उसमें पड़े हुए उन कातरे के लट्टे हैं, कीड़े अंडे वगैरह है वो जलकर उसमें से तेज़ गर्मी से नष्ट हो जाए या पक्षियों के द्वारा वो खा लिए जाते हैं। दूसरा, मानसून की वर्षा होते ही कातरे के पतंगों का ज़मीन से निकलना शुरू हो जाती है तो इन पतंगों को नष्ट कर दिया जाए तो इसके ना इनको करने के नष्ट के लिए अपन को प्रकाश पास या लाइट ट्रैप का यूज़ करना चाहिए। दूसरा, यदि इसके पास लाइट ट्रैप या प्रकाश पास नहीं हो तो अपन खेत के मेड़ों के चारों तरफ अपन घास फूस जलाकर भी यदि अपन लाइट करें तो उसमें वो जलकर भी उससे भी वो नष्ट हो जाएंगे। और तीसरा, यदि अपन बात करें तो मक्का के फसल के खेत के चारों पर अपन दो से तीन लाइन अपन ज्वार की फसल की लगा देंगे तो ज्वार की फसल में कातरे का प्रकोप बढ़ जाएगा और मुख्य फसल जो अपनी मक्का की वो बच जाएगी। इसे अपन मक्का की फसल को अपन बचा सकते हैं। ऐसे ही टिन के एक टिन का डिब्बा लें, उसके चारों तरफ सोरा या कालतौर जैसे चिपकने वाला पदार्थ लगाकर उसको खेत में घुमाएंगे तो उससे वो उसके कातरे के नीम पर जो छोटे कीट है वो चिपक जाएंगे और उनको अलग करके अपन को नष्ट करके भी उनको अपन कुछ हद तक बचा सकते हैं। और मेड़ पर जो खेत की जो मेड़े हैं उन पर मेलाथियन 5% चून या क्यूनोल्फोस 1.5% चून 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से अपन बुरकाव करें तो इस प्रकार उसका तरीका अपन कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही अब सफ़ेद लट की यदि अपन बात करते हैं, सफ़ेद लट को छोटी अवस्था में जब तक वो 14 दिन की है तब तक उस पर को नियंत्रण करना आसान होता है। इससे यदि वो बड़ी हो जाती है तब वो उसका नियंत्रण करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
1: जी सर,
0: तो भृंग नियंत्रण उसके जो भृंग होते हैं जो छोटे कीट होते हैं उनको नियंत्रण के लिए लाइट ट्रैप या प्रकाशवास का अपन उपयोग कर सकते हैं। और अपन ये भी जानते हैं सफ़ेद लट के जो छोटे कीट और भृंग होते हैं वो मानसून से जैसे आता है तो पोष वो उस

0: बाहर निकल के मानसून की पहली वर्षा के समय जमीन से बाहर निकल के आसपास के जो वृक्ष होते हैं उनकी पत्तियां वगैरह खाते हैं। तो अपन को किसी भी एक वृक्ष पर कोई मेलाथियन 25 cc की दवाई का स्प्रे कर देवें, और फिर शाम के समय लगभग 6:30 या 7:30, 1 घंटे 1.5 घंटे के बीच के में 4-5 स्पंज के टुकड़े लेके उनमें एक फेरोमोन आता है मिथैक्सी बेंजीन, या इसको एनिसोल भी बोलते हैं, उनके टुकड़ों को उनको भिगो के उस उन पेड़ के ऊपर लटका दें, ताकि उनकी गंध से और कीड़े उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और वो जहरील उन स्प्रे किए हुए छिड़काव किए हुए पत्तियों को खाकर वो नष्ट हो जाते हैं। खरीफ की फसलों में तो बाजरा और मूंगफली में सफेद का प्रकोप यदि अधिक होता है तो इसकी दवा इसके लिए मैं दवा भी बताता हूँ। इमिडाक्लोरोपीड 600 FS 6.5 ml का उपयोग कर सकते हैं, या वीटावैक्स 2 g/kg बीज की दर से अपन बीजोपचार करके अपन इसको 2 से 3 घंटे सुखा कर यदि बीज अपन बुआई करेंगे तो इससे अपन को उस रोग से अपन को निदान मिल जाएगा।
1: जी साहब, तो सर बात करें आप आगे की जो खरीफ फसला में दीमक और टिड्डी दल को नियंत्रण अपना किसान साथी की हिसाब से करें।
0: हाँ, किसान भाइयों, दीमक का और टिड्डी का भी खरीफ फसलों में बहुत ज़्यादा प्रकोप रहता है।
1: जी
0: दीमक के नियंत्रण के लिए रबी फसलों की कटाई के बाद खेत की गहरी जुताई करें हुए और खेत में बचे हुए पुराने अवशेष, जिससे कि खेत में बचे हुए पुराने अवशेष है, उनके रोगग्रसित बाग है, खरपतवार है, घास फूस है आदि उस पर दबकर नष्ट हो जाते हैं, और जिससे अपन दीमक से अपन काफ़ी हद तक बचाव कर सकते हैं खेतों पर। दूसरी बात यह कि दीमक के बचाव के लिए अपन को अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कच्ची का यदि अपन कच्ची गोबर की खाद प्रयोग कर देते हैं तो दीमक उन पे उनको खाकर उनको खेत में काफ़ी नुकसान करती है। तथा फसलों की समय समय पर सिंचाई करते रहनी चाहिए, क्योंकि पानी की यदि कमी हो जाती है खेत में, यदि पानी की कमी हो जाती है फसल में तो दीमक का प्रकोप बढ़ जाता है। तथा दीमक के नियंत्रण के लिए अरंडी की खली का भी अपन उपयोग कर सकते हैं। 500 किलो अरंडी की खली को प्रति हेक्टर अंतिम जुताई के समय अपन खेत में डाल देते हैं तो उससे भी अपन को दीमक का कंट्रोल कर किया जा सकता है। तो इसके साथ ही नीम का तेल या नीम की खली का भी अपन दीमक के नियंत्रण के लिए कर लेते हैं, जिसमें नीम के यदि तेल की बात करें तो 4 लीटर नीम का तेल प्रति हेक्टर की दर से सिंचाई पानी के साथ खेत में दे दें, और यदि नीम की खली की बात करें तो 50 से 60 नीम की खली भी अपन 500-700 किलो नीम की खली दीमक से प्रभावित खेत में अपन डालकर उसे दीमक से नियंत्रण कर सकते हैं।
1: तो किसान साथियों, खरीफ फसला में समन्वित कीट व रोग प्रबंधन ई विषय माथे जानकारी देवा खातिर अपने साथ मुकेश कुमार शर्मा सहायक कृषि अधिकारी कृषि आयुक्तालय जयपुर से। तो मुकेश जी, कार्यक्रम में पधार्या, इतनी बढ़िया और उपयोगी जानकारी मका किसान साथियों तक साझा की, के तानी आपको गणो गणो धन्यवाद सर।
2: कल सुबह 9:15 पर सुनिए कार्यक्रम फिट एंड फाइन। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर, टोंक रोड, टोंक फाटक, गांधीनगर, जयपुर।
3: फसलाम समन्वित कीट और रोग प्रबंधन का बारे में अति चौकी जानकारी दी मुकेश कुमार शर्मा जी, और अति चौकी जानकारी ली अभिलाषा बहन, दोनों को घणु घणु धन्यवाद। और देखो मधु बहन, धन्यवाद स्वरूप एक सुना चोको सो गीत।
4: बिल्कुल सर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। इस समय रात के 8 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत, यह है कार्यक्रम का पहला गीत।

प्रेम रोग फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाजें थी सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गीत।

कुमार सानू की आवाज़ में अभी आपने आशिकी फिल्म का ये गीत सुना। फिल्म संगीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और साथियों की। फिल्म का नाम है राम तेरी गंगा मैली।

लता मंगेशकर और साथियों की ये आवाजें थी। फिल्म का नाम था राम तेरी गंगा मैली। फिल्म संगीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। आवाजें हैं उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की। फिल्म का नाम है मोहरा।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम के अंत में आइए, हम आपको सुनवा रहे हैं समीर का लिखा गीत, संगीत आनंद मिलिंद का, आवाजें अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण और साथियों की। फिल्म का नाम है दिल।

उदित नारायण, अनुराधा पौडवाल और साथियों के गाए दिल फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। इस समय रात के 8:30 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा लेकर के आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो आज कार्यक्रम में बात की जाएगी क्रिकेट के मैदान की, जहां भारत ने गोल में श्रीलंका के खिलाफ अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है और दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक टीम ने 9 विकेट खोकर 460 रन बना लिए थे। वहीं एक और खबर आई है ऑस्ट्रेलिया से, जहां बांग्लादेश ने कंगारुओं को हरा करके रचा है टेस्ट क्रिकेट में एक नया इतिहास। बात की जाएगी कार्यक्रम में महिला हॉकी विश्व कप की, जहां भारत ने चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ खेलते हुए इस ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट टीम को एक कड़ी टक्कर दी है। और बैडमिंटन का मैदान अब सज चुका है राजधानी नई दिल्ली में, जहां कल से शुरू होगी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप। और अंत में कार्यक्रम में बात की जाएगी फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल की। तो सबसे पहले कार्यक्रम को शुरू करते हैं गोल में। भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 460 रन बनाकर के अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत के लिए देवदत्त पड्डीकल ने 167 रन का शानदार योगदान दिया। दिन का पहला सत्र बारिश के कारण पूरी तरीके से धुल गया। इसके बाद भारत ने अपने कल के स्कोर 2 विकेट पर 288 रन से आगे खेलना शुरू किया। और क्रिकेट की खबरों पे और अधिक अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी विशेष शुक्ला। विशेष, आज के मैच पहला सेशन जिस तरह से गया, लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इतना मौका मिल पाएगा खेलने का, इतने रन बन पाएंगे, लेकिन भारत ने कह सकते हैं एक मजबूत पकड़ हासिल कर ली है मैच में।
1: जी शक्ति, बिल्कुल, जिस तरीके से बारिश आज हो रही थी उस समय ऐसा ही लग रहा था कि आज का खेल जो है वो धुल जाएगा, लेकिन देवदत्त पड्डीकल जब बल्लेबाजी करने के लिए एक बार फिर से आए तो उसी लय में नजर आए और शानदार बल्लेबाजी का उन्होंने प्रदर्शन किया। ऋषभ पंत ने भी उनका अच्छा साथ निभाया, 39 रन का योगदान दिया, लेकिन जब ध्रुव जुरेल बल्लेबाजी करने के लिए आए तो 68 गेंदों पर 51 रन बनाए उन्होंने। एक अच्छी पारी, एक बैलेंस्ड पारी उन्होंने खेली और टीम को एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ाया। लास्ट में मानव सुथार ने भी 43 गेंद पर 24 रन की शानदार पारी खेलकर भारत को 460 रन के स्कोर तक पहुंचा है।
0: जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि एक मजबूत पकड़ भारत ने आज हासिल कर ली और 2 सेशन का खेल हो पाया। आपने देवदत्त पड्डीकल की बात की, इसके पहले इस खिलाड़ी ने 2 टेस्ट मैच खेले थे, 90 रन बनाए थे, लेकिन कह सकते हैं कि सारी भरपाई कर दी इस तीसरे मुकाबले में।
1: जी बिल्कुल, और कई कीर्तिमान भी उन्होंने स्थापित किए हैं। नंबर 3 पर श्रीलंका की धरती पर सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड भी उन्होंने अपने नाम कर लिया है। और इसके साथ ही साथ वो तीसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं नंबर 3 पर खेलते हुए जिन्होंने 150 प्लस स्कोर बनाया है श्रीलंका की धरती पर। इससे पहले ये कारनामा सिर्फ द्रविड़ और चेतेश्वर पुजारा ने कर पाया था। इसके अलावा अगर शक्ति बात करें तो इंडिपेंडेंस डे के दिन शतक लगाने वाले वे पहले टेस्ट बैटर बन चुके हैं। और अगर अंतर्राष्ट्रीय शतकों की बात करें तो उन्होंने विराट कोहली की

0: खेलने हैं। इसके बाद भारतीय टीम अगला टेस्ट जो है वो 19 नवंबर को खेलेगी। बीच में एक लंबा फासला है और बहुत तेजी से बदलती हुई WTC की टेबल है जो आपका स्लॉट फिक्स करेगी फाइनल में। लेकिन भारत के साथ ही आज बात होनी चाहिए बांग्लादेश की क्रिकेट टीम की, जिसने ऑस्ट्रेलिया में जाकर के टेस्ट क्रिकेट में सफ़ेद जर्सी में ऑस्ट्रेलियाई टीम को हराया है। और 23 साल बाद वो टेस्ट श्रृंखला खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली ये बांग्लादेश की टीम बनी है, जिसने डार्विन में पहले टेस्ट मैच में जब उसको चौथी पारी में जीत के लिए 57 रन की आवश्यकता थी, टीम ने महज एक विकेट खोकर के ये लक्ष्य हासिल कर लिया। और जिस तरह का ये पूरा का पूरा मुकाबला रहा, आज शादमान इस्लाम 25 रन और मोमिनुल हक 30 रन बनाकर नाबाद रहे और वो जीत दिलाई जो शायद दशकों तक बांग्लादेश क्रिकेट में और विश्व क्रिकेट में याद की जाएगी। भारत जैसा मजबूत देश, न्यूजीलैंड जैसी टीम भी उनकी धरती पर ऑस्ट्रेलिया को हराने से पहले कई चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन बांग्लादेश ने कर दिखाया।
1: जी बिल्कुल शक्ति। और ऑस्ट्रेलिया जब मैदान पर उतरी तो उन्होंने टॉस के साथ ही अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे बल्लेबाजी चुन के, कि वो इस मुकाबले को ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश ने पहली पारी से ही मुकाबले पर पकड़ बनानी मजबूत कर दी। उनके गेंदबाज हसन महमूद ने पहली पारी में 6 विकेट लिए और पहले ऐसे गेंदबाज बने, बांग्लादेशी गेंदबाज बने, जिन्होंने 5 विकेट लिए ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर और 198 रन पर ऑल आउट कर दिया ऑस्ट्रेलिया को। उसके बाद तंजीद हसन, जो कि पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज बने जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर शतक लगाया और 426 रन के स्कोर तक टीम को पहुंचाया। इसके बाद मेहंदी हसन मिराज ने तीसरी पारी में शानदार 5 विकेट हॉल लेते हुए ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर पहुंचा दिया। और आखिरी पारी में तो सबने देखा ही कि बांग्लादेश ने किस तरीके से आसान जीत दर्ज कर ली। ये जीत इसलिए भी ऐतिहासिक है शक्ति, क्योंकि बांग्लादेश ने अपने तीसरे प्रयास में ही ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट मुकाबला जीत लिया है, जबकि पाकिस्तान को 7 और भारत को 12 मुकाबले लगे थे। तंजीद हसन, मेहदी हसन मिराज, हसन महमूद, इन सब खिलाड़ियों की जितनी भी बात करें उतनी कम। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने रंगना हैरत का 433 विकेट का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और वो बाएं हाथ के गेंदबाज सबसे सफल गेंदबाज बन गए हैं सबसे ज़्यादा विकेट लेने के मामले में। और जोश हेजलवुड ने भी 300 विकेट का आंकड़ा जो है छू लिया है। तो बहुत ही शानदार तरीके से ये मुकाबला चला और बहुत ही ऐतिहासिक ये मैच, जहाँ बांग्लादेश तीसरी एशियाई टीम बनी ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट मुकाबला जीतने वाली।
0: जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि सफ़ेद जर्सी में ऑस्ट्रेलिया को हराना हर टेस्ट प्लेइंग नेशन का एक ख्वाब होता है। और इसके पहले जब बांग्लादेश की टीम टेस्ट मैच खेलने उतरी थी तो उसे जिम्बाब्वे से 1 पारी और 85 रन से हार का सामना करना पड़ा था और काफ़ी आलोचना हुई थी उस टीम की। लेकिन कह सकते हैं कि एक नई रणनीति नए जोश के साथ उतरी और ये वही बांग्लादेश टीम है जिसने इस वर्ष ऑस्ट्रेलिया को एक दिवसीय श्रृंखला में 2-1 से हराया है, पाकिस्तान को टेस्ट श्रृंखला में 2-0 से हराया है, आयरलैंड पे 2-0 की जीत दर्ज की है। तो कह सकते हैं कि एक अच्छा उदय नज़र आता हुआ इस टीम का क्रिकेट के मैदान पर और एक बहुत शानदार जीत जो शायद ये टीम, इस टीम का हर खिलाड़ी अपने दिल में सालों सालों तक सजो के रखेगा। और अब क्रिकेट के मैदान के बाद बात की जाए हॉकी की, जहां भारतीय महिला हॉकी टीम ने विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत एक दमदार प्रदर्शन के साथ की है। भारत ने 2024 ओलंपिक की रजत पदक विजेता चीन को कड़ी टक्कर देते हुए 2-2 से ड्रॉ पर रोक दिया। सुनते हैं इस मैच पर ये रिपोर्ट।
2: अम्स्टेलविन के वागिनर हॉकी स्टेडियम में चीन के खिलाफ अपने अभियान का आगाज करने उतरी भारतीय महिला टीम भले ही नतीजे को जीत में तब्दील नहीं कर सकी, लेकिन टीम ने अपने शानदार खेल की बदौलत मुकाबले को 2-2 के स्कोर से ड्रॉ पर रोक दिया। भारत की ओर से नवनीत और दीपिका ने गोल किए। भारत ने मुकाबले की शुरुआत आक्रामक अंदाज में की। भारत को मैच के 8वें मिनट में पहली सफलता मिली जब नेहा ने डी के बाहर से गेंद सर्किल में भेजी, जिस पर नवनीत ने अंतिम टच देते हुए गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाकर भारत को 1-0 की बढ़त दिला दी। 14वें मिनट में चीन की झांग यिंग ने पेनल्टी स्ट्रोक को गोल में बदलकर स्कोर 1-1 कर दिया। इसके बाद दूसरे क्वार्टर में भारत ने पर फिर आक्रामक खेल दिखाया। दीपिका ने शानदार प्रयास करते हुए चीनी सर्किल में प्रवेश किया और बेस लाइन तक पहुंचकर फाउल हासिल किया, जिससे भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला। दीपिका ने खुद जिम्मेदारी संभाली और बेहतरीन ड्रैग फ्लिक के जरिए गेंद को गोल में पहुंचा दिया। भारत ने 2-1 की बढ़त बना ली और इसी स्कोर के साथ हाफ टाइम तक आगे रहा। हालांकि 39वें मिनट में चीन को पेनल्टी कॉर्नर मिला, जहां मा निंग ने शानदार ड्रैग फ्लिक लगाकर गेंद को भारतीय गोल में पहुंचा दिया और स्कोर 2-2

0: कर दिया। चौथे क्वार्टर में चीन ने विजयी गोल के लिए लगातार हमले किए, जबकि भारतीय टीम ने भी जवाबी हमले के जरिए मौके तलाशे। मैच के अंतिम मिनटों में चीन को पेनल्टी कॉर्नर भी मिले, लेकिन भारतीय डिफेंस ने शानदार संयम दिखाते हुए सभी खतरों को टाल दिया। आखिरकार दोनों टीमें निर्णायक गोल नहीं कर सकी और मुकाबला 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुआ। भारतीय महिला हॉकी टीम अब 18 अगस्त को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला पूल डी मुकाबला खेलेगी। भारत की नजर इस मुकाबले में वर्ल्ड कप की पहली जीत दर्ज करने पर होगी। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो जहां पर भारतीय महिला टीम ने एक शानदार शुरुआत कर दी है, अब पुरुष टीम जो पहले मैच में वेल्स को 3-1 से हरा चुकी है, अब कल अपना दूसरा मुकाबला शाम 6:30 बजे से भारतीय समय अनुसार इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। और अब बात की जाए नई दिल्ली में सेट हो चुके BWF विश्व बैडमिंटनशिप चैंपियनशिप के स्टेज की, जो कि कल इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होगी। पूर्व चैंपियन पीवी सिंधु और भारत की शीर्ष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी इस प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। 2009 के बाद यह दूसरा मौका है जब भारत इस वर्ल्ड लेवल के टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। 23 अगस्त तक चलने वाली इस 30वीं BWF विश्व चैंपियनशिप में दुनिया के शीर्ष खिलाड़ी भारतीय सरजमी पर अपना दमखम आजमाते नजर आएंगे।
2: दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु पिछले महीने जापान ओपन का खिताब जीतने के बाद अपनी शानदार फॉर्म को इस टूर्नामेंट में भी बरकरार रखने के इरादे से उतरेंगी। पीवी सिंधु 5 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट रही हैं, जिसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल है। महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा भारत की दूसरी प्रतिनिधि है। वहीं पुरुष सिंगल्स में 2021 में इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने वाले लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी भारतीय चुनौती रखेंगे। आयुष को एक कठिन शुरुआती दौर का मैच मिला है, जहां उनका मुकाबला मौजूदा विश्व विजेता और टॉप सीड चीन के शी युकी से होगा। पुरुष डबल्स की बात की जाए तो एशियाई खेलों के चैंपियन और 5वीं सीड सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर बैडमिंटन ओपन वाली अपनी फॉर्म को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। हरिहरन, अमसा करुणन और MR अर्जुन की जोड़ी भी भारतीय दल का हिस्सा है। महिला डबल्स में भारत को त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद तथा कविप्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी की जोड़ी से उम्मीदें होंगी, जबकि मिक्स डबल्स में देश की 3 जोड़ियां हिस्सा लेंगी, जिसमें सबसे अधिक उम्मीद ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो से होगी। वहीं रोहन कपूर और ऋत्विका गदे तथा आशित सूर्या और अमृता प्रमुतेश की जोड़ी भी भारतीय टीम का हिस्सा है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने अब तक 1 स्वर्ण, 4 रजत और 10 कांस्य समेत कुल 15 पदक जीते हैं। 2011 के बाद से भारत ने हर वर्ल्ड चैंपियनशिप में कम से कम 1 पदक जीता है। ऐसे में अपनी सरजमी पर खेल रहे भारतीय खिलाड़ियों की उम्मीदें घरेलू दर्शकों के बीच अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर होगी। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो कहा जा सकता है कि इन खिलाड़ियों के साथ साथ जो सबसे मजबूत फैक्टर होगा वो होगा घरेलू दर्शक और अपनी घर की कंडीशंस। पीवी सिंधु ने कहा है कि वो भारतीय सरजमी पर इस टूर्नामेंट के लिए बेहद उत्साहित हैं।
3: It gives me a lot of confidence and of course I'm really looking forward for the World Championships to start, and since it's happening in India, it's I think really excited and definitely, I mean, to answer to your question, I think after the Japan Open, I think winning that gave me a lot of boost and a lot of confidence.
1: संवाददाताओं से बातचीत करते हुए सिंधु ने खेलों के क्षेत्र में उन्नति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण की भी प्रशंसा की है।
4: I think it's really good to have that scope of thinking and making it happen in India. I think PM sir has that vision that, you know, we can host it. You know, there's nothing wrong in making it happen when PM sir said, you know, we want to make it happen. Now we all have to like work backwards since, you know, we have the facilities. It's just that we have to improvise it in a right way. And I'm hoping that we could, and that will be an amazing thing that even we can do it.
1: वहीं पीवी सिंधु के साथ उन्नति हुड्डा ने भी कहा कि वह भारतीय सरजमी पर खेलने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं।
5: It's my first world championships and it's happening in India. So I am really excited and looking forward for each match at a time. So I've prepared well mentally and physically.
1: और आयुष शेट्टी ने अपनी तैयारियों को लेकर के क्या कहा है, चलते चलते ये भी सुन लिया जाए।
6: As far as I think world championship, I think it's a really big tournament for everyone, even you know, for the world's best players. I think it's a huge stage, and

0: इट्स हैपनिंग इन इंडिया, आई थिंक इट्स मोर स्पेशल फॉर मी।
1: तो एक बड़ा अवसर होगा इन खिलाड़ियों के लिए। और नई दिल्ली में आज फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत संडे ऑन साइकिल्स कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। देश भर में ये कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस पर केंद्रित रहा। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में पहलवान शिवानी पवार ने कहा कि इस तरह की पहल हमारे दैनिक जीवन में फिटनेस को शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण है।
2: संडे ऑन साइकिल का मेरा ये पांचवा इवेंट है। संडे ऑन साइकिल हमारे निजी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है फिटनेस की तरफ जाने के लिए, ज्यादातर उन लोगों के लिए जो अपना वर्क फ्रॉम होम करते हैं या जो घर में रहते हैं, उन लोगों के लिए सबसे अच्छा फिटनेस का एक मॉडल है।
1: और विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों 2025 की स्वर्ण पदक विजेता मुक्केबाज पूनम बिश्क ने भी इस दौरान साइकिल चलाई और लोगों को फिटनेस का संदेश दिया। उन्होंने ये भी कहा कि फिट इंडिया अभियान एक बेहतरीन पहल है जो साइकिल चलाना किफ़ायती और प्रदूषण मुक्त होने के साथ साथ फिट रहने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है, इसके बारे में संदेश देती है। और श्रोताओं, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के अलवर में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने और विकसित भारत 2047 में योगदान करने का आह्वान किया। भारत ने बांग्लादेश से सुपारी आयात करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। 2500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उजागर, 9 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत। महिला हॉकी विश्व कप में भारत ने चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ खेलकर अपने अभियान की शुरुआत की। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू, पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। अब समाचार विस्तार से। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह आज राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
5: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
4: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।
5: 14 से लेकर 26 तक एक भी साल ऐसा नहीं गया है किसानों के लिए कोई बड़ी योजना जाहिर न की हो। आज मैं कांग्रेसियों को कहना चाहता हूं, एमएसपी पर सबसे ज्यादा अनाज क्विंटल में अगर किसी ने खरीदा है तो नरेंद्र मोदी जी ने खरीदा है।
4: श्री शाह ने कहा कि दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने की अपार क्षमता है और गुजरात के किसानों ने इसे साबित कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में अधिक दूध देने वाली गायों और भैंसों की नस्लें राजस्थान के हर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर गृहमंत्री ने किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में सीधे धनराशि भी अंतरित की।

0: इससे पहले गृह मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर चित्तौड़गढ़ में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। पूरे राष्ट्र ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अटल जी की विरासत राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की प्रगति में पूर्व प्रधानमंत्री की भूमिका को अतुलनीय बताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जनसेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण के प्रतीक हैं, जो भविष्य में भी हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वो राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथूर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है।
1: Over the years, SRM Institute of Science and Technology has built an academic ecosystem that encourages interdisciplinary learning, creativity, entrepreneurship, and critical thinking. I am pleased to note SRM growing emphasis on strategic technologies such as artificial intelligence, quantum technologies, semiconductor research, robotics, biotechnology and sustainable development. These fields will save the economics and the society's future.
0: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। विद्यार्थियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए JPSC और JSSC परीक्षाओं को रद्द करने की मांग दोहराई। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को कल दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने इस वर्ष जून में हुई UGC नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए UGC नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हर उत्तर पर आपत्ति के लिए ₹200 का शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी जमा करने होंगे। NTA ने कहा कि किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 18 अगस्त है। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे राजौरी, पुंछ और नौशेरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा।
2: लगभग 3 किलोमीटर लंबी यह रणनीतिक सुरंग कालीधार पर्वत श्रृंखला के बीच बनाई गई है। इसके शुरू होने से मौजूदा मार्ग में कठिन हिस्से को बाईपास किया जा सकेगा और यात्रा की दूरी करीब 13 किलोमीटर कम हो जाएगी। इससे यात्रा का समय भी काफी कम होगा। यह सुरंग ऐसे समय में खोली गई है जब अखनूर से राजौरी होकर पुंछ जाने वाली सड़क के चौड़ीकरण और उन्नयन का काम तेजी से चल रहा है। लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह सुरंग अभी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सिर्फ हल्के वाहनों के लिए ही खुली रहेगी। भारी वाहनों, बसों और मालवाहक वाहनों को आवागमन की अनुमति निर्माण कार्य पूरा होने के बाद दी जाएगी। जम्मू से N गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राज्य में केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की। जो लोग आयुष्मान भारत के दायरे में नहीं आते वे राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों योजनाओं में 1950 बीमारियां शामिल

0: हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी क्षेत्रीय पुस्तकालय के पुनर्निर्माण की घोषणा की। डॉ. पेम्मा सानी ने कहा कि ब्रिटिश काल में 1915 में स्थापित इस पुस्तकालय से कई पीढ़ियों के विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इस कार्य के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने चिकित्सकीय मार्गदर्शन पर आधारित चिकित्सा पद्धति पर बल दिया है। नई दिल्ली में प्रोफेसर आनंद एन मालवीय और डॉ. प्रशांत कौशिक की पुस्तक रूमेटोलॉजी एसेंशियल्स अ न्यू फ्रंटियर फॉर एस्पायरिंग क्लिनिशियंस के विमोचन के अवसर पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि त्रिआयामी दृष्टिकोण अनावश्यक दवाओं का उपयोग करने, जाँच कम करने, निदान में देरी को रोकने और ये सुनिश्चित करने में सहायक हो सकता है कि मरीज सही समय पर उचित विशेषज्ञ से परामर्श ले सके। राजस्व खुफिया निदेशालय ने एक ऐसे बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है जो दक्षिण पूर्वी एशियाई सुपारी को बांग्लादेशी बताकर भारत में आयात करता था। वित्त मंत्रालय ने कहा कि जांच में अब तक 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा के संभावित राजस्व नुकसान का पता चला है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
1: DRI ने बताया कि जांच के दौरान जुटाई गई खुफिया जानकारी से पता चला कि कुछ गिरोह बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करते हुए साफ्टा का लाभ ले रहे थे। ये सिंडिकेट इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों से उत्पन्न सुपारी का आयात करते थे, लेकिन भारत में आयात के दौरान उसका मूल देश बांग्लादेश घोषित कर रहे थे। खुफिया जानकारी के आधार पर DRI ने कोलकाता और विशाखापत्तनम में आयातकों, कस्टम्स ब्रोकरों और IEC धारकों से जुड़े कई ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में सुपारी के मूल होने की पुष्टि करने वाले कई दस्तावेज और अन्य साक्ष्य बरामद किए गए। DRI अधिकारियों ने करीब 75 लाख रुपए की नकदी भी जब्त की, जिसे अवैध रूप से आयात किए गए सामान की बिक्री से प्राप्त रकम होने का संदेह है। मामले की जाँच जारी है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन ने रूस के दक्षिण पश्चिमी रोस्तोव क्षेत्र को निशाना बनाकर ड्रोन से कई हमले किए, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। इसे यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने रात भर में 822 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। वहीं रूस के हमलों में यूक्रेन में 5 लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी अगले 2 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में बाढ़ का खतरा बना हुआ है।
2: उड़ीसा के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 49 ब्लॉक और 5 शहरी इलाके प्रभावित है और लगभग 2.37 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रभावित इलाकों में करीब 293 राहत शिविर चल रहे हैं। मुख्य सचिव अनु गर्ग ने जिला कलेक्टरों के साथ स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को फील्ड में रहने का निर्देश दिया है। साथ ही बाढ़ प्रभावित जिलों में कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। बाढ़ प्रबंधन का अनुभव रखने वाले वरिष्ठ अधिकारियों को भद्रक, बालेश्वर और जाजपुर जिलों में तैनात किया गया है, जबकि प्रभावित जिलों की मदद के लिए एक अतिरिक्त मुख्य अभियंता को भेजा गया है। भद्रक, केंदुझर और मयूरभंज जिलों में कल स्कूल बंद रहेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: भारतीय महिला हॉकी टीम ने विश्व कप में अपने पहले मुकाबले में पूल डी में चीन को कड़ी टक्कर देते हुए 2-2 से ड्रॉ पर रोका। विश्व कप में कल भारतीय पुरुष हॉकी टीम पूल डी में अपने दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड के साथ खेलेगी। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होने जा रही है। भारत 17 वर्ष बाद इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। भारतीय टीम को इस प्रतियोगिता में PV सिंधु, लक्ष्य सेन, आयु

0: शाहराहों की तंजीम के जरिए तामीर करदा इस टनल को पहले 22 अगस्त को आवाम के लिए खोलने का प्रोग्राम था, अलबत्ता इसे योम आज़ादी के तोहफे के तौर पर वक्त से पहले ही खोल दिया गया है। यह सारफीन को राहत फराहम करेगी और खित्ते में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: कालीधर रेंज से होकर गुजरने वाली 2.79 किलोमीटर तवील ये अहम टनल तामीर की गई है। ये मौजूदा रूट के मुश्किल हिस्से को बाईपास करेगी और तौक्को है कि इससे तकरीबन 13 किलोमीटर का सफरी फासला कम होगा। इसके अलावा ये सफर के वक्त में भी नुमाया कमी करेगी। अखनूर राजौरी पुंछ शाहराह पर सड़क चौड़ा करने और अपग्रेडेशन का काम तेजी के साथ जारी है, जिसके बाइस ये टनल खोली गई है। सुंगल टनल की तामीर तकरीबन 600 करोड़ रुपए की तखमीनी लागत से की गई है। अब जबकि इस टनल को अवामी नकलो हरकत के लिए खोल दिया गया है, इस पर कुछ तामीरी और हतमी काम किया जा रहा है। फिलहाल सिर्फ छोटी गाड़ियों को इस टनल को इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई है। भारी गाड़ियां, बसें और साजो सामान लाने ले जाने वाली गाड़ियों को अभी तक इजाजत नहीं दी गई है, क्योंकि इस पर अभी कुछ काम होना बाकी है। भारी गाड़ियों की नकलो हरकत को इस काम के पूरे होने के बाद आने वाले महीनों में आमदोरफ्त की इजाजत दी जा सकती है। आकाशवाणी न्यूज जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
0: यूक्रेन और रूस ने आज एक दूसरे पर मिसाइलों और ड्रोन्स के हमले किए, जिसमें दोनों जानिब कम से कम 11 अफराद हलाक हुए हैं। यूक्रेन ने इस जंग में अपने सबसे बड़े फजाई हमलों में से एक में पूरे रूस में सैकड़ों ड्रोन से हमला किया। इनमें 6 अफराद हलाक हो गए। 3 कस्बों पर हमलों के बाद रूस के जनूब मगरबी खित्ते में 5 अफराद हलाक हो गए। 150 से ज्यादा ड्रोन्स के हमलों में बहुत से घर और एक रेलवे स्टेशन को भी नुकसान पहुंचा है, जबकि जंगल में आग भड़क उठी है। मास्को खित्ते में एक निजी घर पर यूक्रेन के ड्रोन के एक हमले में 48 साल शख्स हलाक हो गया। मास्को के गवर्नर ने भी इस बात की तस्दीक की है कि यूक्रेन के हमले में एक वेयर हाउस में आग लग गई। रूस की वजारत दिफा ने कहा है कि उसने रात के दौरान 822 यूक्रेन के ड्रोन्स को नाकारा बना दिया। FIH खवातीन हॉकी वर्ल्ड कप में भारत ने आज नीदरलैंड्स के एम्स्टलवीन में ग्रुप मरहले के मैच में चीन के खिलाफ 2-2 से सनसनीखेज ड्रॉ के साथ अपने मुहिम का आगाज किया। नवनीत ने 8वें मिनट में भारत को इब्तदाई बर्तरी दिलाई, लेकिन चीन ने 15वें मिनट में जोंग यिंग के पेनाल्टी स्ट्रोक के जरिए गोल करके बराबरी कर ली। दीपिका ने 25वें मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर पर गोल करके भारत की बर्तरी को बहाल किया। तीसरे क्वार्टर में चीन की मैनिंग ने 39वें मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर गोल करके स्कोर को 2-2 से बराबर कर दिया। भारत और चीन पूल डी में इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के साथ हैं। पूल से सरे फहरिस्त दो टीमें अगले राउंड में पहुंचेंगी। BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप कल नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होगी। भारत इस आलमी चैंपियनशिप की 17 साल बाद मेजबानी कर रहा है। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, श्रेषा डेली और गायत्री गोपी चंद भारतीय दस्ते की नुमाइंदगी करेंगे। भारत को मर्दों के सिंगल्स, खवातीन के सिंगल्स, मर्दों के डबल्स और खवातीन के डबल्स में 2-2 एंट्रीज हासिल हुई हैं, जबकि मिक्स्ड डबल्स मुकाबले में 3 भारतीय जोड़ियां हिस्सा ले रही हैं। मर्दों के क्रिकेट में गाले इंटरनेशनल स्टेडियम में सीरीज के पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 9 विकेट पर 460 रन बना लिए थे। स्टंप्स होने तक प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव क्रीज पर मौजूद थे। इससे कबल देवदत्त पडिक्कल ने अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी स्कोर करते हुए 167 रन बनाए। केएल राहुल ने 82 रन जबकि ध्रुव ड्रेल ने 51 रन बनाए। श्रीलंका की जानिब से प्रबोध जयसूर्या ने 4 विकेट जबकि केशरा नुवंथा ने 3 विकेट लिए। सीरीज का दूसरा और आखिरी मैच कोलंबो में 23 अगस्त को शुरू होगा। आखिर में खास खास खबरें एक मरतबा फिर। मरकजी वजीर दाखिला और इमदाद बाहमी के वजीर अमित शाह ने राजस्थान के शहर अलवर में 6,400 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। उन्होंने जोर दिया कि भारत को 2047 तक मुकम्मल तौर पर तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के मकसद को हासिल करने के लिए नौजवानों, गरीबों, खवातीन और किसानों को बाइख्तियार बनाना लाजमी है। नायब सदर जमहूरिया CP राधा कृष्णन ने तालिब इल्मों पर जोर दिया है कि वो मुल्क सबसे पहले के उसूल को अपनाएं और विकसित भारत 2047 के लिए

0: करें। भारत ने बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर सुपारी यानी छालिया की दरामद करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। 2500 करोड़ रुपए का महसूलाती खसारा सामने आया है और 9 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। गंगाई, मगरबी बंगाल और उड़ीसा में कल बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। यूक्रेन और रूस ने एक दूसरे पर मिसाइलों और ड्रोन्स के हमले किए जिनमें दोनों जानिब 11 अफराद हलाक हुए हैं। हॉकी में नीदरलैंड्स में FIH खवातीन के आलमी कप में भारत ने चीन के खिलाफ 2-2 से मैच बराबर करके अपनी मुहिम का आगाज किया। और BWF आलमी चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। PV सिंधु और लक्ष्य सेन भारत की क्यादत करेंगे। बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु, लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, श्रेशा डिली और गायत्री गोपीचंद भारतीय दस्ते की नुमाइंदगी करेंगे। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है रानी दुर्गावती पर केंद्रित योगेश त्रिपाठी का लिखा नाटक रानी दुर्गावती। संयोजक हैं पुष्पेंद्र सौरभ और निर्देशक हैं विनोद कुमार।
2: समय 16वीं शताब्दी। चारों तरफ फैले अराजकता के माहौल के बीच गढ़ा कटंगा शायद एकमात्र ऐसा राज्य था जहां शांति थी, प्रजा खुशहाल थी, समृद्ध थी। गोंडवाना साम्राज्य के महाराज दलपत शाह अपनी पत्नी दुर्गावती, पुत्र वीर नारायण और राजमाता पद्मावती के साथ राजकाज संभाल रहे थे। किंतु समय कभी कभी बड़ा निर्दयी हो जाता है। राजा दलपत शाह अचानक बीमार होकर स्वर्गवासी हो गए। रानी दुर्गावती पर ये वज्रपात से कम न था।

0: रानी जी, राजमाता पद्मावती और राज पुरोहित महेश ठाकुर पधार रहे हैं।
1: पुत्री दुर्गावती, पुत्री दुर्गावती, हमारी प्रसन्नता काल की कुदृष्टि पड़ गई। काल की कुदृष्टि,
2: अपने आप को संभालिए राजमाता।
3: राजमाता, क्षमा चाहता हूं। नगर और समीपवर्ती क्षेत्रों में घोषणा की जा रही है कि महाराज के साथ महारानी दुर्गावती सती होंगी।
0: क्या? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा।
4: मैं सती नहीं होंगी। मैंने प्राण और मन से अपने पति को स्वीकार किया था। वो चले गए, किंतु उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का दायित्व अब मेरा है। माँ दुर्गा का दिया हुआ ये अमूल्य जीवन व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। राजमाता, आशीर्वाद दीजिए। आपके पुत्र के बाद अब आपकी दुर्गावती की हर सांस मातृभूमि की रक्षा और सम्मान में समर्पित होगी। पुत्री दुर्गावती।
5: महारानी, महारानी, प्रणाम। राजमाता,
0: क्या बात है दीवान आधार सिंह?
5: क्षमा चाहता हूँ राजमाता, ये सब कुंवर चंद्र शाह के कहने पर किया गया था।
0: चंद्रशाह? बड़े भाई के मृत्यु के बाद कुंवर चंद्रशाह के कुकृत्य का अर्थ समझ आता है हमें।

फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। चंद्रशाह ने वीर नारायण के राज्याभिषेक में रुकावट डाली और रानी ने उसे बंदी बनाकर राज्य से निर्वासित कर दिया। जिस तरह से यहाँ गढ़ा की गद्दी पर बालक वीर नारायण को बिठाकर रानी दुर्गावती शासन संभाल रही थी, ठीक उसी तरह दिल्ली की गद्दी पर बालक अकबर को बिठाकर सल्तनत को संभालने में जुटा था बैरम खान। लेकिन विरासत में मिली साम्राज्य विस्तार की चाहत और बैरम खान की चालबाजियां सीख सीख कर अकबर अपनी मासूमियत खो चुका था। वो 18 वर्ष की उम्र का होते होते क्रूरता और अवसरवादिता की उस हद पर पहुंच गया था जहां उसे अपनों का खून भी पानी लगने लगा था।

0: जिले इलाही गोंड रियासत की महारानी दुर्गावती ने बाज बहादुर को शिकस्त दे दी है, साथ ही जान भी बख्श दी है। अब चारों ओर रानी दुर्गावती की बहादुरी और महानता के चर्चे हैं।
1: बहादुरी, महानता, बीरबल, हमें जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को किसी और की बहादुरी और महानता के किस्से पसंद नहीं। विजयनगर तो चलो दूर दक्षिण में है, उसे बाद में देखेंगे, लेकिन मेवाड़ के राणा प्रताप और गढ़ा की इस बेवा दुर्गावती को अपनी सल्तनत में मिलाना निहायत जरूरी है।
0: हुजूर, गढ़ा एक छोटा और शांत राज्य है, हमें उनसे कोई खतरा नहीं।
1: खतरा सरहद का नहीं बीरबल, खतरा तारीख का है। आने वाला समय हमें महान अकबर कहे, इसके लिए हमें हर उस सिर को झुकाना होगा जो ऊंचा उठने की जुर्रत करता है, हर उस राजा और राज्य को जीतना होगा जो सचमुच महान हैं या हो सकते हैं। हम किसी और की महानता की परछाई में नहीं जी सकते।
0: बेहतर जहां पना,
1: लेकिन लोग कहते थे कि हम तो एक बच्चा है, लेकिन हमने उस बैरम खान से भी पीछा छुड़ा लिया जिसने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। क्यों करना पड़ता है अगर महान बनना है तो? क्योंकि लोग उसे महान कहने लगेंगे, कहेंगे कि बैरम खान ने अकबर को तराशा और शहंशाह बना दिया, वरना वो तो इस लायक ही नहीं था।
0: और जो राजा आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे,
1: मिट्टी में मिला देंगे उन्हें भी और उनके नाम को भी।
2: जहांपना, रतनपुर के राजा कल्याण शाही आपसे मिलना चाहते हैं।
1: मिलने आया है या कुछ मांगने? ये रतनपुर है कहाँ?
0: जहांपना, रतनपुर गढ़ा राज्य के दक्षिण पूर्व सीमा पर है।
1: ओ, तब तो पक्का दुर्गावती के खिलाफ कोई मशवरा देने आया होगा। यहाँ के राजाओं को दूसरे राजा से इतनी जलन क्यों होती है बीरबल? बुलाओ उसे, देखें क्या है उसके पास देने या सुनाने के लिए।
3: रतनपुर के राजा कल्याण शाही हाजिर हों।

0: महारानी, मुगल बादशाह अकबर का संदेश लेकर एक दूत आया है।
1: मुगल बादशाह का दूत? अंदर ले आओ उसे।
0: जो आज्ञा।
2: महारानी जी, सल्तनत हिंद शहंशाह अकबर ने आपके लिए एक तोहफा भेजा है। कहा है कि अपने नायाब हाथी सरमन और अपने सलाहकार आधार सिंह को दिल्ली दरबार में भेजें।
1: और इस थाल में ये तोहफा क्या है?
2: दमकते सोने का बना पिंजरा। उन्होंने ये भी कहा है कि एक औरत का काम राजपाट संभालना और जंग के मैदान में उतरना नहीं है, महल के अंदर रहना है।
1: आप अतिथि गृह में विश्राम करिए, हमारा जवाब लेकर जाइएगा।
2: जो हुक्म महारानी साहिब।
1: जलालुद्दीन की ये जरूरत कि उसने हमारे प्रिय सरमन हाथी और आधार सिंह जी आपको मांग लिया।
3: वो ऐसा ही करता है महारानी। वो कमजोर राज्यों को डराने के लिए ऐसे ही हथकंडे अपनाता है।
1: जलालुद्दीन ने इस पिंजरे को भेजकर हमें संदेश दिया है कि हम उसकी अधीनता स्वीकार कर ले। वो हमें सोने के पिंजरे में कैद पंछी बनाना चाहता है।
3: आपने सही अनुमान लगाया है रानी साहिबा।
1: उस मुगलिया दूत को वापस यहाँ लेकर आओ।
0: जो आज्ञा महारानी।
2: हुक्म महारानी साहिबा।
1: अब आप जा सकते हैं, आपका काम पूरा हो गया। अपने जहां पनाह से कहिएगा कि हम एक स्वतंत्र राज्य हैं, उनके गुलाम नहीं। हाँ, उनके इस नायाब तोहफे का जवाब हम जल्द से जल्द देंगे।
2: जो हुक्म।

0: महारानी, यदि हम चुप रह गए तो इसे हमारी कायरता समझा जाएगा।
1: वो तो ठीक है, परंतु उत्तर क्या दिया जाए?
2: एक पिंजिना बनवाइए, वो भी शुद्ध सोने का। उसने मुझे पिंजरा भिजवाया है ना, हम उसे कपास धुनने का पिंजना भिजवाएंगे। उसे संदेश देंगे कि बेहतर है कि वो गोंडवाना पर नजर ना डाले, वरना पूरी जिंदगी बैठकर कपास धुनने के अलावा किसी और काम के लायक नहीं बचेगा। गढ़ा पर नजर ना डाले।
1: परंतु सोने का?
2: हाँ, ठीक उतने ही वजन का जितने वजन का उसका पिंजरा है, ना एक रत्ती ज्यादा ना एक रत्ती कम। जलालुद्दीन को पता चलना चाहिए कि गढ़ा की महारानी कोई भिखारिन नहीं है जो उसके सोने से तब जाए।
3: और इसे लेकर दिल्ली कौन जाएगा माँ?
0: मैं जाऊंगा, यदि महारानी उचित समझे।
2: उचित है, आखिर उस अहंकारी को पिंजिना भिजवाने का सही अर्थ भी तो समझाना होगा। शीघ्र कार्रवाई की जाए।
0: जो होगा महारानी।

0: महारानी की जय हो।
1: महारानी की जय हो।
2: लौट आए आधार सिंह जी, कैसा लगा हमारा पिंजना जलालुद्दीन को?
0: अकबर गुस्से से पागल हो गया महारानी। खबर मिली है कि उसने सिपह सालार आसफ खां को आदेश दिया है गढ़ा पर हमला करने के लिए। वो निकल चुका है युद्ध के लिए।
2: हम गोंडवाना के वासी हैं, हम युद्ध की तैयारी करते नहीं बल्कि हमेशा तैयार रहते हैं। आने दो उन्हें।
3: युद्ध हुआ, नरई नाले के पास हुआ, जमकर हुआ। रानी दुर्गावती ने अपने हजार सैनिकों के साथ शत्रुओं की विशाल सेना को पहले तो अपने छापामार युद्ध कौशल से मार भगाया था। नरई नाले के पास संकरे दर्रे में फंसी मुगल सेना के हजारों सैनिक गाजर मूली की तरह काटे गए। अपनी सेना की यह दुर्दशा देखकर आसफ खान बुरी तरह घबरा गया और अपनी बची खुची सेना लेकर भाग खड़ा हुआ। लेकिन दूसरे दिन 24 जून 1564 को वो वापस आया।
1: महारानी, महारानी, अनर्थ हो गया महारानी। इस बार तो आसफ खां अपनी पूरी तोपें पहाड़ी के मुहाने पर ले आया है। सामने बहुत सारी तोपें दिख रही हैं।
2: कितनी बड़ी भूल हुई हमसे। यदि हमने कल रात ही धावा बोल दिया होता तो उनकी तोपों के मुंह खुलने से पहले ही नष्ट हो चुके होते।
1: जी महारानी।
2: अब पीछे देखने का समय नहीं है। वीर सैनिकों, आक्रमण करो!
0: सेवक आधार सिंह।
2: आधार सिंह।

0: ये आकाशवाणी है। रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आज रात प्रस्तुत है गिटार वादन। कलाकार हैं रितम सरकार। केवल 9 वर्ष की आयु में आपने संगीत की तालीम लेने की शुरुआत की और आपके पहले गुरु थे प्रसिद्ध सितार वादक श्री श्यामल चट्टोपाध्याय। आगे चलकर आपने दिग्गज गिटार वादक पंडित देवाशीष भट्टाचार्य से प्रशिक्षण प्राप्त किया। आपकी कलात्मकता केवल गिटार तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि तबला, सरोद, गायन और योग आधारित सांगीतिक प्रस्तुतियां भी आपकी पहचान बनी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के एक रीड के कलाकार रितम सरकार ने संगीत की राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर दी जाने वाली छात्रवृत्तियां भी प्राप्त की हैं। रितम सरकार अखिल भारतीय संगीत समारोहों के साथ साथ बंगाल के संगीत सम्मेलनों में भी भाग लेते रहते हैं। आप एक ऐसे गिटार वादक हैं जिन्होंने संगीत के विभिन्न सम्मेलनों तथा कार्यक्रमों के अलावा संगीत की कार्यशालाओं में भाग लेने और व्याख्यान देने के लिए देश और विदेश की यात्रा की। यही नहीं, आप कैंसर से पीड़ित वंचित बच्चों की सहायता हेतु आयोजित सामाजिक निधि संग्रह कार्यक्रमों के साथ भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा शरीर के 7 चक्रों पर आधारित योग की एक परियोजना पर भी काम कर रहे हैं।
1: Tonight in the Ravivasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha, we present guitar recital by Ritam Sarkar. Beginning his musical journey at an early age of 9 years, Ritam Sarkar was initially trained under the sitar maestro Sri Shyamal Chattopadhyay and thereafter under the able guidance of guitar legend Pandit Debashish Bhattacharya. Later, he expanded his musical artistry through exposure to tabla, sarod, vocal and meditation-based musical presentations. An A-grade artist of Akashvani and Doordarshan, Ritam Sarkar has also been a holder of national and state scholarships in music. A proud participant at All India Music Festivals and All Bengal Music Festivals, Ritam Sarkar is a widely traveled guitar artist both in India and abroad to participate in music concerts and programs, musical workshops, as well as lecture demonstrations. Besides, Ritam Sarkar is actively involved with social fundraising events for the benefit of underprivileged children suffering from cancer and is also working on a meditation project on the 7 chakras of our body.
0: आज रात रितम सरकार के साथ तबले पर संगत कर रहे हैं औषित जाना।
1: Tonight, Ritam Sarkar is accompanied on the tabla by औषित जाना।
0: गिटार वादन के इस कार्यक्रम की शुरुआत आप राग मालकौंस के साथ करेंगे। आलाप जोड़ और झाला से सज्जित यह बंदिश विलंबित झपताल और द्रुत 3 ताल में आबद्ध है।
1: रितम सरकार बिगिंस हिज गिटार रिसाइटल with rag malkos, with alap, jor and jhala. The composition is set to vilambit jhaptal followed by drut tintal.

0: गिटार वादन के अंतर्गत आप ऋतम शर्कार से राग मालकौंस सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग मेघ। आलाप से इसकी शुरुआत होगी और गत में इसकी बंदिश रूपक ताल में आबद्ध है।
1: You are listening to Rag Malkaus in the guitar recital by Ritam Sarkar. Continuing with the recital, he now presents Rag Megh. It begins with an alap and the composition is set to gat in rupak tal.

0: आप रितम शौरकार से राग मेघ सुन रहे थे। गिटार वादन की इस प्रस्तुति का समापन आप राग किरवानी के साथ करेंगे। यह बंदिश कहरवा दाल में आबद्ध है।
1: You were listening to Rag Megh. Ritam Sarkar concludes his guitar recital in Rag Kirwani. The composition is set to Kaharwa Taal.

0: गिटार वादन के अंतर्गत आप रितम शौरकार से राग किरवानी सुन रहे थे। तबले पर संगत कर रहे थे औशित जाना। और इसी के साथ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा आज रात यहीं संपन्न होती है।
1: You were listening to Raag Kirwani in the guitar recital by Ritam Sarkar. He was accompanied on the tabla by Oshit Jana. And with this, we come to the end of Ravi Vasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha tonight. This program was recorded at the studios of Akashvani, Kolkata.

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज और दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। इस समय रात के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: मोहम्मद जुबैर, गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने

0: कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह आज राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा है कि वह राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान, कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथुर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए JPSC और JSSC परीक्षाओं को रद्द करने की फिर मांग की। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी छात्रों को कल दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आज UGC नीट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये फैसला लिया गया है। अंग्रेजी विषय की दोबारा परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। वहीं कॉमर्स का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगा। समाज शास्त्र का पेपर 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राज्य में केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की भी शुरुआत की। जो लोग आयुष्मान भारत के दायरे में नहीं आते वे राज्य के स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र होंगे। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। इससे राजौरी, पुंछ और नौशहरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। इस सुरंग की मदद से यात्रा की दूरी लगभग 13 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी काफी कम हो जाएगा। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने एक ऐसे बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है जो दक्षिण पूर्वी एशियाई सुपारी को बांग्लादेशी बताकर भारत में आयात करता था। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जांच में अब तक 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के संभावित राजस्व नुकसान का पता चला है। इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मौसम विभाग ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी अगले 2 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलो हर्ट्ज, FM बैंड 101.2 मेगा हर्ट्ज और दूरदर्शन के DTH चैनल पर। इस समय रात के 11:05

मिनट हो चुके हैं। हमारी आज की ये सभा अब यहीं समाप्त होती है। कल प्रातः 5:53 पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।